दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज
1: साज दिल जब सदा नहीं देता कोई नगमा मजा नहीं देता।

म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज

0: Fantastic performance. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं.

दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: I'm dead without you.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज।

आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो,

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई माने नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सुरुल हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफिकत से बाज आ जाएं, और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन, यहाँ कई बातों की वजाहत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोमन मर्दों और मोमन औरतों के अजर यकसा हैं। रोशनी उनके दाहिनी तरफ होगी यानी इनका आमाल नामा इनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, और रोशनी یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔

के महीने में उमूमन यही होता था कि मुहर्रम के एंड तक काफले अपने अपने जगहों में लौट के चले गए। तो सफर से अब गोया कि उनका जिंदगी का एक नया जो एक मामूल चला आ रहा था कि आप उसके जो है जंगें, आप उसकी मुखालफतें और रास्ते जो है वो जो लूट मार होती थी, काफले लूट जा करते थे, वो ये दोबारा ये जो है हालत आ जाया करती थी। तो इस वजह से जो है सफर के दखूल से ही आने से ही लोग समझते थे कि भाई ये एक मनहूस महीना आ गया, दोबारा फिर जंगें शुरू हो जाएंगी और दोबारा काफले लुटने शुरू हो जाएंगी। अब पता नहीं कि जो है वो किस किस का जो है खून बहाया जाएगा, काहन लुटेगा। तो गया कि एक बदअमनी का एक माहौल दोबारा आ जाया करता था, तो जिसकी वजह से लोग इस महीने को एक मनहूस और नैस महीना समझा करते थे। तो इसी वजह से जो है ये कि सफर का महीना आ गया है, सफर के महीने की वजह से जो है एक नहुसत जो समझते हैं कि आ गई है, तो इसको मनहूस समझते थे। तो ये इस माना जाहिलियत में सफर के महीने से लोग एक बस शगुनी लेते थे, और इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें थी जिसे बदशगुनी लेते थे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के जहाँ अकीदे की बहुत सारी खराबियों को आपने जो है जो खराब चीजें थी और अकीदे से उनको जो है दूर किया और अकीदे तौहीद की असलाह की, तो जो है जमाने जाहिलियत की जितने बातें थी उन सारी बातों को मिटाया उसमें। तो जो है कि उसमें से ये जो जमाने जाली से चली आ रही थी कि ये महीना मनहूस है और ये चीजें हैं, तो आपने उसको भी मिटा दिया। ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि ला अदवा वला तियारा वला हामा वला नुआ वला गौल वला सफर। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया के फरमाया ये पहले फरमाया कि ला अदवा, कि फरमाया कि बीमारी में कोई जो है तादी नहीं है कि बीमारी खुद ब खुद एक बीमारी आए और दूसरे लोगों को बीमारी लग जाए। तो ये भी उस वक्त सही होता था कि एक आदमी बीमार होता था तो अब लोग समझते थे कि ये बीमारी दूसरे लोगों को भी लगेगी और तो फिर उससे दूर रहा करते थे ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ करके फरमाया कि नहीं, किसी बीमारी में खुद बजाते खुद ये उसके अंदर जो है ताकत तो कुव्वत नहीं है कि बीमारी दूसरे आदमी को लग जाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में ये फरमाया कि जब आप ने ये फरमाया कि बीमारी में तादी खुद लगने कोई सलाहियत नहीं है, तो सहाबा कराम ने आरज की कि यार रसूलुल्लाह, हमारा ये है कि हमारे ऊंट सहरा में चरते होते हैं और वो हिरन की तरह से जो है चुस्त होते हैं, और लेकिन ऐसा होता है कि एक ऊंट आता है और वो बीमार होता है और वो फिर बीमारी दूसरे ऊंटों को भी लग जाती है। तो गए कि अदवा हो जाता है कि एक ऊंट से दूसरे ऊंटों को बीमारी फैल गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब ये दिया, आपने फरमाया कि ये बताओ कि पहले जो ऊंट को बीमारी लगी है वो बीमारी कहाँ से आई है। तो आप उसका जवाब जो है वो कोई नहीं था, तो साहबा ने कहा कि वो तो खुद ही बीमारी लगी है। तो फरमाया कि फिर वो बीमारी जो आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, खुद बीमारी के अंदर कोई तादी नहीं है कि एक बीमारी दूसरे आदमी को लग जाए या किसी जानवर को लग जाए। इसे फरमाया आदवा, आदवा नहीं है। लेकिन जहां आपने ये फरमाया वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि आप जो है बाज बीमारियां ऐसी होती हैं कि हो सकता है कि वो दूसरे को लग जाए, तो आपने उससे एहतियात कर रहे फरमाया। आपने फरमाया कि मजलूम से ऐसे ही बचा करो जो जो एक जुजाम की बीमारी होती है कि वो दूसरे आदमी को लग जाती है, फरमाया उससे ऐसे बचा करो जैसे आदमी शेर से, शेर देख ले शेर से भागता है, ऐसे उससे इज्तनाब करना चाहिए। तो ये सारी इस्लामी तालीमात का खुलासा ये है कि आदमी को, बीमार आदमी कोई हो जिसकी साबित हो कि बीमारी दूसरे को लग सकती है, तो आदमी का पहला यकीन तो ये होना चाहिए, ईमान ये होना चाहिए कि बीमारी और शफा अल्लाह की तरफ से है, सब कुछ अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह पाक चाहेंगे तो बीमारी लग जाएगी,
अल्लाह ने

जी राजा, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे प्रोग्राम में ऑनलाइन लिया। सर, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, कल एक प्रोग्राम हुआ है नून लीग का, के इलेक्शन के हवाले से राजा सदीक साहब का। तो इसमें मैं यह कहूँगा कि कल जो यहाँ प्रोग्राम हुआ उसमें बड़े बड़े लीडर तो आए हैं, जो गुजर खान से जिनका एक नाम है, जिनका एक पहचान है, जो नून लीग से काफी अरसे से MNA की टिकट पे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और यहाँ के जिले नाजम भी रहे हैं और नून लीग से जनाब MNA मुंतखब के पार्लियामानी सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इस हवाले से मैं कहूँगा वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनका पोस्टर पर मौजूद है, तो इसके हवाले से दरार पड़ गई है, जिसकी वजह से जनाब लीग को बहुत ज्यादा खदशा है कि नून लीग को यहाँ आज का प्रोग्राम जो है शहीद सराफ साहब के घर में रखा गया है, उसमें राजा जवेद खिलाफ खुद सोच इसके बारे से करेंगे, वो एक अलग प्रोग्राम होगा। कल के प्रोग्राम में वो नजर नहीं आए, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का कहना है कि ये जो है अक्सर बाहर से जो राजा जो मलिक इब्रार साहब है, मलिक इफ्तार साहब है और निबास साहब और जो भी है पिंडी से बहुत बड़ा काफिला ले अक्सर इस जलसे में शामिल हो सके। तो जबकि अगर राजा जवेद इखलास साहब यहाँ होते और ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे होते तो फिर मेरे अंदाजे से कि ये बहुत बड़ा इस तारीखी जलसा होता और जिसमें नून लीग जैसा पहले भी यहाँ कामयाब रही एक होने की वजह से, मगर अब बहुत ज्यादा नुकसान है नून लीग को, के धड़ाबंदी का शिकार हो गई है ये। तो आज का जो आज भी जो है प्रोग्राम एक शहीद सराफ साहब के घर रखा गया है जवेद खलास साहब ने, वो शाम 5 बजे है, उसमें भी इन्होंने कहा है कि हो सकता है आज मरियम औरंगजेब साहब मौजूद हो इस जलसे में, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ना कोई शोर शराबा ना कुछ ना कचा। तो बाकी जो है इसके मैं नून लीग को इस वजह से हवाले से शहर में काफी चमगोइया के बहुत ज्यादा नुकसान भारी नुकसान होने का है, क्योंकि ये आपस की रंजिश आपस की उसकी वजह से हमेशा जिस भी पार्टी में आपस एक इलाके में पार्टी में किसी में जब आपस में रंजिशें होती हैं धड़ेबंदियां होती हैं तो वो उसका नुकसान पार्टी को होता है सर।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 12:30 بجا چاہتے 19/7/2024 کا پروگرام ہے۔ دھوپ اور سایہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، سیاست بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور خبریں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ تو اس وقت ہم آپ کو اپنے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں کہ ان کے پاس آج کیا ہے۔ شاہ صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔
1: جی رایہ غفور صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم، اور آپ کی ٹیم کو بھی، آپ کے ناظرین سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ موسم اور یہ ساری چیزیں، ٹھنڈا گرم چلتا رہتا ہے، سیاست بھی چلتی رہتی ہے، آج کیا لے کر آئے ہیں ہمارے سامعین ناظرین کے لیے؟
2: دیکھیے، اس وقت موسم جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے۔ ہم لوگ پچھلے ایک ہفتے کچھ گرمی ہوئی تھی، لیکن بارشوں کی وجہ سے، کیونکہ سخت پانی کی کمی ہو رہی ہے پورے یورپ کے اندر، پوری دنیا کے اندر پانی، پینے والے پانی کی کمی ہو رہی تھی، اس لیے بارشوں کا ڈنمارک کے اندر ہونا بہت ہی ضروری تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا موسم یہاں پہ بنا دیا کہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنمارک کے مختلف حصوں میں بہت تیز، جو جس کو اسکائی بلو کہا جاتا ہے، وہ بارش ہوگی۔ اور یہ اچھا شگون ہے کہ یہاں پہ صرف انسان ہی نہیں، نباتات اور ہر قسم کے جو دوسری چیزیں ہیں، حیوانات پر ہیں، ان کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ زمین کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پانی کی بہت شدت سے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اور رحمت سے مایوس ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ فیسٹیولز بھی چل رہے ہیں، اور ان کی بھی جو پرابلم وہ بارش کی وجہ سے سامنے آ رہی ہے، ہر ایک چیز ہو رہی ہے، لیکن موسم بہت اچھا ہے، اور بالکل اس طرح کا موسم ہے جیسے کہ ہم مری میں آئے ہیں۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، اور یہ ہوا جو ہے یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے اور صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ جی راجہ صاحب،
0: شاہ صاحب، صحت کے لیے بہت اچھی ہے، چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، پھر جو ہے سیاستدان بات کریں گے، ابھی تو چھٹیاں پا رہے ہیں، تو ابھی تو شگل لگا ہوا ہر طریقے کا، خبریں پھر بھی آ رہی ہیں، تو کیا خبریں بھی تو کچھ بتائیں ہمیں۔
2: دیکھیں جی، خبریں اس وقت تو انتہائی، پورا دنیا، پورا یورپ، ایون ڈنمارک جو ہے، یورپ کے اندر، ہم نے اگلے دن بھی یہ بات کی تھی کہ یوکرین کے بعد اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے، یورپ کے اندر سب سے زیادہ حالات جو ہیں وہ سیاسی، وہ اس وقت ڈنمارک کے اندر خراب ہیں۔ لیکن اگر ہمارے سیاستدان صرف اس بات کو، یہ عزم اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہماری فیملی، ہماری بات، ہمارا یہ جو گھومنا ہے بعد چھٹیوں پہ، یہ بہت ضروری ہے، ہم چھٹیوں پہ ہیں، تو پھر وہ سیاست دان ہی ہے، پھر کہ وہ عام ورکر ہیں جو کہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، اور ان کو عوام اور سیاست کا کوئی، ان کا اوڑنا بچھونا آپ یہ کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ سیاست دان، جیسے میں نے پہلے کہا تھا ناظرین کو، کہ سیاست دان ویسی ہے جیسے ایک جج ہوتا ہے ہر وقت ڈیوٹی پہ، جیسے ایک پولیس والا ہوتا ہے ہر وقت ڈیوٹی پہ، ایک فوجی ہوتا ہے ہر وقت ڈیوٹی پہ، تو سیاست دان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت سیاست ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو عزم ہوتا ہے وہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، عوام کو انفارمیشن دینے کے لیے ہوتا ہے، عوام کے ساتھ اس کا رابطہ جوڑا رہتا ہے، تاکہ عوام کل کو اس کو یتیمی کی صورت میں بنا کر لوگوں کے سامنے جا کر یہ نہ کہنا چاہیے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ووٹ ڈالنے نہیں، بلکہ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ یہ ان کے لیے جاگ رہا ہے اور ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو ہمارے سیاستدانوں کو آنا چاہیے۔ ابھی اگست کا مہینہ آ رہا ہے، یہ جولائی کا مہینہ تقریباً ختم ہو گیا، تو سپٹمبر، 5 سپٹمبر کو یہاں پہ بہت بڑا جلوس نکلنے جا رہا ہے جو فارنرز کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے جو قوانین ہے یہاں کے، میں نے ہزار بار یہ بات آپ کے ریڈیو سے، آپ کی ذریعے سے یہ بات نشر کی ہے کہ ڈینش آئین اور ڈینش لاز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے لوگ، ہمارے سیاستدان، جو ہماری زبان، اہل زبان ہے ہمارے، وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جی نہیں، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ देखिए यहाँ पे वो कानून को सख्त से सख्त किए जा रहे हैं, यहाँ पे आप महफिलें लगा रहे हैं, आपके पास इस वक्त बहुत बड़े चांस है, इतने मैंगो फेस्टिवल्स हो रहे हैं कोपेनहेगन के अंदर, कोपेनहेगन से बाहर हो रहे हैं, आप वहां पे जाके अपने स्टॉल लगा सकते हैं, लोगों को हर जबान के अंदर इंफॉर्मेशन मुहैया कर सकते हैं, आप लोगों से जाती तौर पे, ये नहीं कि आप सिर्फ 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए जाएं मैंगो खरीद रहे या अपना फोटो सेशन कराने के लिए मखसूस लोगों से जफे मारने के लिए आप जाएं या कहीं क्रिकेट में जाहिर होकर आप ये कहें जी कि इससे लोगों पे बहुत ज्यादा हमारे असरात पैदा हो गए, नहीं ये गलत चीज है। आपको हर इंसान के साथ बात करनी चाहिए, उनसे उनकी मुश्किलात का पूछना चाहिए, सिर्फ सलाम अलैकुम करना या फोटो का सेशन करने से नहीं, आपको बताना चाहिए लोगों को, खुसूसी तौर पे जो हमारी वहां पे बहनें बेटियां आई होती हैं लेडीज, आपको उनसे मुखातब होना चाहिए, उनको ओपनली ये बताना चाहिए कि यहाँ के कानून क्या बने हैं, यहाँ पे क्या सख्ती है, अब कम्यून में जो लोग काम करते हैं उनका फरीजिया क्या है कि वो लोगों को क्या बताए, यहाँ के जो मेडिकल बीमारी पे लोग होते हैं इनको इनको ये इल्म नहीं कि जब डॉक्टर एक मेडिसिन लिख के देता है तो वो मेडिसिन जो है वो डॉक्टर से तो लिखवा लेते हैं लेकिन जाके उसको अपोथिक से बाय नहीं करते, जब तक वो अपोथिक से बाय नहीं करते तो कम्यून को इस बात का पता लग जाता है, गवर्नमेंट को फौरन पता लग जाता है कि इसने डॉक्टर से ये चीजें लिखवाई हैं लेकिन ये चीजें इसने खरीदी नहीं, तो उस पे उसका झूठ सच पकड़ा जाता है, बाद में ये लोगों को कहते हैं जी किसी ने हमारी शिकायत कर दी, देखे जी फलाने ने ये कर दिया, देखे जो मेडिसिन जो आप क्रे कर रहे हैं, जो आप ये डॉक्टर को ये बता रहे हैं कि मुझे घुटनों की या मुझे कमर की या मुझे जो बीमारी है उसकी दवाइयात जो है वो जो भी वो लिख के देता है डॉक्टर वो आपको बाय करनी पड़ेगी, अगर आप बाय नहीं करते तो वो आपके कम्यून के पेज पे बकायदा रजिस्टर्ड होती है कि इस बंदे ने ये दवाई ली उसका कितना, आपके दवाइयों का सालाना खर्चा कितना, महाना खर्चा कितना, ये वहां पे ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, ये काम हमारा बताने का नहीं, ये काम है जो सियासतदान जो काम कर रहे हैं जो कहते हैं जी कि हम वेलफेयर तंजीमें चला रहे हैं, यहाँ पे जो तंजीमात बनी है ये उनका लोगों का काम है कि आके लोगों को अवेयरनेस दे, इसी तरीके से जैसे ये मैंगो फेस्टिवल्स हैं ये दूसरी चीजें हैं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो पब्लिक में भी आ रही है, वहां पे बहुत ज्यादा चीजें चल रही है, लेकिन क्योंकि ये लोगों का काम है इसके ऊपर भी लोगों को ये कान धरना चाहिए कि ये चीजें जो है ये एक्सप्लोर हो चुकी हैं, कब इसके ऊपर काम होगा मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे इल्म में ये बात आई है कि केसेस जो है वो रीओपन हो चुके हैं और क्या होने जा रहा है, अल्लाह ताला हमारी कौम को, ये हमारे लिए एक बेहतरीन बेहतरीन चीज है कि यहाँ पे मैंगो फेस्टिवल लग रहे हैं, क्रिकेट हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों को भी ये चाहिए कि इनको लीगलाइज तरीके से लेके चले, लोगों को इंफॉर्मेशन दें। राजा साहब मैं आपको एक ये बात बताऊं कि जहां पे भी फूड फेस्टिवल लगते हैं, आप ये फूड फेस्टिवल जो है ये बकायदा आपको हुकूमत यानी कि लोकल कम्यून की इजाजत के बगैर आप नहीं लगा सकते, आप उनको आपको कम्यून को डिटेल्स बतानी पड़ती है हम क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी फूड होगी, कौन कौन सी चीजें होंगी, ये सारा कुछ जो है ये कानून जो है ये पिछले 5-6 साल से यहाँ पे लागू है और उसको जो है वो लेके चलना पड़ेगा, तो ये काफी चीजें हैं जिस जो सुनने में आ रही हैं, पढ़ने में आ रही हैं। अब इतना ज्यादा सोशल मीडिया है, इतना ज्यादा पेजेस हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, पहले चंद एक होते थे कि व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे आ गया, एक तो सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मसाइल पे आ गया, अब तो आप देखें कि पुलिस की अपनी एक वेबसाइट बन चुकी हुई है जो डेली रिपोर्ट करते हैं कि पूरे शीलैंड में क्या हो गया, यूलैंड में क्या हो गया, फ्यून में क्या हो गया, कौन कौन से क्राइम कौन कौन से रजिस्टर्ड हुए वो उसके ऊपर लगा रहे हैं, किसने गाड़ी तेज की, किसने गाड़ी किसका चलान हुआ, वो सब कुछ जो है, तो इन चीजों को पढ़ने के लिए ये सियासतदानों का काम है कि अपने लोगों को एजुकेट करें और अपने लोगों को ये इल्म बताएं कि देखें बेशक हम छुट्टियों पे हैं, बेशक हम छुट्टियों पे हैं, हम काम कर रहे हैं, मुखालफिन जो मर्जी के इस बात पे सिकंदर ने, सिकंदर सदीक जो है मलिक सिकंदर, उसने दो तीन आर्टिकल्स लिखे हैं और सोशल मीडिया पे भी उसने लिखे हैं कि यहाँ की जो अवेयरनेस है, हालांकि वो भी बच्चों के साथ मेरा ख्याल में गर्मियों की छुट्टियों मनाने के लिए यूरोप में कहीं गया हुआ था, तो उसने भी काफी बात की है। और ये चीजें हमारे दूसरे सियासतदानों को भी चाहिए कि वो भी आगे आए और अपने हालात के बारे में बताएं, बल्कि यह नहीं कि वो आपस में एक दूसरे के बैक बाइटिंग जिसको कहा जाता है, यानी कि एक दूसरे की गबियत करें। तो मैं अपने यंगस्टर से यही उम्मीद रखता हूं कि आप जो हैं वो अपने रास्ता बनाएं, क्योंकि फलके थिंक के इलेक्शन जो हैं वो किसी वक्त भी इस मुल्क में दोबारा होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त जितनी भी पार्टियां हैं जो इस वक्त हुकूमत को पीडीएम को लेकर चल रही हैं, उनके अंदर अख्तलाफात बड़े बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे सोशल डेमोक्रेट ने क्या किया है, मोंस लुकिटॉफ ने फॉरन से पहले जो इनकी फॉरन पॉलिसी रूलिंग पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद की है, उससे पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, और अब जो है सोशल डेमोक्रेट जो है वो बिल्कुल जो उसके अंदर पुराने लोग बैठे हुए हैं या सही सोशलिज्म के जो नजरियात रखने वाले लोग हैं, वो ये ब्लू ब्लॉक की जो पॉलिसी सोशल डेमोक्रेट में घुसाई हुई है और हुकूमत कर रही है, उसको डिमोलिश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए वो अपने पर दोबारा फैला रही है। और अब सोशल डेमोक्रेट क्या करने जा रही है, ये भी एक डेढ़ माह के सामने वाजह हो जाएगा कि ये लोग कहाँ तक असर सूर रखते हैं। आपको पता है कि मोंस लुकिटॉफ जो है ये बहुत ही एक काबिल इंसान है और इंसान हमदर्द, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो डेनिश आइन है सोशल डेमोक्रेट्स की उस हिस्से की जो आइन पे अलमदारी चाहते हैं, जो आइन पे काम करना चाहते हैं, उसमें मोंस लुकिटॉफ और इनके साथियों का बहुत बड़ा हिस्सा है और बड़ा बहुत बड़ा करदार है। अब वो इस पे एक्टिव हो चुके हैं और इसके साथ अगर आप ये देखें कि रेडिकल वेंसा और इसके साथ एसएफ और इसके साथ जो अल्टरनेटिव जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टियां, ये अब हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन अभी तक जितने भी सोशल डेमोक्रेट के जो इंटरग्रेशन के मिनिस्टर हैं, जो उनकी आइन के खिलाफ जो उन्होंने बातें की हैं, यहाँ जो उन्होंने नए लॉ फोर्सर के ऊपर बातें की हैं, उसके खिलाफ किसी एक पार्टी ने ना कोई प्रोटेस्ट किया है, ना ही उन्होंने कोई ऐसा सोशल मीडिया पर लिखा है कि यह हमारी पार्टियों के खिलाफ है। वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो इस चीज का
0: सवाल ये पैदा होता है कि डिमांड तो बहुत सारी की जाती है, मैं गैर मुल्कियों की बात करूंगा, डिमांड तो ये बहुत ज्यादा करते हैं, हर पार्टी से डिमांड करते हैं और हर पार्टी में शामिल भी हैं, लेकिन समझ नहीं आता इनकी तरजीहात क्या हैं। जब भी कोई मसले मसाइल बनते हैं उस वक्त ये सियासतदान खुलकर बाहर नहीं आते, अपने पार्टियों में जाकर ये बात नहीं करते, लोगों को साथ लेकर नहीं जाते, टाउन हॉल के सामने नहीं जाते, पार्लियामेंट के सामने नहीं जाते, जमहूरी हक मांगने के लिए जाते, यहाँ तो जमहूरियत हक मांगने के लिए ये तो सबसे बेहतरीन मुल्क है।
2: जी बिल्कुल आपने सही बात की कि यहाँ का जो आयन है वो उमर लाहौर, सबसे पहले मैंने ही 80s में इस बात पे बात की थी, बल्कि जो उस वक्त डीआर रेडियो होता था उसके ऊपर सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैंने ही की थी कि ये उमर लॉ है और उमर लॉ जो है वो इंसानियत का तकाजा करता है, लेकिन हमारे अपनी गलतियों की वजह से, जिसमें मैं खुद शामिल हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि लोगों को मैं बुरा कह रहा हूँ, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ एज ए सियासतदान, जो मैंने यहाँ पे सियासत की है कि मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखे, अपने भाइयों की तरफ देखे, तो मैंने उनके लोगों को वो अवेयरनेस नहीं दी जो मुझे देनी चाहिए थी। हालांकि मैं लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, करने दें, लेकिन जो कानून है, कानून जो है यहाँ का आइन आज भी इंसानियत दोस्त आइन है, यहाँ का आइन जो है आज भी वो हमें 100% प्रोटेक्शन दे रहा है। आप ये देखें कि चंद हफ्ते पहले हमने आपके ही प्रोग्राम में ये बात नशर की थी कि यहाँ के जो इंसानियत दोस्त ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हुकूमत के इस कानून के ऊपर कि एक साल का जिसको सजा हो जाती है उसको रिपोर्ट कर दिया जाए, इस मुल्क से निकाल दिया जाए, तो उसके खिलाफ ही बातें कर रहे हैं। फिर वो ही ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं और बहुत सारे डेनिश, मैं आपको ये बता दूं कि 99.2% जो लोग हैं डेनमार्क के अंदर वो रैशिस्ट नहीं है। हम लोग खुद रैशिस्ट हैं, हम लोग खुद नफरत पैदा करते हैं, हम लोग खुद जो है वो इनको गालियां देते हैं, इनके इनके लॉज की खिलाफ वर्दी हम खुद करते हैं, गाड़ियों को इस तरीके से हम पार्क करते हैं, हम गाड़ियों को इस तरीके से तेजी से चलाते हैं। हम लोग कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहते कि बेटा देखें कि ये कानून की खिलाफ वर्दी है, आप देखें कि हमारे पास इतनी इनकम नहीं तो हमने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली है, क्या ये शो मारने के लिए, इसका क्या फायदा है। नजायज हरकतें हम खुद करते हैं और उस नजायज हरकतों की वजह से हम दूसरे लोगों को जो है वो बदनामी, सिर्फ इसलिए कि हमने ये बताना है कि हम हमारे पास पैसा है और हम ताकतवर है। देखिए पैसा तो आपके पास आ गया, पैसा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ईस्टर गेट के लोग भी पैसा कमाते हैं, निशे भी पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका हाल क्या होता है, उनका हजर क्या होता है, वो आखिर में जेलों में और गल सड़के उनकी जिंदगी गुजरती है। तो पैसा ही हर चीज नहीं, आपकी जेब में एक रुपया नहीं, एक करोड़ नहीं, लेकिन आपकी इज्जत है, लोग आपको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, ये अल्लाह का फजल है। और इसी तरीके से जैसे 70s में हम लोग यहाँ पे आए थे और तकरीबन 1990 तक हम लोग जो थे एक मोहब्बत, एक एक कुंभा बनकर, हम एक कबीला बनकर इस मुल्क के अंदर रह रहे थे। आज वो कबीला जो है, आज वो कुंभा जो है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गन ताने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर दौलत के अंबार लगा रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं। आप ये देखें कि शादी ब्याह होते हैं तो उसके अंदर भी अच्छे दोस्तों को, बुरे वक्त के दोस्तों को साथ में, जो बुरे वक्त में आपके काम आ रहे हैं उनको भूलकर आप ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखे जी हमने अपनी बच्ची या बच्चे की शादी की है, क्या हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखते आप किस चीज को इनविटेशन दे रहे हैं, आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है इनको रोकने के लिए, इस क्राइम को रोकने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए हमारे यंगस्टर्स को छुट्टियों के बजाय, जो हमारे सियासतदान है उनको छुट्टियों के बजाय यहाँ के जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद कराना बहुत ही जरूरी है। आप देखें ये इंडियंस हमारे बाद में आए हैं, जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त 100 के करीब यहाँ पे सरदार और इंडियन नेशनल यहाँ पे इस मुल्क के अंदर थे, लेकिन हमारी तादाद ज्यादा थी। अब उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वजूहत क्या है कि वो इस मुल्क के आइन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो इस मुल्क के आइन को पढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम दोगला पासी कर रहे हैं। हमने वो जो पाकिस्तान में और यहाँ पे अपनी इज्जत को, अपने सर के ताज को ऊंचा करने के लिए हम जो भी वायलेशन, मैं खुद उसमें शामिल हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को मैं लता रहा हूं, हम वो वायलेशन कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो राजा साहब इससे जो इंतशार है वो दिन ब दिन
0: साहब आप जा फरमा रहे हैं, जो इंतशार है वो ज्यादा फैलता जा रहा है। तो जाहिर है जिन्होंने कुर्बानियां दी होती है, जिंदगी का हिस्सा गुजारा होता है, तो हमें आगा नदीम साहब ने भी ज्वाइन किया है तो आगा साहब से भी पूछने की कोशिश करेंगे। चौधरी शौकत साहब जो बिज़नेस कम्युनिटी से इनका गहरा तल्लक है और इस पर वो अक्सर बात भी करते रहते हैं, सियासत से भी वो उनका ओढ़ना बिछोना भी है साथ साथ, उनसे भी बात करेंगे। आगा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सियासत को आपने देखा, आपने फ़ौज को देखा, यहाँ के हालात को देखा, यूरोप को देखा, दुनिया को देखा। हम लोग मुतालबात बहुत करते हैं, जो प्रैक्टिकली जमहूरी हमारे काम होते हैं वो हम खुद नहीं करते, हम जो है वो गुलामी की तरफ जाते हैं। जी आगा साहब, लगता है आगा साहब को हमारी आवाज नहीं जा रही। चलो शौकत साहब आपको हमारी आवाज आ रही है?
3: जी जी जी जी,
2: आगा साहब भी बोल पड़े हैं।
0: आगा साहब आवाज आ रही है, मेरा सवाल आपको समझ आ गया है?
3: एक्चुअली मैं चुके जब बात की कुछ उस वक्त में फोन में प्रॉब्लम थी तो अभी आप फरमाइए।
0: आगा साहब आपने सियासत में बड़ी कुर्बानियां दी और दुनिया को भी आपने देखा और अपनी जॉब को भी देखा, नौकरी को भी देखा, यहाँ के हालात को बहुत करीब से देखा। तो आगा साहब यहाँ देखा कि जितने भी गैर मुल्की सियासतदान हैं मुतालबात तो बहुत करते हैं लेकिन काम वो करते हैं जो गुलामी वाले हैं।
3: महाराज जी वो एक मुहावरा है ना, जो चीज इंसान की फितर में शामिल हो जाए ना उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं आदत तब्दील हो जाती है, नेचर नहीं चेंज होती। तो अब जब जब जन्म गुट्टी में चीज गुलामी की आ जाए ना, तो उसको रफा करना जो ना वो कुछ नामुमकिन सा होता है। गरचे बंदा बड़ी कोशिश भी कर लेना, तब भी उसमें जर्म्स ऐसे कायम रहते हैं। तो लिहाजा जो लोग इन चीजों से आदि हो चुके हैं, वो तो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जी
0: सब आपने देखा होगा कि यहाँ जमहूरी मुल्कों में, खासकर मैं डेनमार्क की बात करूंगा, यहाँ तो जमहूरियत से ही सारे काम होते हैं। जो मर्जी कर ले, कानून कायदा जो है वो जमहूरियत से ही बनता है। अगर आपका इत्तफाक है तो हर चीज में आप तब्दीली ला सकते हैं।
3: ठीक है जनाब। देखिये राजा साहब, जहां तक बात है ना कानून की पासदारी, ये यहाँ की, अब हम यहाँ डेनमार्क में आए हुए हैं, डेनमार्क की यहाँ की जो भी कानून है, जो भी हम चीज देख रहे हैं, बहरहाल हमें तो उन चीजों की इतनी समझ नहीं आई जितनी कि आज के नौजवानों को है, क्योंकि वो यही पले बड़े, यही उन्होंने तालीम हासिल की, यहाँ के कानूनों से ज्यादा वाकफियत रखते हैं। हम अभी भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके कि हम इनके तमाम कानूनों को पढ़ सके, देख सके। लिहाजा अब ये हमारे नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को लेके आगे चले, क्योंकि यहाँ जो भी अमल होता है उसमें डेमोक्रेटिकली लॉ के मुताबिक चलते हैं। यहाँ कोई फेवरिज्म की बात मेरा नहीं जहन मानता कि कोई चलती हो, या जो कानून बोलता है, जो डेमोक्रेसी के जो रिमूज है, वो ही इन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई इक्का दुक्का बीच में ऐसे आ भी जाए तो वो इतना अलफूल नहीं सकता जिस जो के कानून की डिमांड है। तो लिहाजा ये जो चीजें है ना, ये अब हमें समझ लेनी चाहिए। हमें बजाय इसके कि खुद परस्ती में रहें या किसी ऐसे पहलू में रहें कि जहां हमारे लिए आंखें ब्लाइंड हो जाएं या बंद कर लें, तो ये हमारे लिए अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो लिहाजा मैं यही अर्ज करूंगा कि जो चीजें हम हासिल नहीं कर सके, हमारी ये जो नई जनरेशन आगे आ रही है, ये इनकी बड़ी अहम जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को समझते हुए, अपनी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स को समझते हुए, हमारे अपने जो तहजीब व तमद्दन के जो हवाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें।
0: बिल्कुल बजा फरमाया आगा साहब। चौधरी शौकत साहब, आपने बातें सुनी, शाह साहब की भी बात सुनी, आगा साहब की भी बात सुनी, चूंकि आप खुद नौजवान थे जब इस मुल्क में आए और उसके बाद कारोबार किया, आप बिजनेस कम्युनिटी में अच्छा खासा अपना असर रसूख रखते हैं, सियासत में भी अपना असर रसूख रखते हैं, लेकिन देखने हैं या सुनने में यह कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े लिखे तरीके से चलाकियाँ करते हैं, आप क्या कहेंगे?
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को और मेरे जो साथ हैं, शाह साहब हैं, आगा साहब हैं, मैं इनकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूं और सुनने वालों को भी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
4: जी शाह साहब की थोड़ी सी मैंने बात सुनी, वो इंडिया की कम्युनिटी के हवाले से बात कर रहे थे और आगा साहब ने भी जो बात की, बात ये है कि राय साहब हमने तो काफी अरसा इधर गुजार दिया, हमने अपने हिस्से का काम जो है ना जिस तरीके से भी करते रहे हैं, हम कम्युनिटी जो है ना करते रहे हैं, और अब नौजवानों का, जैसे आगा साहब ने कहा कि नौजवानों का फर्ज बनता है कि अपनी कम्युनिटी को साथ लेके अपने अपनी तालीम के बलबूते पे हमारे हमारी पाकिस्तानियों की इज्जत बढ़ाएं, पाकिस्तानियों के लिए फख्र का बायस बने। जो हमारे, चलो हमसे कुछ कुताहियां हुई, जो हमारे बुजुर्गों से कोई कुताहियां हुई, बड़ों से कुताहियां हुई, इस तरह से, क्योंकि हमने देखा है कि जितने अरसे से मैं डेनमार्क की जैसे सियासत की बात कर रहे हैं, तो डेनमार्क में कभी भी फेयर सियासत नहीं हुई, मुखालफत की सियासत होती रही है, ग्रुपों की सियासत होती रही है, कभी पाकिस्तानी होने की सियासत नहीं हुई, कभी हमने एज ए पाकिस्तानी हो के मुतहिद हो के हमने ना ही इलेक्शन लड़े हैं, ना ही सियासत करनी है। अगर कोई सियासत हुई है तो ग्रुपों में हुई है, एक ग्रुप बना है तो उसके मुखालफ दूसरा ग्रुप बन जाता रहा है, और एक जो सियासत में खड़ा है तो उसके खिलाफ दूसरा सियासी सियासत को खड़ा कर देते हैं, बंदे को ला के खड़ा कर दिया जाता है कि नहीं जी ये नहीं है ये है। लेकिन हमें इस वक्त जरूरत है इत्तेहाद की, हमें दूसरी कम्युनिटी की तरह देखना है। देखो दूसरी कम्युनिटी जो जब भी है वो हमसे कितने आगे चले गया। हमारा किरदार था कि हम सबसे आगे थे उस वक्त, हमारे प्रोग्रामों में हम सबके आगे थे, सियासत में सबसे आगे थे, पार्लियामेंट में हमारे बंदे थे, सारा कुछ था, कम्यूनों में हमारे बंदे होते थे। लेकिन अब कितने अरसे से हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, और यही है कि मुखालफत की सियासत होती है। हमें इससे हटके हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए सोचना है, पाकिस्तान के लिए सोचना है, पाकिस्तान की बका के लिए अपना फख्र हमें सर बुलंद करना है, और हमें जो जो भी है कुछ कोई गलत करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और दूसरे जो जो किरदार अदा कर रहे हैं अच्छे लोग हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, चंद लोग हैं कुछ ऐसे हो सकता है कोई इस तरह से कुछ जिनसे कुछ गलतियां होती रही हैं, लेकिन मोस्टली पाकिस्तानी मेहनत है, मेहनतकश है, उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, और डेनमार्क में तरक्की में उन्होंने बहुत अपना किरदार अदा किया है। और आज अब हमारा जो है ना, हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, बच्चे हमारे देखे कितने पढ़ लिखे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और हर शोबे में है, जिस शोबे में देख ले तो पाकिस्तानी है, वो अपने बच्चे आगे हैं हमारे। तो अब इनको आगे बढ़ के हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हमें सबको साथ लेके जो भी बच्चा लायक है उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और उसको उसको आगे आना चाहिए, और उसको आने देना चाहिए आगे। उसके साथ मुखालफत की सियासत नहीं करनी चाहिए कि उसको पीछे कर दे किसी उसके बाप की, बाप के साथ उसकी मुखालफत हो, बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, खानदान के साथ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सब ने मिल के अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, और हमें अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक बावकार और सरबुलंद जो है ना हमें करना चाहिए, ताकि हम भी ये दूसरी कम्युनिटी के तरीके, दूसरी कम्युनिटी की तरह जो है ना हम कहें कि यार माशाल्लाह हमारे भी सियासत में इतने पार्लियामेंट में बंदे पहुंच गए हैं, कम्युनों में इतने बंदे पहुंच गए हैं, हमारे बाकी शोबों में तो हमने बहुत तरक्की की है, बच्चों ने काफी माशाल्लाह अपना जो है ना अपना किरदार अदा किया है, अपने पढ़े लिखे हैं, पढ़ गए हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत आगे चले गए हैं जो आप देखें ना।
0: तो लेकिन बात तो आपने बड़ी अच्छी की है, पढ़े लिखे होने की, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो मियां साहब आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। हमारी बात चौधरी शौकत साहब से हो रही थी, शाह साहब हमारे साथ हैं, आगा साहब हमारे साथ हैं, इनसे हमारी बातचीत चल रही है। तो पता नहीं कितना कुछ आपने प्रोग्राम सुना। मियां साहब बात हो रही थी ईमानदारी की, नौजवानों की, सियासत की बात हो रही थी, चौधरी शौकत साहब भी, शाह साहब भी, आगा साहब भी कह रहे थे हम कितने मामलात में जो यहाँ कम्युनिटी बस्ती है हम मतलब कि टॉप लिस्ट पर हुआ करते थे, अब भी माशाल्लाह हमारे बच्चे ज़्यादा पढ़ गए हैं, लेकिन जब भी हम अपनी गलतियों के पीछे छुपना चाहते हैं तो हम इंडिया का नाम ले लेते हैं। अगर इंडियन इंडियन भी तो हमारे शहरी इसी मुल्क में रहते हैं, अगर उनकी तरह उन्होंने तरक्की की है तो हमें तारीफ़ करनी चाहिए। उसके बाद कोई दुनिया के मामलात होते हैं तो हम कहना शुरू कर दीजिए अमेरिका ने किया या इज़राइल ने किया। तो मियाँ साहब हम अपनी गलतियों के पीछे बजाय अपनी इसलाह करने के हम दूसरों के साथ डाल देते हैं।
5: जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और सबको बहुत बहुत सलाम, जितने भी साथी हैं और जो भी हमारे सुनने वाले हैं जिधर भी है। और मैं असल में एक रेस्टोरेंट में बैठा था, और मैं अब यहाँ कोई नेट की प्रॉब्लम रहती है, मेरे पास अपना नेट नहीं है, तो थोड़ी सी ना दुश्वारी हो रही, सॉरी मैं एक साइट पर जा रहा हूँ। राज साहब आपने बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अहम मसला है जिस पर हमें बहुत गौर करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हैं हम बहुत दफा भूले हुए हैं, अपने दीन को उस तरह हमने प्रैक्टिकली नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। अपने अपने पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान का कल्चर जो है, सोच जो है, जिसके लिए ये मुल्क हमने, हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया था, उसको हम बहुत दफा भूल जाते हैं या कुछ चीजें इग्नोर कर जाते हैं। तो ईमानदारी तो एक हमारे दीन का एक अहम, यानी कि मुसलमान तो एक होना ही एक सच्चा मुसलमान चाहिए, मुसलमान की तो सोच ही एक सच पर बुनियाद रखती है और अपने ईमान पर बुनियाद रखती है। तो मैं अब क्योंकि आपकी बात पूरी पहले सुन नहीं सका, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ, आस्ता आस्ता जो है चीज सुनने के साथ साथ फिर मैं अपना भी व्यू इसमें शामिल करूंगा।
0: जी शुक्रिया मियां साहब। शाह साहब आपने बात सुनी, शाह साहब सियासत की बात होती है, यहाँ के जितने भी मामलात हैं डेनमार्क में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे हमारे शहरी हैं, कोई तरक्की करता है या आगे निकल जाता है, खामियां होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन क्या बात है वाहिद लोग हम लोग हैं जो अपनी गलतियों के पीछे दूसरी कम्युनिटी को शामिल करते हैं कि वो तरक्की कर गई है, वो तरक्की कर गई है। गलतियां करते हैं तो हम कभी दूसरे मुल्क को कह देते हैं, कभी तीसरे मुल्क को कह देते हैं, हम अपने गिरबान में शाह साहब क्यों नहीं जानते?
2: ये बिल्कुल मियां मनीर साहब की भी बात सुनी और चौधरी शौकत की भी बात सुनी और आगा साहब की भी बात सुनी है। असल में मसला ये है कि अगर हम 70s और 80s और 90s को देखें, जहां विलुवे मियां मनीर साहब, सॉरी टू से कि मैंने विलुवे कहा, ये उस वक्त इस नाम से बहुत मशहूर थे, ये यंग आदमी थे, बिल्कुल यंग, ये हमारी डेनमार्क की पाकिस्तानी सियासत में सबसे यंगस्टर जो आदमी था वो मियां मनीर साहब। लेकिन हर जगह पे पहुंचना, अपना वर्कशॉप बंद करना या अपने काम से आना या अपने टैक्सी बंद करना और वहां पे पहुंचना,
0: नुकसान करना
2: जो भी है, ये हर जगह पे ये पहुंचता था, हर जगह पे इसकी मौजूदगी होती थी और यहाँ के लोकल मसाइल पे खुलकर बात होती थी। अभी भी दो साल पहले तक इनके वर्कशॉप के अंदर, दो साल पहले इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये फोरमैन थे अपना कोपराउन टाक साके, तो उसके अंदर भी इनके काफी गैदरिंग होती थी और बड़े कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग और आम लोग भी आके वहां पे उस में अपनी बात सामने रखते थे। अब ये हो गया कि हमारे मसाइल रुक गए हैं, हमने यहाँ पे सिर्फ ये बात छोड़ दी है कि
0: क्या गलतियां की हैं हमारे नौजवान सियासतदान
2: हमसे, नहीं इन्होंने गलती नहीं की, हम लोगों ने गलती की है कि हमारे हमने अपनी सारी चीजें जो है अपने सर का ताज उतार कर यंगस्टर पे रख दिया है कि यंगस्टर्स जो है ये जबान समझते हैं, लेकिन जबान तो वो बोलते हैं, ये तो उनकी मादरी जबान है क्योंकि वो पैदा यहाँ पे हुए हैं, लेकिन ये कहना कि वो आइन को समझते हैं, वो सियासत को समझते हैं, वो दूसरी चीजों को समझते हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने सबसे पहले इस मुल्क के कानून और आइन को बदलने नहीं दिया और इस मुल्क में अपना नाम पैदा किया। अब मसला ये हो गया है कि हम लोग जो हैं, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, वो आयन की पासदारी नहीं करते और कानून को जो है वो फैसला करते हैं, कहते हैं जी कानून जो है ये बिल्कुल सही है, तो वो लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देते। मसाल के तौर पर अगर मेरे बच्चे पढ़ लिखे हैं तो मेरे बच्चे आगे मुझे ये नहीं बताते कि अबू आज शाम को ये कानून बदल गया, आज कम्यून में ये हुआ ये, उनके पास टाइम नहीं है। आप लोगों को अग्री करना चाहिए, जब तक के ये यंगस्टर्स जो हैं, ये पुराने लोगों को जैसे मियां मनीर साहब हो गए, चौधरी शौकत हो गया, अपना आगा साहब हो गए, दूसरे, जब इनकी सोसाइटी में नहीं बैठेंगे, इनको पता नहीं लगेगा कि हमारे अंदर वायलेंस कैसे पैदा हुआ, हमारे अंदर ये जो मैं आ गई है इसको कैसे निकालना है, इस मुल्क के कानून के साथ कैसे चलना है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे जो लोग मेडिसिन डॉक्टरों से जाके कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमें बहुत ज्यादा बीमारी है, लेकिन वो मेडिसिन तो लिखवा लेते हैं लेकिन वो जाके अपोथिक से वो दवाइयां नहीं खरीदते, तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है बकायदा कम्यून के अंदर। ये चीजें किसने इस तरह की इंफॉर्मेशन किसने देनी है?
0: आपने नौजवानों का जिक्र किया, नौजवान अगर खुद इनिशिएटिव नहीं लेते तो उस बंद बोतल में एचआर का क्या करें हम?
6: मुझसे सवाल किया राज साहब।
0: आगा साहब आपको आवाज आ रही है?
3: जी आ रही है जी।
0: आगा साहब जिक्र हो रहा है नौजवानों का,
3: जी,
0: अगर
3: जी।
0: नौजवान खुद इनिशिएटिव नहीं लेते तो उन नौजवानों का क्या किया जाए सियासत में? वो तो हिसाब होता है बंद बोतल अचार वाला, जब जरूरत हो थोड़ा सा अचार निकाल लिया।
3: देखिए जी, अगर तो नौजवान ये चीजें जानते हुए भी कुताही करते हैं या हम लोगों के लिए रहनुमाई नहीं करते, तो फिर बेहतर ये ऐसे है कि ऐसे नौजवान फिर जिन कामों में लगे उन्हीं में रहे, तो कम्युनिटी की तरफ ना आए, फिर ये सियासत की तरफ ना आए, फिर ये दावे ना करें कि जी हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। देखें, ये हम कम्युनिटी की तरफ से अपने नौजवानों को जिम्मेदारी दे रहे हैं कि बेटा हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसा कि अभी शाह साहब भी फरमा रहे थे, हकीकत यही है कि जब हम जैसे लोग आए तो हमने इनकी सोसाइटी में अपने आप को दाखिल नहीं किया, हमने नहीं देखा कि ये इनकी क्या सोच है, क्या अप्रोच है। हम यहाँ पे आए, लेबर करते रहे, अपने कामों में लगे रहे, लेकिन जो ही यानी कि हमारी औलादे बड़ी हुई, हमारी हमने औलादों को ये कहा कि बेटा हमारी ये प्रॉब्लम है ये, तो वो प्रॉब्लम को देखते हुए वो पॉलिटिक्स में भी आ गए। और अगर जो पॉलिटिक्स में आए हैं तो अब ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम लोगों ने तो हर तरह अपने बच्चों का साथ दिया है और देते रहेंगे, लेकिन जहां कोई काम गलत करेंगे, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, तो हम उसके लिए रहनुमाई उसकी बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मसाइल ये है कि हमारी अपनी तहजीब के बारे में जो जो चीजें हैं वो इन पर नुमाया की जाए, और उनकी जो चीजें ये जेंट्सों की वो हमें भी बताई जाए, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे कि मियां मुनीर साहब तो माशाल्लाह बचपन से ही हैं, और यानी कि शाह साहब का भी माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है, ये पूरे दुनिया में घूमे फिरे हैं, इंग्लैंड का उन्होंने कानूनों को, मेरा ख्याल है जितने कानून शाह साहब जानते हैं हम में से शायद ही कोई जानता हो। तो ये सारी चीजें जो ना ये शाह साहब मियां साहब रहनुमाई कर सकते हैं हमारे नौजवानों की, उनको गाइड कर सकते हैं, बेटा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अगर फर्ज कीजिए किसी जगह पे कोई चीज हमारे नौजवान उसको नजरअंदाज करते हैं, और हमारे रहन बड़े जो मियां साहब हैं, शाह साहब हैं, आप हैं, आप हमें निशानदेही करते हैं कि भाई हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें पूरी तरह अपनी नौजवानों को साथ देना चाहिए और उनको बताना चाहिए। अब जैसे कि मुजीब साहब है, मुजीब साहब भी यानी कि बड़ी नॉलेज रखते हैं, वो भी अभी वो पता नहीं क्यों नहीं बीच में आए मैदान में, लेकिन वो भी काबिल तहसीन है, वो उनके भी काफी इल्म रखते हैं, उनकी भी अवाम में काफी यानी कि मेल मुलाकात है। तो फिर बात ये अच्छा साहब अब बताते हैं,
0: आपने बजा फरमाया आगा साहब, आपने बड़ी बात कर दी है। मियां साहब की तरफ चलते हैं, चूंकि मियां साहब बहुत दूर बैठे हुए हैं। जी मियां साहब, आपने अब बातें सुनी, आप जी आपकी तरफ आए के।
7: जी जी बिल्कुल, आगा साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं मेरे बुजुर्गो साथियों समझता हूँ कि हमने काफी इस पर यहाँ रेडियो पर भी अपनी अपनी महफलों में भी, और जब भी हम इस बारे में कोई मसाजिद में इलेक्शनों पर जब भी हम बात करते हैं, ये दो तीन चीजें जो मैं यहाँ समझता हूँ कि जिसमें शायद हमने गलतियां भी की हैं और तरीकाकार भी गलत अपनाया। पहली बात तो ये है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग आए थे वो जॉब के पीछे थे, उसके बाद हमने एक फास्ट इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए कियोस्कें, टैक्सियां, ये वो। अब हमारे पिछले 15-20 साल से हमारे जो यंगस्टर है, बच्चे बच्ची हैं, वो माशा तालीम में काफी और जो होना चाहिए था शुरू से ही होना चाहिए था, लेकिन चले जरूरतें पूरी करनी थी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने, वो बच्चे जो है वो हमारे बहुत सारे यानी कि कल्चर और

0: बहुत नुकसान हुआ। तो ये मैं बच्चों में उठता बैठता हूँ, मैं उनके साथ जब बात हूँ तो वो हमेशा कहते हैं, चाहे वो मस्जिद की कमेटी हो, कम्यून के अंदर हो, हमारी यानी कि ओवरऑल बाकी चीजें सियासी एक्टिविटीज हो, तो मैं महसूस करता हूँ कि बहुत बड़ा गैप है हमारे और उनके दरमियान। और ये अल्लाह करे कि ये वक्त के साथ साथ जो है, अब काफी वक्त इसमें गुजर गया, लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये कम होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए। इस मुआशरे के अंदर हम तभी एक अपना एक बेहतर मैसेज, अपना हक का हकूक, अपना निजाम जो है आगे लेकर जा सकते हैं, जहां हम इन चीजों को अच्छी तरह, खसूसन तौर पर हमारे ये बच्चे बच्चियां जो हैं, इन चीजों में एंटर हों, समझें अपने मजहब को। हमने किसी ने भी हमेशा तो नहीं रहना, ये शाह साहब 75 साल की है, हम तो बड़े लोगों में आस्ता आस्ता हमने इन चीजों से यानी कि छोड़
1: मियां
0: जाना है।
1: साहब, ये आप लोगों की गलतियां हैं ना कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, शाह साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, आगा साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, मुजीब साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, चौधरी शौकत साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़े।
0: देखिए बात है, ऐसा आप ठीक कहते हैं, मैं खुद इसके कभी कभी ये जरूर सोचा, दोस्तों ने भी बैठकर कहा कि जी आपने ऐसे क्यों नहीं किया, 20-25 साल पहले कर सकते थे, लेकिन जिन्होंने किया, आप देखें कि यानी कि नदीम फरूक थे, कमाल कुरैशी थे, सिकंदर थे, यानी कि ये इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता किसी ने भी कुछ बेहतरी की तरफ या फर्दन आगे नहीं अपने आप को लेकर गए, बल्कि ये पीछे गए, कोई निकल गया, कोई किसी यानी के मेंबर ना रहा, कोई बन ही ना सका। तो मैं यानी कि बाई नेम कोई तनकीद नहीं करना चाहता, मैं अपने मैं समझता मेरे मौजूद सब की हम की ये गलती है कि हमने सिस्टम को ना समझकर और सिस्टम ना ऑर्गेनाइज कर सके, अपनी जो बरादरी, अपना गांव, अपना क्या कहते हैं यानी कि अपनी अपनी जो सोच है उसमें पर्सनली हमने फायदे लेने की जो कोशिश या सोच रखी थी, उसके बदौलत हमें बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इलेक्शन तो हर 4 साल बाद होते हैं, कम्यून के हों या दूसरे हों, उसके अलावा देखें इलेक्शनों से पहले एक अपना एक एक सिस्टम, एक निजाम है यहाँ का, जिसमें हमने एक साथ एंटर होना है और आपने करना है, और फिर उसमें अपने आप को यानी कि हमने अपना क्या कहते हैं पेश करके उसमें अपना हिस्सा कह लें, अब डालकर अपना कल्चर, अपने कोई डैनिश नहीं कहता, ठीक है आजकल हालात जो है काफी, मैं भी देख रहा हूँ बड़ी तंग नजरी से हमारे दीन को देखा जा रहा है, हम लोगों को देखा जा रहा है, फॉरनर्स की बड़ी बात आजकल, ये रिसेंटली जो इलेक्शन हुए इसको इस्लाम को बहुत इन्होंने नेगेटिव कुछ पार्टीज ने बड़ा वो पेश किया, तो ये सारी चीजें जो है राय साहब हम समझते हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमारी जो जहेर हमारे हैं, ये हमारा छोटा जो है आगा साहब का बेटा, ये हमारा बच्चा है, और बहुत सारे इनके जी शान है, अभी अगर हम नंबर्स देखें इस कोपनहेगन के अंदर जिधर हमारी कम्युनिटी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे यंगस्टर की तादाद काफी बड़ी है, अब उनको जो सपोर्ट चाहिए यानी कि वोट की जो जरूरत है, उसमें हम मैं समझता हूँ कि डिवाइड होकर और गलत सोच और नजर को जो है अपना कर हमने कुछ अचीव नहीं किया, जिस जो सारा कुछ हमारे सामने आया, तो छोड़े कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा किसी और के नहीं, अब हमारे ये बच्चे हैं, अब इन्होंने यानी कि हमारा फ्यूचर जो है इनके
1: बिल्कुल मियाँ साहब,
0: हाथों।
1: आपने बजा फरमाया, जो टाइम गुजर गया वो गुजर गया, बच्चे ये फ्यूचर इन्हें आना चाहिए। चौधरी शौकत साहब, आपके हालात जो हैं माशाल्लाह हर तरीके से अच्छे हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी आपकी अपने साथ है, और माशाल्लाह आपके बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, इसी तरह मुजीबुर रहमान साहब के बेटे जो है वो पढ़ा लिखा बच्चा है, वो जो है ब्यूरोक्रेट बन चुका है, और माशाल्लाह इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, मुजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शेखो साहब आपके इस पास जाने से पहले मैं मुजीब साहब को हम सब मिल वेलकम करते हैं, मुजीब साहब आप क्या फरमाएं जितना कुछ आपने सुना।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तमाम मेरे जितने भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं और तमाम सुनने वालों को और आपको अस्सलाम वालेकुम। मैंने जनाब माशाल्लाह अपने भाइयों की बातें सुनी हैं, बड़ी खुशी हुई, और सब ने प्रमोट ये किया है कि हम यंगस्टर को हमने आगे लेके जाना है, तो यंगस्टर को तो हम देखें, हमने लास्ट टाइम भी जो इलेक्शन हुआ कमून में, तो हम तमाम लोगों ने कोशिश की कि हम यंगस्टर को आगे लेके जाएं और उनको प्रमोट करें और वो अपनी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए और जहाँ पे जो सियासत है उसमें अपना भरपूर हिस्सा डालें, और ऐसा ही हुआ

0: पाक फौज की कौन सा ऐसा जवान है जो ये कहे कि जी मेरी गुर्बत बड़ी थी तो लिहाजा मैं चंद सिक्के लेने के लिए फौज में भर्ती हो गया। कोई एक भी नहीं कहेगा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, राजा साहब आप सर्वे करवा गए क्या, एक सिपाही से लेकर क्या एक जनरल तक। बहरहाल जनरल की बात तो फिर बहुत आगे चली जाती है, लेकिन बात ज्यादा ये की गई है ना कि जी ये तनखाओं के लिए ये करते हैं वो करते हैं। मेरे पास तो कसम से अल्फाज भी नहीं है।
1: चले आगा साहब आपका हो गया। आगा साहब हमें शाकर साहब ने भी बरतानिया से ज्वाइन कर लिया है, तो हम चलते हैं चौधरी शौकत साहब की तरफ। चौधरी साहब आप एक जिम्मेदार आदमी है, एक साहब का जमात के आप 25 साल सदर भी रहे और इससे ज्यादा कम की बात हो सकती है, अब सरप्रस्ते आला भी हैं, सोशल काम भी आप करते हैं, तो डेफिनेट आप मीडिया को देखते रहते हैं। जो मौलाना साहब ने बयान दिया है और फौजियों के बारे में, शुदा के बारे में, चौधरी साहब आपकी क्या राय है?
2: जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब आपका और आपके चैनल का और सब साथी जितने हैं इन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम और आपके चैनल का शुक्रिया। जैसे कि मेरे दोस्तों ने पहले जो जिक्र किया है, लेकिन बातें तो वही हैं लेकिन जज्बात अपने अपने हो सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब ने जो बात की है, दिल को जो उन्होंने ना दर्द दिया है, हर इंसान को जो पाकिस्तानी है, मोहब्बे वतन है, उसके जज्बात को उन्होंने मजरू किया है। मैं समझता हूँ कि ये मौलाना साहब को हो सकता है कि अभी इक्तदार में जो है ना वो कुछ मिल नहीं रहा, तो इसलिए वो जो है ना आगे पीछे हमेशा जो है ना जब भी इनको कुछ इक्तदार से बाहर, और ये अपने पाकिस्तान का नहीं देखते, अपने मुल्क का नहीं देखते, अपने वो फौजी जवानों का नहीं देखते, वो बच्चों का नहीं देखते जो रात खड़े होकर बॉर्डरों पे इन लोगों की हफाजतें करते हैं। ये देखे ये लोग इस तरह की बकवास करते हैं कि जिससे वो इंसान इनको क्या कहे। आज तक सियासत में है, जब इनको खाने के लिए मिलता रहता है, इक्तदार की हवस इनकी खत्म नहीं होती, और ये बकवास करते हैं पाकिस्तान के फौजियों पर, पाकिस्तान के जवानों पे, और पाकिस्तान की फौज के वो मोहिब्बे वतन जो बच्चे, जो माओं के लाडले बच्चे जो बॉर्डरों पे खड़े होके अपनी जानें कुर्बान करते हैं और दुश्मनों से वो जंग लड़ते हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके सामने सीना तान के खड़े होते हैं। इन लोगों को तो शर्म ही नहीं आती। इन लोगों के ऐसी बातें, जब इनके पेट में वो पैसे डाल दो तो जो भी बयान है इनसे डलवा लो। ये इस तरह के लोग है, इनको अपनी जात अपनी इज्जत से कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह एक बावकार इंसान, हर इंसान वो बावकार है, अपना हौसला बुलंद है जो के जाता है, और उसके उसके उसके अंदर पाकिस्तान का जज्बा होता है, इसलिए वो कुर्बान होने के लिए जाता है। ये कभी भी नहीं होता कि कोई नौकरी ऐसी हो कि जिसको आगे पता हो कि मैंने गोलियां खानी है, मैंने अपनी जान कुर्बान करनी है और पैसे लेके वो करे। इंसान कोई भी नहीं ऐसा हौसला ही नहीं रख सकता। वो ही कर सकता है जिसके अंदर जज्बा होता है, जिसके अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत है, वालदैन की मोहब्बत है, वो अपने बच्चों को जवान करके पाकिस्तान के कुर्बान होने के लिए वो भेजते हैं। ये चंद पैसों के लिए नहीं वो भेजते, वो इसलिए भेजते हैं कि हमारा पाकिस्तान है, हमने इसकी हिफाजत करनी है और इसकी कसम खाई है हम लोगों ने, ये वो वालदैन है। तो ये ऐसे मौलाना फजलुर रहमान जैसे लोग, ये तो पैसों के लिए बिक जाते हैं, पैसों के लिए पता नहीं क्या क्या अपनी कुर्बान कर देते हैं ये लोग। इनकी क्या कहना है, इन्होंने सब पाकिस्तानियों का दिल दुखाया है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को, इनको अल्लाह पाक, हम तो कुछ नहीं कह सकते कि अल्लाह पाक इनको, इनका जो है ना, इनको इबरतनाक सजा देगा इंशाल्लाह।
1: चलें शुक्रिया चौधरी साहब। शाकर साहब आप उससे जाने से पहले, मैं शाह साहब जो हमारे यहाँ सिटी काउंसलर भी हैं और साहब का डिप्टी मेयर भी हैं और बहुत से हवालों से, दीनी हवाले से भी जाने पहचाने जाते हैं, सैयद भी हैं, तो शाह साहब आपने बातें सुनी, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि इस सिनेरियो में आप क्या कहेंगे, जो मौलाना साहब ने बयान दिया है ये पूरी सोशल मीडिया पर, मीडिया पर एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बना हुआ है।
3: जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने मुझे इस मौजू पर इजहार ख्याल के लिए मुझे भी शामिल किया। सबसे पहले तो आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ सामईन है जो, उनका शुक्रिया, और जो आपने ये खूबसूरत पैनल जो साथी जिनकी गुफ्तगू हमने सुनी और जिनकी बाद में भी सुनेंगे, उन सब का भी शुक्रिया कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और

0: उनके दिल आजारी हुई है और मौलाना साहब को इस बयान के ऊपर माफी मांगनी चाहिए और माजत करनी चाहिए। एक सियासी घराने से उनका तल्लक है, एक सियासतदान है, बड़ी जमात के सरबराह है, तो उनको ऐसा बयान देने से गुरेज करना चाहिए। हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और उनसे ये गुजारिश करेंगे कि वो इस बयान पे माजत करें और अपनी माफी का ऐलान करें। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इंसानों से गलतियां होती हैं, अगर गलती उनसे हो गई है तो वो इस पे मदद कर लें और शहीदों के जो लवाकीन है उनसे माफी मांग लें। तो मेरा ख्याल है माफी उनको फिर मिल जानी चाहिए।
1: मिल जाने चाहिए जी। शाह साहब, आपका टाइम सबको दिया आपने, और आपने सबको खुशी से अपना टाइम भी दे दिया। जी शाह साहब,
2: जी बहुत शुक्रिया सर। देखें, मैं सबसे पहली तो बात यह है कि मैं अपने साथियों की किसी भी बात से मैंने इख्तिलाफ नहीं किया, और वो कोई भी शख्स हो जो शुहदा की तोहीन करे या फौजी जवानों की कुर्बानियों का इनकार करे, वो मौलाना साहब हो या कोई भी हो, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, चूंकि जिस तरह हमारे दोस्त शाकिर साहब, जिस तरह उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक इस तरह का जो रद्द अमल है, जाहिर है कोई बात होगी तो उसके रद्द अमल में भी फिर बहुत सारे काम होंगे, और फिर ये कि खुदा ना खास्ता ऐसे मवाके हैं जो उनसे गैरों को फायदा होता है, तो ये शायद अगर उनकी बात है जो वो किसी तरीके से उसको वो जस्टिफाई करने की पोजीशन में भी हों, तो भी ये गलत वक्त पे ऐसी बात है जो अफवाज पाकिस्तान के मुतालिक, जो कि नबर्द आजमाए इस वक्त अपने से 5 गुना बड़ा जो दुश्मन है उसके दांत खट्टे किए हैं अभी कुछ दिन पहले, और जिन हालात में से गुजर रहे हैं, और जो फितनतुल खवारिज जिसका जिक्र हम रोज सुनते हैं, उसके साथ अगर कोई नबर्द आजमा है तो अपनी जान दे रहा है तो कौन दे रहा है, तो ऐसी सूरत में उनका मोराल बुलंद करने की बजाय उनको डिग्रेड करने या डिफेम करने की जो कोशिश है वो इंतहाई भोंडी है, और मैं समझता हूँ कि इसके पीछे और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मुझे इस बात का इलम तो नहीं है, लेकिन मौलाना का इस मौका पर इस तरह का बयान देना ये किसी नए मंजरनामे का इब्तदाइया भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मौलाना की शख्सियत है जो वो बहुत सारी चीजों के राजदान भी हैं, वो अंदर के खोजी भी हैं, और वो पहले मिल मिल के खेल खेला भी जा चुका है, जिस तरह हमारे दोस्त ने पहले जिक्र किया कि जब वो उनको जरूरत होती है तो वो शामिल हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने जो फवायद हासिल करने होते हैं तो बाज़ औक़ात तो ऐसे मौके पर भी अपना एहतजाज किया जाता है ताकि हमें कुछ और मिल जाए, या इसके अलावा जो उनके साथ ये भी मुमकिन है कि जो उनके साथ वादे मुआहदे किए गए थे वो पूरे ना हुए हों, तो ऐसी सूरत में भी ये एक पॉसिबिलिटी बनती है कि उन्होंने इसका इजहार किया हो। बहरहाल इस मौके पर मौजूदा जो हालात जिसमें से पाकिस्तान और अकवाम आलम गुजर रही हैं, उस वक्त पाकिस्तान में किसी भी कोई ऐसा बयान देना जिसकी वजह से पाकिस्तान में कोई बदमजगी पैदा हो, अवाम में अवाम के जज्बात हैं जो वो मजरूह हों, अवाम में गुस्सा पैदा हो, ये हरगिज मुनासिब नहीं है, और इससे हर हमारे जितने भी सियासतदान हैं या कोई भी हैं उनको इन चीजों से फिलहाल और बिलखसूस इस वक्त में इन चीजों से परहेज करना चाहिए।
1: चौधरी शौकत साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी?
3: जी जी जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है।
1: चौधरी साहब, आप सियासतदान भी हैं और आपका बिजनेस कम्युनिटी से भी ताल्लुक है, तो ये सारी चीजें आपके सामने, इन सारी चीजों को देख रहे हैं, बिजनेसमैन भी कह रहे हैं, सियासतदान भी कह रहे हैं, मौलाना साहब बड़े जीरक इंसान हैं, हमेशा उन्होंने फौज के साथ शुदा की, हमेशा उन्होंने बात की, उनके लोग भी वो शहीद हुए होंगे, लेकिन इस मौके पे इतना सख्त बयान देना, शुदा का नाम लेकर बयान देना, नौकरी के हवाले से बात करना, आप क्या कहेंगे, बिजनेस कम्युनिटी क्या कहती है?
4: मैं समझता हूँ कि सबकी दिल आजारी हुई है और मौलाना साहब को इस तरह के बयान बिल्कुल नहीं देने चाहिए थे, और अगर दिए हैं तो जैसे मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने कहा कि माजरत करनी चाहिए उनको, और जिनकी दिलादारी हुई है उनसे माजरत करके जो है ना ये बात को खत्म करना चाहिए। और दूसरी बात है कि मौलाना साहब कोई ऐसी शख्सियत नहीं है, वो एक सियासतदान है और सियासत में काफी अरसे से अपने जो है ना बुजुर्गों से लेके आज तक वो करदार अदा कर रहे हैं, और लेकिन मौलाना साहब का इस तरह का बयान देना, आपको पता ही है एक दफा नहीं पहले भी दे चुकी है, जब उनकी डिमांडें पूरी नहीं होती तो फिर इस तरह की हरकतें वो करते हैं मौलाना साहब, लेकिन ये हरकत बहुत ज्यादा दुख वाली बात है कि उन लोगों की जो जिनके बेटे, जिनके भाई, जिनके वालिद जो है ना शहीद होते हैं, और जाके वो उनको कहना कि ये पैसों के लिए जाते हैं, ये लोग पैसे लेते हैं,

0: ये बहुत दुख की बात है। और मौलाना साहब को कोई भी शोबे का बंदा हो उसकी दिलाजारी हुई है, और मौलाना साहब को माजरत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान हालत जंग में है। जैसे हमारे हमारे भाइयों ने पहले भी कहा है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त जंग की सूरत में ही है। हर वक्त हमारे जवान अपनी शहादतें जो है ना दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन इन मौलाना साहब को ख्याल करना चाहिए इस तरह के बयान देते हुए।
1: मौलाना साहब को ख्याल करना चाहिए। मुजीब साहब, आखिर में आप क्या फरमाएंगे?
2: मैं ये कहूंगा जी,
1: वो इसलिए कि वो हमेशा आपके भी एतादी होते हैं, सियासी जमातों के एतादी भी होते हैं, और कश्मीर में भी एतादी बन जाएंगे।
2: देखें, वो आपकी बात दुरुस्त है, वो तमाम जमातों के एतादी होते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ जो रेड लाइन होती है। देखें, फौज पाकिस्तान जैसा भी शौकत भाई ने कहा है कि हर रोज शहादतें दे रहे हैं, हर रोज आप देखें कि आप खबरें सुनते हैं जब, तो जिनके घर के जवान मर जाते हैं, जिनके भाई, जिनके बेटे, जिनके खावन, तो उनके दिलों पर क्या गुजरती होगी। मौलाना साहब एक जीरस किस्म के सियासतदान है, उनको ऐसी चीजों से गुरेज करना चाहिए। अगर उनके पीछे कोई ऐसा कोई इकदाम को करने की कोशिश कर रहा है या उनको खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो खुद एहतियात करें, क्योंकि ये ऐसे बयान दे के तो आपने तो मुल्क में अफरातफरी फैलाने वाली बात करनी है। फौज पाकिस्तान का जैसे मोहतरम इजाज शाह साहब ने कहा, हमने मोराल बुलंद करना है हर रोज। आप देखें ना, अब मैं कितने दिनों से देखें बलोचिस्तान में, उधर हर तरफ वो अपना हमारा मुकाबला हो रहा है दहशतगर्दों के साथ, तो उस चीज के ऊपर हमें फौज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, और हम सब साथ खड़े हैं। और मौलाना साहब के बयान की हम दोबारा मजम्मत करेंगे, और हम कहेंगे कि वो माफी मांगे इसके ऊपर, और खास तौर पर जो शहीदों के मतलब उन्होंने बात की उनके लवाकीन से माफी मांगे, और उसके बाद इनकी उनसे वो परहेज करे। अगर किसी से कोई गिला शिकवा हो तो उनके साथ आप बैठ के भी बात कर सकते हैं, ऐसे बयान देने से उनको गुरेज करना चाहिए। मेरी तो ये है, हम सब भाइयों को यही राय है, और आप
1: सोच समझ कर बयान देना चाहिए। मैं सबके सामने एक खत रख रहा हूँ जो एक शहीद ने लिखा है मौलाना फजल रहमान साहब के नाम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आपका हालिया बयान सुना, सच कहूँ तो बहुत दुख हुआ। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हुकूमतों से इख्तलाफ भी हर शहरी और सियासी जमात का हक है, मगर पाक फौज के शहदा के बारे में आपके अल्फाज सुनकर दिली दुख हुआ। मैं एक फौजी अफसर की बेटी हूँ, फौजी अफसर की बहू हूँ, फौजी अफसर की बीवी और एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर की माँ हूँ। मौलाना साहब, आप हमेशा से एक मुफाद प्रस्त सियासतदान रहे, आपने ज़्यादातर अपनी सियासत का सोचा, मुल्क का कम, मगर खुदारा अपने सियासी मफादात की जंग में हमारे शहदा को ना लाइएगा। सिर्फ 24 घंटों के लिए आप किसी एक बेटे के किसी एहसास सरहद पर खतरनाक मौत पर बेच कर देखें, शायद तब आपको महसूस कर सकें कि एक फौजी की माँ और इसके घर वालों पर क्या गुजरती है। जरा इन माओं के बारे में सोचिएगा, जिनके जवान बेटे वापस तो आते मगर फौजी परचम में लिपटे हुए आते, आपके बच्चे सिक्योरिटी के आसार में होंगे मगर सदों पहाड़ों और दुश्वार गुजार इलाकों में खड़े जवान किसी की भी औलाद हो सकते हैं। इनकी माएँ भी रातों को जागती हैं और इनके बच्चे भी अपने बाप का इंतजार करते हैं। मौलाना साहब, आप बुजुर्ग हैं, एक तजर्बाकार सियासतदान हैं, इसलिए आपके मुंह से ऐसे अल्फाज और भी ज़्यादा तकलीफ देते हैं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आपके इसके बयान के पीछे क्या सियासी मसले है, बा मकसद है। सियासत कीजिए, भरपूर इख्तलाफात कीजिए, मगर इन माओं के जख्म ना छेड़िए जिन्होंने पाकिस्तान को अपने बेटे दिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, अंदा बोलने से पहले एक लम्हा के लिए किसी शहीद की माँ के दिल को सामने रख कर सोचिएगा, शायद अल्फाज खुद रुक जाएं। सरीना जावेद, साबिक रुकन पंजाब असेंबली PTI। ये सब के सामने मैं खत रखूंगा, आखिर में सब बारी बारी अपना जवाब दे।
3: जी, बहुत अच्छी बात की है आपने, खत पढ़ा, ये वाकई एक माँ की ख्वाहिश है। और सियासत में हम सियासतदान एक दूसरे को जरूर नीचा दिखाते हैं, हद से बढ़ जाते हैं, कतलता कम कर देते हैं, हर चीज करते हैं, लेकिन कौम का जो अदारे हैं, कौम के अदारे जो हैं वो स्टेट के अदारे होते हैं, स्टेट के ऊपर जो इल्जाम लगाए वो गद्दार वतन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आप कम्युनिटी के चेयरमैन हैं, डरमा कम्युनिटी चेयरमैन के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहल करें, जिस तरीके से पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि हम यूरोप से कुछ लिखें, तो हम अपनी तरफ से लिखने से तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप एज ए कम्युनिटी फॉर्म सबके नाम लेके, सब तंजीमात के नाम लेके उनसे पूछ के अपने ख्याल का आधार जो है वो उनको आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ भेजे, ताकि हम शुदा के साथ खड़े हैं, हम किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं खड़े। जी शाह साहब
1: आ गया। अब मैं चाहूंगा बारी बारी सारे जवाब दे दें जनाब, शौकत साहब आखिरी जवाब देते जाएं ताकि क्लोज करें प्रोग्राम को।
0: राज साहब बिल्कुल शाह साहब की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ, हमें भी एक लिखना चाहिए ताकि जिन माओं बहनों के जज्बात मजरूह हुए हैं उनकी थोड़ी सी जो है ना उनके ऊपर मरहम लगाई जाए। और दूसरी एक छोटी सी, अगर मेरे ख्याल में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा वरना मैं एक बात आपसे शेयर करूँ, पिछले साल जब पाकिस्तान ने इंडिया पे जो या इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया था बाई एयर तरीके से, जहाजों के तरीके से और मिसाइलों के तरीके से, तो एक फैमिली थी जो कि इस जंग में हिस्सा लिया था इन जवानों ने, और उनकी उनको वो बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ, उनको ऑर्डर हुआ कि आपने ये जाना है इस माल पे, तो वो उसी वक्त उन्होंने अपने ससुर को टेलीफोन किया कि प्लीज आप आए अपनी बेटी को साथ ले दे और बच्चों को भी साथ लेके जाए। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा कि बताएं तो सही क्या बात है, उन्होंने कुछ बात नहीं बताई, उन्होंने कहा आप आए आग ले दे इनको। और जब वो आए आके वो कहते हैं कि हमने 2-3 घंटे का सफर गाड़ी में किया, हम आपको बता नहीं सकते कि हमारी काफियत क्या थी उस वक्त। जब उनके पास पहुंचे उन्होंने कहा कि ये है बेटी आपकी, मेरी अमानत है आप ले जाए, और इंशाल्लाह जब अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो फिर वापस मैं आपके घर आऊंगा, बेटी को लेके जाऊंगा और मेरे बच्चों को भी आप साथ लेके जाएं। ये जज्बात होते हैं, ये मौलाना साहब कह देते हैं कि पैसे लेके काम करते हैं। उन्होंने कहा, उनके ससुर ने कहा कि बताएं तो सही कि क्या बात है, क्या नाम, कहते हैं कि मैं कुछ बात नहीं बता सकता, आप इनको बस साथ ले जाए। तो उन्होंने रोते, बच्चे भी रोते, वाइफ भी रोती हुई, फिर ऐसे हुई, लेकिन उस वक्त उनके जज्बात रोने से ये नहीं कि रो रहे थे, वो जज्बात हो रहे थे कि ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। इस तरीके से जो बात कर रहे हैं तो लोगों के जज्बात ऐसे नहीं होते,
1: लोगों के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए, नहीं खेलना। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। शाकर साहब आप क्या कहेंगे?
2: जी बहुत शुक्रिया आपकी इस महफिल का, क्योंकि आप इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो हम सब ने जैसे कि मुश्तरका तौर पर यूनानिमसली हम सब का एक ही ख्याल है कि इससे दिल आजारी हुई है, बड़ी बुरी तरीके से दिल आजारी हुई है। और असमझे पाकिस्तान को बाहर के इदारे के, क्योंकि हम हमारे सर का ताज है वो बहुत बड़ा इदारा है और पाकिस्तान की सालमियत उनके कंधों के ऊपर है, उसके लिए वो करदार अदा कर रहे हैं, जिम्मेदारियां दिन रात देते हैं, 24 आवर देते हैं। यहाँ तक कि राजा साहब जो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद भी वो ऑन कॉल रेडी रहते हैं, रेडी टू गो। तो ऐसे लोगों की जो दिल आजारी हुई है, यहाँ अभी जो आपने खत पढ़ के सुनाया उस खत के अंदर एक एक लफ्ज बयान कर रहा है कि अबाओ दास से लेके पुरानों से लेके सास और जो है ससुर जो है वो भी, वालिद जो है वो भी, खामन जो है वो भी, भाई भी, और मेरा मौजूदा बेटा भी इस वक्त करदार अदा कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के अंदर। हम सब की मिलती जुलती कहानी है। अगर आप एक दूसरे से पूछना शुरू करें तो हम सब की ये कहानी है। हमारे घरों के अंदर अबाउदा शहीद भी हो चुके हैं, आज इस वक्त में हमारे घरों के अंदर जो परफॉर्म करके वापस आते हैं, गाजी बन के वापस आते हैं, जख्मी आते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, वो सारे हमारे खानदान का हिस्सा है। तो ये सारी दिलदारी जो मुश्तरका तौर पर उन्होंने कर दी, ये बहुत बड़ा जुल्म उन्होंने कर दिया। मैं यहाँ तक चाहूंगा कि अगर हमारी आवाज कहीं तक पहुंच जाए तो अफवाज पाकिस्तान को भी हेडक्वार्टर GHQ के अंदर एक मीटिंग कॉल करनी ही चाहिए, वहां फजल रहमान साहब को भी बुला लिया जाए, बाकी तमाम जो सियासतदान बड़े जो स्टेक होल्डर बड़े जो हेड ऑफ द पार्टीज हैं उनको बुला के बिठा के वहां पूछा जाए कि भाई ये रवैया जो है आखिर उभरा क्यों, आया कहां से। और इसका फायदा ये होगा कि फजल रहमान साहब की तरबियत हो जाएगी, उनसे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, बाकी जो वहां जाएंगे उनको भी ये पैगाम मिलेगा कि हमें फौज पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में आके इस चीज का जवाब देना पड़ रहा है, हमें आइंदा इस चीज की बड़ी एहतियात करनी है,
1: एहतियात करनी जाएगी। या शाह साहब आप तो क्या फरमाएंगे?
4: जी रशद, चूंकि मुझे एक जनाजे के लिए जाना,
1: मुझे पता शाह साहब एहसास है मुझे चीज का।
4: जी जी, तो मैं मुख्तसर ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग सब्ज हिलाली परचम में लिपट कर जो वापस आते हैं उनके जूते के ऊपर जो मिट्टी लगी होती है ना, हम लोगों में से कोई भी उसके काबिल भी नहीं, उसके मुकाबले का भी नहीं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे वतन को अपनी हिफाजत में रखे और जो लोग उसकी हिफाजत करते हैं अल्लाह पाक उनको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन
0: आमीन
1: आमीन आमीन। आगा साहब आखिर में आप क्या फरमाएंगे?
0: मैं बस ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ राजा साहब کہ تمام دوستوں ساتھیوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور مولانا کے ان لفظوں کی باقاعدہ مذمت کی, میں بھی اس میں شامل ہوں. لیکن مجھے ویسی ایک سوچ آتی ہے, جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سندور 2 کی بھی تیاری ہے, تو کیا یہ کسی کے اشارے پہ تو نہیں ایسی کوئی بات کی گئی؟ یہ
3: صحیح ہے, صحیح ہے.
0: پلیز اس بات کو ذہن میں رکھے گا, کیونکہ ہمارا جو عزلی دشمن انڈیا ہے وہ بار بار سندور 2 کا, کیونکہ ان کی جو ہزیمت ہوئی ہے پہلا سندور 1 کر کے, وہ دوبارہ اس کی تیاری میں ہے. تو کیا کہیں ہمارے عزلی دشمنوں کو ہمارے گھر میں ہی صحیح کچھ لوگ ایسے تو نہیں مل گئے جو کہ سندور 2 کے لیے یعنی کہ سب کو تیار کر رہے ہیں؟ تو پلیز نگاہ رکھیے گا, سوچیے گا. میری سوچ ایسی آ رہی ہے جو مولانا نے اس مقام پہ اس حوالے میں جو بات کی ہے وہ انتہائی قابل نفرت, قابل مذمت بات ہے. بس میں یہی کہوں گا.
1: بہت شکریہ جی. مجیب الرحمان قریشی صاحب,
2: دیکھیں جی آپ تمام بھائیوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور سب سے زیادہ تکلیف یہی ہے, ہم سب کو اس کی دل آزاری ہوئی ہے, ہمارے شہیدوں کی فیملیز کو دل آزاری ہوئی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے اس بیان کا ISPR جو ہے وہ اس وقت نوٹس لیں, نوٹس لیں, اور نوٹس لے کے اور اس کو پوچھا جائے کہ مولانا صاحب آپ نے یہ بیان کیوں دیا, آپ نے یہ بیان آپ کی کسی وجہ سے دیا ہے یا آپ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے, تاکہ ان کی وضاحت آ جائے. تو میرا خیال ہے کہ ISPR کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے,
1: ایکشن لینا چاہیے. جی شاہ صاحب, آخر میں آپ مہمانوں کا شکریہ ادا کریں, آخری الفاظ بھی کہیں.
3: جی میں سب مہمانوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ بتائیں کہ کمیونٹی فورم کے چیئرمین کی حیثیت سے ہم راجہ وقور افضل کو یہ اختیار دیتے ہیں. خصوصی طور پر میں تو کہوں گا کہ یہ ہمارے سب کے نام لے کے ہماری پارٹی ہو گئے, یہ کنڈیم کرے اس چیز کو, اور اپنے جتنا بھی ان کا میڈیا ہے یا ان کے جتنے بھی چینلز ہیں, اور ایون پاکستان امبیسی ڈنمارک کو بھی اور فارن منسٹری کو بھی یہ جو چیز ہے یہ ہماری طرف سے جو بھی یہ لکھیں گے وہ ان کی کاپیاں بھی آپ لوگوں کو دی جائیں, اور وہاں پہ یہ لازمن ہو کہ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور شہدا کی دل سے عزت اور احترام کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ صاحب؟
2: پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کی طرف سے ان کو اجازت.
0: شاہ صاحب آپ نے بالکل وجہ فرمایا, تمام دوست ساتھی جتنے بھی یہاں پہ جو بول رہے ہیں یا جو سن رہے ہیں, جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور یہ باقاعدہ راجہ صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ باقاعدہ ایسے پیپر کی شکل میں لا کے امبیسی میں بھی فارورڈ کریں.
3: جی چودھری شوکر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟
5: بالکل بالکل شاہ صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, جو ہے نا بالکل راجہ صاحب کو حق ہے اور جس طرح آپ نے کہا کہ بالکل ہم سب اتفاق کرتے ہیں اس بات.
3: جی شاکر صاحب.
6: جی بالکل اور دل بہت خوش ہوا, آپ نے بہت زبردست ایک تجویز پیش کی, یہ تاریخ کا حصہ بھی بن جائے گی, میں بھی اس کی بالکل آپ کے ساتھ.
1: بہت شکریہ شاکر صاحب, شاہ صاحب, تقیر شاہ صاحب, مجیب صاحب, آغا صاحب, رحمت اللہ بیگ صاحب, چودھری شوکت صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ, چونکہ آپ سب نے کہیں اس وقت جانا بھی ہے, تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ
3: باد.
1: سامعین ناظرین یہ تھے ہمارے مہمان جن کی آپ نے باتیں سنی. سامعین ناظرین ہر آدمی کو اپنی رائے حق ہے دینے کا, ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ایک بہت بڑا ایشو تھا چونکہ یہ لوکل ہم رہتے ہیں, لیکن چونکہ اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے, شہدا سے محبت ہوتی ہے, ہر گھر میں شہدا کی باتیں ہوتی ہیں, ہر گھر میں کوئی کسی نہ کسی فیملی میں کوئی شہید ہوتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کو بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. اگر غصہ ہوتا ہے کسی بات پہ, اختلافات ہیں, تو وہ آپ کے پاس کیوں پارلیمنٹ کا ہے, پارلیمنٹ میں بات کریں, سینٹ میں جا کر بات کریں, اور جلسے جلوسوں میں بات کرنا اور ایک کراؤڈ کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آواز باختہ ہو جانا, یہ کوئی ایک اچھی میچور نیس نہیں ہے. مولانا صاحب نے بہت بڑی اپنے طور پہ, ہو سکتا ہے وہ بڑے پراؤڈ ہیں, وہ معافی بھی نہ مانگیں گے, وہ مسالے بھی دیں گے کہ خواجہ آصف نے یہ بات نہیں کہی تھی, عمران خان نے نہیں کہی فوج کے بارے میں بات, نواز شریف فوج کے بارے میں نہیں بات کرتا تھا, وہ مسالے دینے کے لیے جس طرح وکیل جاتے ہیں نا عدالتوں میں, قاتل کی بھی حمایت میں وہ بول پڑتے ہیں, دلائل دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات ہے, لیکن جس بی بی نے اپنے وہ ان کا تعلق صاحب کا پی ٹی آئی سے تھا, اس کی ایم پی اے بھی رہ چکی, ان کا جو خط ہے انہوں نے سب کچھ بتا دیا. اور میں اپنی بات اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں اس وقت پروگرام کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہوں. سامعین ناظرین, اگلے پروگرام میں اب بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں, ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.
7: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: तमाम ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो बराह रास्त आधार आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। और आपको पता है कि गर्मी भी जो है वो जोरों पर है, हवा चलती है लेकिन गर्मी ज्यादा है, लोगों ने घरों में एयर कंडीशन लगा लिए हैं, उसके अलावा घरों में पंखे, सामने पंखे भी मार्केट में अब मिलने जो है वो बंद हो गए हैं। दो दिन पहले मौसम ठीक हो गया था लेकिन यहाँ भी मौसम तब्दील होते रहते हैं, जिस तरह सियासत तब्दील होती रहती है पूरी दुनिया की, पाकिस्तान, ईरान की, अमेरिका की, इसराइल की, इसी तरह यहाँ का मौसम भी जो है उसी जंग की हालत में रहता है, तब्दील होता रहता है, लेकिन इस मौसम को लोग इंजॉय करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, धूप से फ़ायदा उठाते हैं, इस मौसम से फ़ायदा उठाते हैं। बच्चों को चूंकि स्कूलों में छुट्टियां हैं तो इसकी भी एहतियात करनी चाहिए, मासूम बच्चों को धूप में नहीं निकालना चाहिए। तो इस वक्त हमारे थिंक टैंक जो हैं वो आपको बताएंगे धूप के मतलब, बचाव के मतलब, बच्चों के मतलब, और जो सियासी तब्दीलियाँ होती रहती हैं, और जो एक नया मौलाना साहब ने कट्टा खोल दिया है शोदा के बारे में जो उन्होंने बात की है, सबके दिल जो है वो रंजीदा है कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थे। उन्होंने जो जब्बर जलसा में बात की है वो एक मजहबी लीडर का बयान इस तरह नहीं आता, वो तो एक किसी गुंडे का बयान आता है, जो जिस तरह कोई सियासी गुंडा होता है जब बयान देता है, किसी मल्ले गली का गुंडा होता है जो बयान देता है। तो मौलाना तो एक बड़े बाइज्जत इंसान है, पार्लियामेंट के मेंबर कितनी बार बने, कश्मीर कमेटी के मेंबर कितने साल रहे, और एक बहुत बड़ी जमात को रन कर रहे हैं, उनके बंदे सेनेट में भी हैं, पार्लियामेंट में भी हैं, सूबाई असम्बली में भी हैं। तो मौलाना साहब आप स्टेट के मुलाजिम हैं, ये जो MNA है ये आपकी अपनी शिव नहीं, ये आपको स्टेट ने दी हुई है, आवाम ने दी हुई है, आप स्टेट के लिए सारा काम करते हैं। अगर आप स्टेट के खिलाफ गए हैं तो फिर गद्दारी के मुकदमे इसी तरह चलते होते हैं। आप तो बड़े बाइज्जत, बड़े, आपके वालदे मोहतरम मुफ्ती महमूद साहब बहुत ही काबिल वज़ीर आला रहे वसरात के, तो मौलाना साहब आपने क्या कर दिया, इससे आपको क्या मिलेगा, इस उम्र में, इस उम्र के हिस्से में आपको क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। शाह साहब एक बार फिर आपको दर आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं सबको मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। गर्मी वाकई टॉप पे है, इतनी ज्यादा गर्मी तो नहीं है, ये 26-27-28 डिग्री है, लेकिन फील लाइक जो है वो इससे 1 डिग्री ज्यादा हो रही है। आप धूप में थोड़ी देर ज्यादा खड़े रहे, 3-4-5 मिनट तो आप अनफ विटामिन डी ले सकेंगे, और इसके अलावा अगर ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो पानी की कमी आपके जिस्म में बहुत हो जाएगी। इसको जब आपको पसीना आ रहा है, आपको गर्मी महसूस हो रही है, तो आप ब्राय मेहरबानी पानी जरूर पिए। देखिए कोको कोला या किसी किस्म की जो ड्रिंक है वो हेल्प नहीं करती, इसमें आपको सिट्रस पानी जो है, नमकीन पानी जो है, नींबूदार पानी जो है, ये आप पिए, इससे आपको जो है, या आप अगर आपको बहुत तलब है तो आप कावा पी सकते हैं, लाइट कावा जिसे टर्किश कावा कहा जा सकता है, अफगानी कावा कहा जा सकता है, या आप उसको ये कह सकते हैं कि लाइट पाकिस्तानी चाय पी ले, लेकिन कॉफीन वगैरह से इस गर्मी में आप थोड़ा सा एहतियात बरते, क्योंकि कॉफीन जो है वो आपके दिमाग पे असर करती है, ऑलरेडी जब आपके जिस्म में पानी कम होगा तो कॉफीन जो है

0: अगर आपको तलब होती है तो फॉक्स कॉन्डी ले लें, या आप इस तरीके से, मैं उनका एजेंट तो नहीं हूं लेकिन ये एक बेस्ट चीज है जो आपको शुगर दे सकती है, ये कोको कोला और दूसरी पेप्सी वगैरह से बेहतर है। लेकिन अगर आप पानी रख लें, सिट्रोसवेंट रख लें, तो वो आपको ज्यादा जो है वो आपके जिस्म में असरात करेगी। और अगर आप नींबू पानी रख लें तो वो तो सबसे बेहतर है, क्योंकि आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, ये मेरा खुद जाती तजर्बा और मैंने लोगों से भी सीखा हुआ है, कि जब आप ड्राइव करते हैं और धूप हो और अंदर एयर कंडीशन लगा हो, तो आपको बहुत जल्दी जो है वो नींद आनी शुरू हो जाती है। और जब आपको नींद आती है तो आप समझते हैं कि आप कंट्रोल कर लेंगे, आपकी आंखें खुली है, लेकिन जब आपका दिमाग आपके साथ काम नहीं करता और सेकंड्स के अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इसलिए प्लीज अगर आप पानी पी रहे होंगे तो आपका पानी जो है वो तवाजन बरकरार रखेगा बॉडी के अंदर, तो आप फ्रेश रहेंगे। तो बच्चों को और बूढ़ों को तो पानी जो है वो मस्ट पीना चाहिए, हर आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद बच्चों को पानी पिलाएं, खुद भी पानी पिए, क्योंकि ये जो गर्मी है ये बच्चे बता तो नहीं सकते, बेबीज और बच्चे बता तो नहीं सकते, लेकिन पानी कोशिश करें कि पिए और ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपनी एहतियात करें। और ये जो लावा आया हुआ है, ये आया तो बाहर से ही है, लेकिन आप इसको कहते हैं कि ये दोस्की लावा इसको कहा जाता है, हमारी जबान में जहन्नम का कीड़ा कहेंगे, यानी गोल, एक किस्म की गोल है, हमारे पंजाबी जबान में इसको बंबू काट कहते थे। ये ज्यादातर शतूत के दरख्तों पे और ये जो होते थे आम के दरख्त या जो जामुन के दरख्त होते थे इनके ऊपर, या किसी दूसरे मीठे फ्रूट के ऊपर ये बहुत ज्यादा पाए जाते थे, और इसके हल भी जो थे लोगों के पास उस जमाने में होते थे। लेकिन अब क्योंकि ये डेनमार्क में आ गया है, फ्यून के अंदर जो है पूरे जजीरे के अंदर ये फैला हुआ है, यहाँ आमाबे भी है और यूलैंड के कुछ कम्यूनों के अंदर है, तो आप यहाँ सफर कर रहे हैं, छुट्टियां करने के लिए जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें। और ये लावा सिर्फ दरख्तों पे नहीं रहता, ये बागात के अंदर घूमता फिरता भी है, लिहाजा अगर आप किसी को देखें कि आपने लावा इसको नजर आ गया है, तो आप फौरन से पहले जो है अपने गवर्नमेंट को इतला करें, आप पुलिस को इतला कर सकते हैं या आप अपनी कम्यून को इतला कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, ताकि अगर आप तो बच गए हैं लेकिन दूसरे को बच्चे या कोई और बंदा जो है वो उसको टच कर लेगा, या उसके बाल जो है वो हवा में उड़ के
1: शाह साहब, ये तो
0: उसके।
1: आप एहतियात हैं, ये तो लोगों को अब करनी चाहिए, आप बताते रहते हैं बाकायदगी से। लेकिन शाह साहब, ये जो गर्मियों में सियासी बीमारियां आ गई हैं, सियासत बिल्कुल खामोश है, और आपको पता है कि लिस्टें भी बन गई हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ भी आप दे रहे हैं कि हमें किसी कैटेगरी में शामिल नहीं किया जा रहा, जो लिस्टें बनती जा रही हैं, ज़रा ये हमारे सामने नाज़रीन से शेयर तो करें।
0: देखिए जी, इस वक्त हालात जो है वो ये है कि अगर आज हमने गैदरिंग ना की, अब हेट इस तरह बढ़ रही है कि डेनिश यूरोपियन पार्लियामेंट का मेंबर, जो डेनमार्क डेमोक्रेट का मेंबर है यूरोपियन पार्लियामेंट का, उसने यूरोपियन पार्लियामेंट में खड़े होकर एक नफरत अंगेज, मैं उसके पूरे वर्ड नहीं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे आजकल अगर ऐसी चीजें लिखी जाए तो उससे आप पे केस भी बन सकता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एलिगेशन लगा रहे हैं हम पे। तो ये जो वर्ड्स उसने कहे, उसके ऊपर स्वीडन का उसका एक कुलीग जो अरबी मुसलमान है, उसने उसकी ये स्पीच वहां पे देखी और उसने इसको फौरन से पहले, वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है उसने स्वीडन से, तो उस अरबी ने इसको, स्वीडिश है, मैं अरबी सॉरी कह रहा हूँ लेकिन है वो अरबी नस्ल लेकिन वो है स्वीडिश, उसने इसको पुलिस एडमिट कर दिया और उसके ऊपर केस बन गया। अब ये अदालत का फैसला है, क्योंकि ये पूरे यूरोप में इस बात को उठाया जा रहा है, और अब डेनमार्क के अंदर भी आज और कल ये फैसले हुए हैं कि भाई यहाँ की जो तंजीमात हैं, खसूसी तौर पे मेंस का गाड़ी की जो इंसानी हकूक की जो तंजीमात हैं, उनको शर्म आ गई है कि वो शर्मा गए राजा साहब कि ये मुसलमान जो हैं, ये जो फॉरनर्स हैं, इनके अंदर इतनी तंजीमें होने के बावजूद ये आवाज नहीं उठा रहे, तो हम आवाज उठाते हैं। तो तो उन्होंने अब ये

0: कहना शुरू कर दिया है कि ये जो साल या दो साल के ऊपर जो सजा आप देके साल के ऊपर और लोगों को इस मुल्क से बाहर निकालेंगे, ये जालमाना है और ये इंसानी हकूक के खिलाफ वर्दी है और इस पे आवाज उठाई जाए, इस पे बहस की जाए। तो अब उन्होंने ये आवाजें उठानी शुरू कर दी है, लेकिन हैरानगी की बात है कि हमारे किसी सियासतदान के ने इस पे नहीं लिखा, कोई कुछ कोई हमारे नजरियाती जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अपनी कौम के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो सब खामोशी से बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल में इस वक्त धूप में कहीं बीच में बैठे हुए एंजॉय कर रहे होंगे, कहीं ग्रिल खा रहे होंगे, लेकिन उनको ये नहीं एहसास के वो आने वाली नस्लों के बारे में अगर दो मिनट के लिए किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो लोगों को आगाही दे, तो ये एक बहुत जुल्म की बात है। और दूसरी चीज ये मैं आपको बता दूं कि अब ये जो गवर्नमेंट है पीडीएम की, ये पिछली दफा भी पीडीएम थी, इन्हीं के जरिए जी रही थी, अब ऐसी हुकूमत है जो सारी की सारी फॉरनर के वोटों से बनी है, फॉरनर्स के हमायत से बनी है, और वही फॉरनर्स के हमायत से बनने वाली पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, इसने अब तार बतौर हमले जो है वो मुसलमानों पे करने शुरू कर दिए हैं, और इसके ऊपर अब नजरियाती तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीनलैंड का जो मसला आ रहा है उससे पहले ही हम ऐसी नफरत इनके ऊपर इनके दरमियान खड़ी कर दें कि यहाँ पे देखें आजकल डेनिश जो है वो खुद अपने डेनिश सियासी और ऐसे राशिस्टों का जवाब वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम राशिस्ट नहीं है, इस्लाम के बारे में बात हो रही है, मुसलमानों के बारे में बात नहीं हो रही। जब ये इस्लाम को बुरा भला कह रहे हैं तो फिर हमारी जो तंजीमात हैं जो हमारे यहाँ पे बड़े बड़े इस्लामिक फाइनिंग बनी हुई है, तो उनको चाहिए कि सारे जोड़ के बैठ जाएं और फौरन से पहले इसके उसके ऊपर किरके मिनिस्ट्री, चर्च मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं उससे और कल्चर मिनिस्ट्री से फौरन से पहले बात करें। ये नहीं कि वहां पे कोई ड्यूटी भी नहीं है, ये इनका माइंडसेट। मैं अगले दिन एक रेडियो पे सुन रहा था तो वो कह रहे थे जी कि छुट्टियां हुई हैं, हर कोई बंदा जो है वो कामों में लगा। नहीं, ये गलत बात है। आप फॉरेन मिनिस्ट्री में टेलीफोन करेंगे, वहां की बहुत सर्विस है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स जो है वो अपनी अपनी ड्यूटी आज भी दे रहे हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, इसी तरीके से इनरीस मिनिस्ट्री, जस्टिस मिनिस्ट्री और कल्चर और दूसरी मिनिस्ट्रियों में भी जो उम्बसमैन है वो बैठे हुए हैं, जो लोग वहां काम कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, वो आप उनको मेल भेजते हैं, कोई चीज भेजते हैं तो वो उसका जवाब जो है वो देते हैं और वो कंप्लेंट्स को कर सकते हैं, देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर वो अब एक्टिव नहीं होती और ये सोचते हैं कि यार अब हमें क्या, तो कल को जो ये चीजें हैं, ये जो नफरत है, खुदा ना करे यहाँ पे बेलफास्ट वाला, इंग्लैंड वाला मसाइल यहाँ पे होने शुरू हो जाए, या जैसे अमेरिका में हो रहा है, अगर ऐसी चीजें यहाँ पे हो जाए तो फिर हम लोग तो बहुत ही कम लोग हैं और पुरअमन लोग हैं
1: हमारी जो सोच है ना, हमारी सोच अपने मजाज के मुताबिक है ना, जो मर्जी होती है उस तरह हम सोचते हैं। शाह साहब देखे ना, सेहत के लिहाज से आप बात करते रहते हैं, क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, मैंगो फेस्टिवल हो रहे हैं, इसी तरह जो है वो आज़ादी टूर्नामेंट भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें शाह साहब चलती रहती हैं। साथ साथ अब एक क्रिकेट मैच हुआ, एल्बर्टन में हुआ या जहाँ भी हुआ, अच्छा मैच हुआ, ट्रॉफीज तकसीम की गई, लोगों ने स्पॉन्सर किया, अच्छी बात है जो है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। लेकिन शाह साहब जिन लोगों टीमों ने, जिस टीम ने या मैच ऑर्गेनाइज किया या जो कुछ भी किया, उसके बाद टिकटॉक में भी ये आना शुरू हो गया जी ये तो 804 वाले हैं, और भी बहुत सारी बातें, मैं इस वक्त नहीं करना चाहता, दूसरा इशू बन जाएगा। तो शाह साहब हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जब क्रिकेट का मैच हुआ तो उसको टिकटॉक की शक्ल में 804 वाली शर्टों में क्यों शामिल करते हैं हम लोग?
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, यहाँ पे सोशल मीडिया भरा हुआ है, कुछ लोग जो है वो गवर्नमेंट के यहाँ रहते हुए भी डेनिश पासपोर्ट लिए हुए भी या बगैर डेनिश पासपोर्ट के भी वो आज भी पाकिस्तान स्टेट को निशाना बना रहे हैं, और ये बहुत बुरी बात है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर आपको एतराज आता है, आप पीपल पार्टी का बुरा भला कहें, उनका सदर है, आप वजीर आजम को बुरा भला करें, वो नून लीग का है, इसी तरीके से काफ लीग हमारी उसके साथ है, इसी तरीके से एम क्यू एम है, जो जमातें सपोर्ट कर रही हैं आप उनको जरूर बड़ा बड़ा कहें, लेकिन जब
1: सियासी तौर पर जो है ना जमहूरियत का कहें ना,
0: नहीं स्टेट को आप जो है जो जो अदारे स्टेट के मुहाफिज हैं आप, ख्वाह वो पुलिस हो, ख्वाह वो जस्टिस हो, ख्वाह वो अपना फौज हो, कोई भी अदारा ऐसा हो, आप उसको गाली क्लोच नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेट के अदारे हैं, उन्हीं की वजह से स्टेट बनती है और वो आपको तहफ़ देते हैं। तो ये चीजें जो नहीं होनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये जो लोग क्रिकेट का करते हैं इसी तरीके से अरेंजमेंट जो है अगर वो करना शुरू कर दें, कम से कम एक माह में दो तीन ऐसी अरेंजमेंट करें और उसके अंदर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों के उनको सुने, उनको हाईलाइट्स करें, तो उनको बताएं कि यहाँ के कानून जो है हम कैसे बात करते हैं, तो ये हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी है कि मेरी फलाने मिनिस्टर के साथ बात हुई, मेरे फलाना पॉलिटिशियन मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, मेरा फलाना जो है इतना करीबी है, लेकिन जब आप जब वो आपके आपके आपके बच्चों के लिए और आपके लिए ही वो मुस्तकबिल यहाँ पे तारीख कर रहा है और वो बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, वो आपके हकूक के लिए नहीं बोल रहा, आप लोगों ने जिस पार्टियों को वोट दिया वो पार्टियां ही आपके खिलाफ काम कर रही हैं, ये इज लिस्टन, ये एसएफ, ये रेडिकल वेंसा, ये सोशल डेमोक्रेट और ये दूसरी पार्टी जो है अल्टरनेटिव, ये सारी की सारी आपके खिलाफ काम कर रही हैं, आपने इनको वोट दिया है कि इसलिए कि जी हमारे लिए ये बहुत
1: ये खिलाफ काम नहीं कर रही, ये अपने मुल्क के लिए स्टेट के लिए तो काम कर रही है, तो जिन वोट देने वालों ने पार्टियों के मेंबर जिन्होंने वोट दिए हैं वो खुद कह बोले ना।
0: देखिए जी जब ये हमें येलो कार्ड दे देता है बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के आईन के तहत, ये बड़ा जरूरी है समझना, जब ये हमें एक येलो कार्ड स्विचिंग फल्क नंबर दे देते हैं तो फिर हम इस स्टेट के तहफ्फुज में आ जाते हैं, फिर हमारा भी काम है कि हम स्टेट के कानून को की इज्जत करें, एहतराम करें और इसी तरीके से स्टेट हमें पूरी तहफ्फुज देती है, लेकिन क्योंकि हमारे लोगों को बताया नहीं जाता, हम लोगों को जो है ये चीजें नहीं बताई जाती। आप ये देखें कि अभी कल दो लड़कियां जो हैं वो सामने आई हैं और उनके नाम भी मुसलमानों वाले नहीं, और उन्होंने आगे कहा कि जी हमने तो इस्लाम को छोड़ दिया, उस कल्चर को छोड़ दिया और अब वो बातें कर रही है, तो ये चीजें जो है इसकी वजूहात क्या है, इसके पीछे क्या हम लोग हैं। हाँ हमें ये बात करनी चाहिए कि इस्लाम जो है वो एक अलहदा चीज है, मुसलमान एक अलहदा कल्चर में रहते हैं और हर मुसलमान एरिया अपने एरिया के कल्चर में रहता है, और अगर उसमें कोई ड्रग्स यूजर है या कोई उसके अंदर प्रोस्टिट्यूट है या कोई दूसरा है या कोई होमोसेक्सुअल है तो वो इस्लाम जो है उसके इनसे कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो इंसान है तो वो रह सकते हैं। तो हम जब हमें इस्लाम के बारे में कोई चीजों का पता नहीं, हमारे जो उलमा यहाँ आए हैं वो इसके ऊपर कोई बात नहीं करते, वो गोरों को कोई बात नहीं समझाते, उनके पास कोई ऐसे वर्डिंग नहीं कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के आइन को समझकर बात करे। तो राजा साहब ये जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं ये हमारी ही वजह से हुई हैं, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमसे बड़ा राशिस्ट कोई नहीं, जो आपने आप हमने यहाँ पे एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए हम राजी नहीं होते। हमारा एक दोस्त भाई जो 70 से हमारा दोस्त है, जब उसके बारे में पता लगता है कि वो दुनिया से चला गया, वो छोड़ के चला गया या वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो हम सिर्फ मस्जिदों में इसलिए नहीं जाते कि यार वहां पे तो ये फलाना फिरके का फलाने फिरके का, ये राशिज्म हमें निकालना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए मुसलमान होना तो बात की बात, हम सबसे पहले इस्लाम हमारा दीन है और हम इस्लाम के पाबंद हैं, और अच्छे शहरी बनना और अच्छे तरीके से इस मुल्क के अंदर रहना और इस्लाम का नाम बुलंद करना ये हमारा फर्ज है। हम ना लड़ाई झगड़े के लिए इस मुल्क में आए हैं, ना फसाद पैदा करने के लिए आए हैं, ना हम टेररिस्ट है, क्यों कि हम इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम हमारा दीन है, जो इस्लाम हमें सिखलाता है वो हम करेंगे। अगर हम आपके कानून से तंग हो जाएंगे तो हम उस पर बात आपसे कर सकते हैं, और अगर आप उस पर राजी नहीं होते तो हम यहाँ से हिजरत कर जाएंगे। ये दीन हमारा सिखलाता है, हमें अग्रेसिव नहीं होना, हमें कोई ऐसी बातें नहीं करनी। तो ये राजा साहब ये चीजें जब तक हमारे लीडरान इन चीजों को समझ नहीं सकते और वो हमेशा पाकिस्तान की सियासत करते हैं और पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, वो हर अपने आप को बड़े चौधरी और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शाह, बड़े बड़े शेख अपने आप को समझते हैं, तो जब तक ये कामें रहेंगी तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ये जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन इस मुल्क में आ रही है, ये कल को हिस्ट्री में बुरे नामों से हमारा नाम लिखेगी और ये कहेगी कि इन लोगों ने सियासत को यहाँ और यहाँ के कानून को बुरा और बदनाम किया। जी राज साहब,
1: शाह साहब मफादात की सियासत क्या होती है? आप बिलोंग टू आर्मी फैमिली करते हैं, आपके वालदे मोहतरम पाक आर्मी में रहे, तो अभी जो बयानात आ रहे मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ा नाम है, मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे हैं, दीनी लिहाज से बड़ा उनका नाम है, सियासी लिहाज से बड़ा नाम है, वो पार्लीमेंट में अब भी मौजूद हैं और कई दफ़ा मेंबर बन चुके हैं, कश्मीर कमेटी के रह चुके हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज हम आप सुनते जा रहे हैं लीडरान की या उलमा की जो स्टेट के खिलाफ, शाह साहब क्या आपके वालदे मोहतरम पैसे के लिए फौज में गए थे?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे खानदान में अगर वो गए थे तो वो कहते थे कि मैं अपने मुल्क की खातिर जा रहा हूँ और मैंने अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, क्योंकि कायदे आजम का हुक्म था कि पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो जो यंगस्टर पढ़े लिखे हैं, मेरे वालिद साहब इंजीनियर थे, तो उन्होंने पढ़े थे इंजीनियरिंग, तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन मैंने ख़त्म कर लिया है, तो ये हुक्म आया कि भाई आप लोग जिन्होंने कर लिया वो फौरन जो है आर्मी को या दूसरे सिविल अदारों को ज्वाइन करें। तो मेरे वालिद साहब ने और इनके बड़े भाई ने दोनों ने आर्मी ज्वाइन कर ली और दोनों सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए और उन्होंने आर्मी
1: तो
0: में
1: सारे जो आर्मी से शोधा हैं, आर्मी की जिन्होंने नौकरी की, मौलाना साहब ने एक बड़ा बयान दिया, सियासतदान हैं, जमहूरियत पसंद की दावे करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ इमरान खान साहब मौलाना के सामने फरमाया करते थे उनके बारे में फरमाया करते थे, अब तो वो दोनों एक पेज पे आ चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में जो कहा करते थे उसके अपने अल्फाज भी तब्दील किए, तो शाह साहब जो शोदा के बारे में उन्होंने लफाज इस्तेमाल किए, सब शोदा की जो उन्होंने जो है वो मैं समझूँ उन फैमिलीज की तोहीन उन्होंने की है, तो लोगों के दिल अफसरदा हैं, तो ऐसे बयानात शाह साहब दीनी लिहाज से कोई मसला पेश करें, कोई दीनी बात करें, और आपने उस स्टेट को उस फौज को चैलेंज कर दिया, अगर आप फौज को माइनस कर दें तो पीछे क्या बचा शाह जी?
0: जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम रहते हैं, तो वहां पे ये होता है कि भाई आप धड़ाबंदियां कर लेते हैं और लोगों को इतनी ज्यादा नफरत। देखिए जिन लोगों ने ये लोग जो है, आप MQM को देख लें, आप इन सारी पार्टियों को देख लें, ये सारी के सारी आप बलूचिस्तान में देख लें, पंजाब में देख लें, ये फौज के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, एक ही भी अदारे के खिलाफ जब आप बात करते हैं तो अगर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक जाति किसी जज के खिलाफ या किसी पुलिस वाले के आप बात करते हैं तो वो उसकी जातियात पे आप कीचड़ उछालते हैं, लेकिन जब आप अदारों को ब्लेम गेम करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप मुल्क गद्दार हो गए हैं, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, और इसकी हर मुल्क के, दुनिया भर के जितने भी मुल्क है, इवन डेनमार्क के, इसका एक ही है, डेनमार्क में सजाए मौत नहीं, लेकिन ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सारी उम्र जब तक आप जिंदा है आपने कह दे तन्हाई ही काटनी है। तो हमारे मुल्कों में सजाए मौत है, सारी दुनिया में, अमेरिका में भी सजाए मौत है, तो ये चीजें जो है कि आप एहतियात करें कि ऐसे वायलेशन ना करें, ऐसी चीजें ना करें। अगर जाती तौर पर आपको कोई रंज है, अभी मैं एक बंदे का फेसबुक पे सुन रहा था, वो कह रहा था जी के जी अयूब खान के जमाने में 1962-1960 में क्या नाम है बलूचिस्तान का बुरा हाल था, पागल के पीछे, मैं खुद वहां पे उस वक्त था क्वेटा में और मेरे वालिद साहब उस वक्त इन्फेंट्री कोर्स कर रहे थे और मैं वहां पे अपनी वालदा के साथ था, मेरा छोटा भाई भी वहां पे पैदा हुआ और क्वेटा के अंदर, तो मैं तुम्हें बता दूं क्वेटा वाज वन ऑफ द बेस्ट सिटी पाकिस्तान का उस वक्त, वहां पे इतना अमन था कि हम लोग बाहर पिकनिक के लिए चले जाते थे, बच्चे सड़कों पर खेलते थे, अमन अमान था, इतने अच्छे लोग वहां रहते थे। ये तो आप लोगों ने अफगानियों को भाई भाई कह के अफगानियों को पाकिस्तान में बुलाया, पख्तून भाई एक एक करके नारा आपने लगाया, पाकिस्तान का सत्यानाश आपने किया, जब वो यहाँ पे आ गए फिर आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना वो आपके अफगानी भाई हैं ना आपके पश्तून भाई हैं, आपने उनके साथ नफरत का, क्योंकि ये कौमें जो आई थी ये मेहनत का थी, इन्होंने जॉब ले ली, इन्होंने आपसे ज्यादा अच्छा तजारत करनी शुरू कर दी और उसके खिलाफ अब लोगों ने महाज खड़ा कर लिया है। यही सियासी पार्टियां उनको सपोर्ट भी करती है और फिर जब पार्लियामेंट में आ जाती है और फिर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर पैसा लेती है, अरबों खरबों डॉलर जो है ये सालाना बलूचिस्तान और सरहद के लिए लेते हैं और सिंध के लिए। क्या इन्होंने वहां पे किसी जगह पे तरक्की कराई है? नहीं, इनके बच्चे बाहर रहते हैं, ये सारा पैसा इन्होंने दुबई कतर और सारी दुनिया में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, दुनिया भर को इन्होंने अमीर कर दिया है। इंग्लैंड जैसे मुल्क को जो दूसरी जंग अजीम में तबाह बर्बाद होकर रह गया था इन्होंने आबाद करके रख दिया, और आज ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान कुछ नहीं। मैं आज देख रहा था कि 40 पेंसिल्वेनिया अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक बकायदा एक शाया किया कि दुनिया की पावरफुल कंट्रीज कौन कौन सी है, इकोनॉमिकली हब और दूसरी और ताकत कैसी है उनके पास, उनकी फौज कैसी है। उसके अंदर सारे मुल्क हैं, ईरान भी है, बांग्लादेश भी है, सारे मुल्क हैं, लेकिन 40 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसने जिसके लोगों लोग अगर साइकिल खरीदते हैं या कोई ऐसी घर खरीदते हैं तो वो कैश खरीदते हैं। यहाँ पे यूरोप में कितने बंदों का अपना घर होगा, डेनमार्क में मैं कह सकता हूँ मैं जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो मेरा घर है, लेकिन एक्चुअली वो जो है वो बैंक से पैसे लिए हुए हैं, बैंक को वो आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो सारी उम्र आपका नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारा मुल्क जो लोग हैं ये खुद हमारे साथ गद्दारियां करते हैं, ये खुद हमें इस हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज ने इंडिया जैसे बड़े मुल्क को नाकों चने चबा दिए और वहां पे उसको इतनी बड़ी शिकस्त दी है पिछले साल। अभी अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान, और ये कौन है गद्दार वतन है जो मुल्क के खिलाफ मुल्क की फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं? तो राजा साहब इनके ऊपर अगर बोलना चाहे तो हम सारा दिन बोलते रहते हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जहन्नमी है वो जहन्नमी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि जिसके गले में सीमेंट और सरिया मैंने लगा दिया है वो कभी भी सीधा नहीं हो सकता। तो जो लोग हैं उनको चाहिए कि वतन है तो है, उसी वतन का पासपोर्ट लेके आए हैं तो उसी वतन के साथ मोहब्बत करें, और अगर उस मोहब्बत से इतनी आपको नफरत है तो फिर पाकिस्तानी खिलाना छोड़ दें और जाएं जहां आपने जाकर रहना। जी राजा साहब।
1: शाह साहब देखे ना, बात का आगे पाकिस्तान की बात आगे, बात हमने शुरू की थी यहाँ खेल के मैदानों की बात की थी, सेहत की बात की थी, आपने बीमारियों के मुतलक बताया, अब जो क्रिकेट के मैच होते हैं इसमें उलमा भी जाते हैं, दूसरे लोकल लोग भी जाते हैं, तंजीमात के लोग भी जाते हैं। तो शाह साहब अगर कोई अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, अच्छी लोगों ने कोशिश की है, इनामात तकसीम हुए हैं, तो शाह साहब उसके बाद ये 804 वाली वर्दियां पहना के मियां साहब को पीटीआई का शो करना, तो अम्बेसडर साहब भी वहाँ मेहमान खसूसी से, तो शाह साहब हमें सबको अपने अपने गिरबानों में तो झांकना चाहिए।
0: देखें जी, इस वक्त जो मर्जी कोई कहे, कोई पीटीआई का बने कोई किसी का हो, इस वक्त सबसे बड़ी ये चीज है कि आप उस तंजीम को देखें, आप उस मुल्क को देखें जिस मुल्क से आपकी वफादारी है। आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ, मैं कभी भी, मुझे अरसा दराज हो चुका है मैं कभी भी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन आज मैं मजबूरन इसलिए कर रहा हूं कि छुट्टियों के इन दिनों में अगर आप एक्स पे जाते हैं, आप किसी जगह पे भी जाते हैं, तो हर हर बंदा जो है वो पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ बात कर रहा है। तो खुदा रहा कुछ इस वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है और आपको पाकिस्तान की जरूरत है। कल को अगर ये हमें इन मुल्कों से मजबूर करके निकाल देते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? आपने तो पाकिस्तान जाना है, तो कम से कम जो आपकी जदादे हैं वहां पे या जो चीजें हैं, या तो आप उसको छोड़ दें, वो भी आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप उसको छोड़ेंगे तो आपकी चौधरावट खत्म हो जाएगी, आप जीरो हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो लिहाजा मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिकेट भी खेलें, यहाँ पे स्क्वैश भी खेलें, हैंडबॉल खेलें, हर चीज खेलें, लेकिन इसके साथ लोगों को ये शऊर जरूर दें اور یہ دیکھے کہ آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا غدار تو نہیں بیٹھا ہوا جو ملک کے مفاد میں غلط باتیں کر رہا ہے, اس کا بھی اس کو اس سے نکالے, اس کو اٹھائیں وہاں سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں, اب ہم آنے والے دن کا ہمیں پتہ نہیں, آج زندہ ہے صبح نہیں ہے, لیکن جو ہمارے اولادیں ہیں, ہماری جو تھرڈ فورتھ جنریشن یہاں تیار ہو چکی ہے, خدا را اس کے لیے تو کچھ سوچیں. اگر آپ آم کھائیں گے, جامن کھائیں گے, اخروٹ کھائیں گے, جو مرضی کھائیں, اللہ آپ کو بہت زیادہ دے, لیکن یہاں جن بچوں کو آپ یہ عادت ڈالیں گے, اگر خدا نہ خواستہ ان کے خلاف جو قوانین بن رہے ہیں, دیکھیں مجھے حیرانگی ہے کہ راجہ صاحب آج اور کل ہیومن رائٹس اور دوسری ایجنسیاں جو ہیں وہ بولنی شروع کر دی ہیں. پورے 2 سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے یہ قوانین 2023 میں بنایا تھا, لیکن کوئی یہاں کے ہماری لیڈرشپ جو ہے انہوں نے نہیں بنایا. تو لہٰذا ابھی یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم لوگ اپنے معاشرے کو صحیح کریں اور ان لوگوں کو دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں.
1: شاہ صاحب, میں چند سرخیاں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں, اس سے سوچ کا اندازہ ہوگا کہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے اور ہمیں سوچ سمجھ کیوں نہیں آتی. شاہ صاحب, میں موٹی موٹی سرخیاں پڑھتا ہوں. ایران پر امریکی عملے جواب میں بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ایرانی دعویٰ. فیلڈ مارشل کی ترک صدر سے عام ملاقات. بیرسٹر گور کا آزاد کشمیر انتخابات کے بائیکاٹ پر نظر ثانی کا عندیہ. پاکستان, روس, چین, ایران کے وزرائے خارجہ اگلے ہفتے اکٹھے ہوں گے. دل کا دورہ پڑنے سے قبل اللہ رکھا کی بیٹی کو طلاق ہو گئی تھی. رینجرز اہلکار شہید. $100 million کے موبائل کی اسمگلنگ, پاکستانی نژاد ملزم امریکہ منتقل. احسن اقبال نے نیٹ فلیکس صارفین کو خوشخبری سنا دی. تحریک انصاف کا پارلیمانی اوقائمہ کمیٹیوں کا بائیکاٹ ختم کرنے کا فیصلہ. یورپی پروازوں کو خلیج کے حدود میں پرواز نہ کرنے کی ہدایت. 400 کلو چاندی چوری کیس, سابق کرکٹر کسٹم سمیت مزید 5 ملزمان گرفتار. شاہ صاحب, آپ مجھے اندازہ لگائیں, سرخیاں کو بالکل شروع سے شروع کریں. آپ اپنی سوچ, ان لوگوں کی سوچ کا آپ اندازہ لگا رہے کہ ہماری سوچ کو, ہمارے ذہنوں کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. چونکہ ہمارا ٹوٹل انحصار اب جو ہے وہ ٹیلی فون پر, سوشل میڈیا پر, ٹک ٹاک پر جو ہے وہ جا چکا ہے. چونکہ ہم نے خود تحقیق بالکل کرنی نہیں, اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا. جو کچھ ہمیں پیش کیا جاتا ہے, جو کچھ سوشل میڈیا ہمارے سامنے رکھتا ہے, چارے کی طرح ڈالتا ہے, اس کو ہم چکنا شروع کر سکتے ہیں. تو شاہ صاحب, ہم ڈنمارک میں رہتے ہیں, آپ ہمیشہ زور لگاتے رہتے ہیں اس ملک کی سیاسی پارٹیوں کا حساب

0: गुजरात का भी है, उसको भी नहीं लगा, लेकिन जो हवालदार या थानेदार थे उनको वीजे मिल गया डेनमार्क के। तो ये चीजें देखने वाली हैरान चीजें हैं कि सबसे ज्यादा खुदकशी की मौत जो है वो गुजरात शहर में हो रही है, और उनकी खबर जो लगी है वो बहुत अफसोसनाक है। आप ये देखेंगे इस वक्त जो पावरफुल लोग हैं उनको उनकी बख्शिश नहीं हो रही। वहां पे जो वो सीसीडी का जो महकमा बना है वो बगैर किसी अदालत में पेश किसी जगह पेश हुए हुए हो, वो किसी भी बहाने में आपको सरेआम गोली मार देते हैं और जान से मार देते हैं, पुलिस मुकाबला शो करके, ना भी पुलिस मुकाबला वो आपको मार दे, उनको राइट है। तो आप कल को आप लोग जाते हैं पाकिस्तान में, मैं जाता हूँ, हमारी जो जदादे हैं वहां पे, हमारे जो घर हैं, कल को कोई बंदा कहता जी या तो बंदा मुझे बेच के चला गया हुआ है, करोड़ों की हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं, और अगर वो पुलिस को चंद लाख दे के तो ये पुलिस मुकाबला में हमें शो करके तो हमें हमारा वहां खात्मा कर देते हो, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें कोई तहफ़ है? किसी को कोई तहफ़ नहीं। पहले आप उधर देखे जी ठीक है जी, आप फलाने गांव के या फलाने जी घर में कोई MNA MP है आपकी मदद को आ जाएगा। अब तो आप देख लेंगे जो वहां पे
1: नहीं शाह साहब, आप देखें,
0: साहबदार।
1: क्योंकि आप शाह जी चूंकि उस खत्ते को, उस जगह को, उस शहर को जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी फितरत को, सियासतदानों की फितरत को आप जानते हैं, उनकी पॉलिसी को आप जानते हैं। आप देखें ना, कल तक हम जो एक प्रोग्राम किया ताकि शेयर भी हम कर दें कि नासिर भट्ट साहब हैं, कोई हैं वो अपना कह रहे हैं नून लीग के, उनके बारे में कितनी बातें की जा रही थी। जो कल परसों हमने प्रोग्राम देखा, एक प्रोग्राम हुआ वहाँ जो कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिला में हुआ और उनके डेरे का इफ्तिताह भी हुआ, तो वहाँ बहुत सारे लीडरान आए हुए थे, वहाँ तो नासिर भट्ट साहब को एक हीरो बना के पेश किया गया। तो शाह साहब देखें ना, हालात किस तरह तब्दील होते हैं, किस तरह बातें होती हैं, तो बात फिर शाह साहब घुमा के हम लाते हैं कि हम लोग यहाँ की सियासत क्यों नहीं करते।
0: जी बिल्कुल, नासिर भट्ट यहाँ पे एज वो आए हुए थे इंग्लैंड में, वो काफी सारी दुनिया उनको जानती है, वो इंग्लैंड में उन्होंने पनाह ली, सियासी पनाह ली हुई थी, आज वही पाकिस्तान उनके लिए बिल्कुल सही हो चुका है, और सेनेटर है वो पाकिस्तान के, ऐसी
1: शाह
0: कोई
1: मैं
0: बात नहीं
1: दूसरे
0: है।
1: बात करूं, वो गुजरात वाले, उनकी बात कर रहा हूं।
0: अच्छा, देखिए गुजरात में तो आप जिसके पास टोयोटा लैंड क्रूजर बिशक किराए पे हो, दो कपड़े जोड़े हो, वो माया लगी हुई हो, आप 2 दिन सर्कल रोड पे चक्कर लगा लें, तीसरे दिन आपको या मशीन बन जाएंगे या आप कोई बड़े सरमायादार के नाम पे आपको मशहूर कर दिया जाएगा, अखबारी नुमाइंदे आ जाते हैं उनके साथ खाना खा लें और उनको खाना खिला दें, सिर्फ 50-60 हज़ार रुपया पाकिस्तानी खर्च करके आप उनको खाना खिला देते हैं, तो वो एक हफ्ता अखबारों में आपको सुर्खियां लगाएंगे और आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बाहर के मुल्कों में शो कर देंगे, वहां बेशक हम लोग यहाँ पे बोरियां ही उठाता हूँ, मैं खुद हूँ ड्राइविंग करता हूँ, तो ये हमारी सुर्खियां लग जाती हैं। तो ये चीजें जो है राजा साहब ये मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप बाइज्जत हो, आप बेशक दाल खा रहे हो उसके साथ भी साथ चटनी हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, ये सबसे बड़ी नेमत है। देखें मुझे एक बंदे ने पूछा, उसने कहा शाह जी फलाना बन गया फलाना बन गया फलाना बन गया, मैंने कहा बात सुनो, मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी, उसने कहा जी क्या नजर ही नहीं आ रहा आपके पास, क्या आप तो टैक्सी चला रहे हैं, मैंने कहा जो मेरे माँ बाप ने मुझे कलमा सिखाया ना, ये कलमा ये जो अजान मेरे कानों में दी और जो जो कलमा मेरी माँ बाप ने मुझे सिखाया, इससे मैं दुनिया का करोड़पति बंदा बन गया हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं परवाह कोई मर्सिडीज में फिर रहा है, कोई टोयोटा लैंड क्रूजर में फिर रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई चिंचली में बैठा, मैं जहां पे भी बैठूंगा मैं अपने आप को वैसे ही तसव्वुर करूंगा जिससे का माहौल होगा। तो अगर हम लोग ये चीजें कंफर्म कर लें अपनी जात में कि हमने जब मिट्टी में जाना है, जब हमने इस 6 फुट की कब्र में हमने नीचे जमीन के अंदर जाना है, तो उसके अंदर हमारा क्या हाल होगा, किस तरीके से हम आ, आ, आ, आ, आ, आ, हम 2 दिन में कितने बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अपने जिस्म को, रूह तो देखती है ना, जिस्म गल सड़ रहा था उसके सामने तो रूह देखती है कि मैं ये था, ये मैं तो कीप शाह था, मैं बड़ी बड़के मारता था डेनमार्क के अंदर, बड़ी बातें करता था, ये देखो मेरा अशर क्या है। तो इसलिए तौबा करो ताकि वहां तुम्हें इस ऐसी चीजों से सुकून पहले

0: आ जाए, ताकि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप खुद भी ठीक हो जाए और अपनी औलाद को भी ठीक कर ले। और यहाँ सबसे बड़ा नुकसान जो हम यहाँ पे रोजाना इस्लाम के बारे में बात होती है, उसके साथ आप बाहर निकले, बात करें उनके साथ, देखें कम्युनिकेशन जो है नॉलेज के साथ कम्युनिकेशन करना। आप कुरान पढ़ लें, लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद आपको कुरान की समझ ही नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? जब तक कि आप कुरान के एक एक लफ्ज को आप अपने जेन शीन ना कर लें, अपने उसकी समझ ना आपको आ जाए कि इसमें मैं क्या बुराई कर रहा हूँ, अपने ऊपर एप्लीमेंट नहीं करेंगे, अपने ऊपर उसको लेके नहीं आएंगे।
1: वो तो चले दीनी लिहाज से हो गया ना, वो तो मजहबी लिहाज से बात होगी ना। शाह साहब, हम खुद कहते हैं, हम पार्लियामेंट के मेंबर भी होते हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबर भी होते हैं, तो हम खुद रिकॉर्डिंग करवा कर कहते हैं कि हम इस असम्बली पर, इस पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं, उसके बावजूद वहाँ के बेनिफिट भी सारे लेते हैं, सारा काम करते हैं। यहाँ भी हम लोग कहते हैं कि हम वोट के खिलाफ हैं, लेकिन जितने बेनिफिट हैं वो सारे हम लेते हैं। शाह साहब, डबल मराल तो हम खुद लोग हैं, डबल मराल लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। शाह साहब,
0: बिल्कुल, ये चीजें हैं कि इन इन लोगों का देखे, मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर जो खानदानी लोग होते थे वो अगर सियासत करते थे तो वो सियासत के अंदर अपना भरम भी रखते थे, अपने डेरों को भी चलाते थे, हर एक चीज करते थे। अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो बदमाशी करते हैं, जिनका बुरा तौबा सफार करने, जिनको मैं आपको ये बताऊं कि ये पिछले हफ्ते की खबर है कि लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा तलाकें हो रही हैं और औरतें जो हैं, और फांसी इतनी फैल चुकी है लाहौर के अंदर, ये उनकी सबसे बड़ी खबर थी। तो ये देखें, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता, इसमें हमारा खुद हाथ होता है। कि क्यों कि अगर हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं वो खुदकशी करने की बजाय वो अपना जिस्मानी धंधा करना शुरू कर देती है, बुराई करना शुरू कर देती है, तो इसके ऊपर हम जो लोग हैं, इस माशरे के जो लोग हैं, हमें अपने दिमाग को खोलना पड़े चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास फेरिए जाने के लिए, हमारे पास फलानी था उमरा करने के लिए, हज करने के लिए हम 20-25-30 लाख खर्च कर सकते हैं, तो हम ऐसी फैमिलियों को जिनके पास खाने को रोटी नहीं, अगर हम वो लगा दें, तो आज के जमाने में ये मैं आपको कह दूं, आप बता देता हूं कि आज के जमाने में भी अल्लाह ताला आपका घर बैठे हुए हज कबूल फरमाएगा, क्योंकि ये इस्लाम की सबसे बड़ी तलीमात में से एक तलीमात है कि आप दूसरों की मदद करें। लेकिन हम नहीं, राजा साहब मन में घूम फिर कर इसी गर्मी में इसी तरह रहना। देखिए आज की जो यहाँ पे 27-28 गर्मी है वो हम बर्दाश्त नहीं कर
1: तो
0: सकते।
1: शाह साहब एक सवाल है, शाह साहब हमारी भूख खत्म क्यों नहीं हो रही? हमारा काम कपड़ों से शुरू होता है, गाड़ियों से शुरू होता है, खाने पे ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फोटुओं पे जाकर फिर उसके बाद एंड उसका हो जाता है। तो शाह साहब क्या हमारी मंजिल यही है?
0: राजा साहब, आपने पुराने वक्तों में कभी गांव में कभी गए थे या गांव के लोगों को देखा था जो तंदूर की रोटी पे अचार रख कर या वो अपना थोड़ी सी चटनी रख के, तो शुक्र
1: हजारों लोग खाते थे, हजारों लोग खाते थे,
0: तो उनको कभी आपने ये सुना था कहते हुए कि जी मेरा दिल करता मैं मुर्गी खा लूं, मेरा दिल करता मैं गोश्त खा लूं। आज हम
1: आज की वो सबसे मॉडर्न गजा है
0: जी, और हम लोग हराम खा खा कर, इवन आप ये देखें कि जिन रेस्टोरेंटों में कुत्ते और गधे का गोश्त और हराम बिक रहा है वहां पे भी हम जाके खाते हैं। फिर हराम का पैसा हमारे लोगों में रिश्वत लेना, रिश्तेदारी करनी,
1: सब छोटा बड़ा गोश्त मिक्स करके बेचना
0: जी, तो ये जो चीजें हैं इसको इसको फैलाने वाले हम लोग हैं। अगर हम लोग यहाँ से जाके वहां शोर ना मारे, अपने पैसों को अपनी जेब में रखें और अपने घर वालों को बड़ी बड़ी कोठियां ना बना कर दें, ठीक है जिस मकान में वो रह रहे हैं उसके अंदर उनको सहूलत दो, और उसके बाद उनको कोई ऐसी दुकान ऐसा कारोबार करके दे जिससे उनको चार पैसे मिले, वो कोई चार लोगों को नौकर रखे या कोई चीज चले,
1: नौकर करे। शाह साहब आखिर में प्रोग्राम को क्लोज भी करें, शाह साहब कोई हाल भी साथ बताएं, बातें तो हमने बहुत ज्यादा कर ली है, कोई आपको लीडर नजर आ रहे हैं, कोई काम करेंगे या इसी तरह बातें होती ही रहेंगी?
0: जी, अगर ये लीडर सिर्फ आम भी खाएंगे और आमों की पेटियां लेके जाएंगे तो मुझे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, हाँ मुझे दो बंदे जो हैं वो मुझे काम करते हुए इस गर्मियों में भी नजर आ रहे हैं, और लोग खुश हो ना हो मैं उनका नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा। एक आप रेडियो चला रहे हैं और लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ के हालात बता रहे हैं, और दूसरा जो है कोई बैठ के अगर वो बात कर रहा है और लिख रहा है तो वो सिकंदर मलक आज भी लिख रहा है, बोल रहा है, वह उसके अंदर अग्रेसिव वो काफी है, गुस्से वाला काफी है। और एक सियासतदान को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, गुस्सेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो चीज आती है वो बोल जाता है और इसकी परवाह नहीं करता। तो ये आप दो ही चीजें मुझे नजर आ रही हैं जो इस वक्त यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में भी आप लोग एक्टिव हैं। तो बाकी तो सारे जो हैं वो ठंडे होकर सो गए हैं, सत्तू पी के, वो आपके गांव का जो है शेख रशीद वो कहता है जी सत्तू पी के सारे सो जाते हैं। तो सत्तू वाला के दुनिया में सबसे बेहतरीन गर्मियों में सबसे बेहतरीन मशरूब जो पीने वाला शरबत है वो सत्तू का होता था, सत्तू और गुड़ का। तो आज हमारे लिए वो हमारे गलों में फंस जाता है, गले पी नहीं सकते हम लोग सत्तू को। तो राजा साहब मैं अपने भाइयों से माजत करता हूँ कि जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन अपनी नस्ल को अपने आप को बचाएं। अब ये आज उन्होंने एक खबर दी है कि अब लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों के अंदर प्लास्टिक कार्ड इस्तेमाल करने की बजाय कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कितनी जहीन कौम है ये, इन्होंने कैसी नजर रखी हुई है कि ये छुट्टियों पे गए हैं लेकिन वहां पे कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे ताकि पता ना लगे, लेकिन वहां पे कैश इस्तेमाल कर रहे हैं और कैश एटीएम में से कैश निकाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये नोटेबल है और इसकी प्रॉब्लम जो है आगे जाके आएंगी, क्योंकि इन्होंने कौम को कुछ ना कुछ तो दिखाना है कि हमने क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड का मसला है ये अमेरिका ने बिल्कुल, जैसे वो ईरान के साथ जंग खत्म नहीं कर रहा और अरबों को और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा, इसी तरीके से वो डेनमार्क और यूरोप के अंदर भी फसाद पैदा करेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पेनीलेस हुआ हुआ है, भूखा हुआ हुआ है, इंग्लैंड भी भूखा हुआ है, और ये जो मुल्क हैं इनके पास सरमाए की कमी है, ये कर्ज में फंसे हुए हैं और इनको क्या चाहिए पैसा, ये पैसा कैसे ले सकते हैं कि ये अपना असला बनाए, असला इस्तेमाल करें, दुनिया में जंग हो और इनसे लोग असला खरीदें और ये जो है उस असला और बारूद बेच के तो ये पैसे जो है अपने घर लेके आए। तो राजा साहब ये हकीकत है, अगर आज भी हम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ेंगे और अपने आप को सही नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे बातें हम रोजाना बातें भी करें तो ये कभी भी नहीं मानेंगे। तो आप देखिएगा कि इस समर में तो हम बात कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि ये छुट्टियों के बाद जब टैक्सियों की नई सेल्सकेप जो है वो जारी और सारी हो जाएंगी और फिर क्रिसमस पे और उसके बाद जो है ये जो बड़ी बड़े सेल्सकेप हैं DSB यहाँ के रेलवे और दूसरी जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जब वो ये सस्ती टैक्सियां जो हैं वो लेनी शुरू कर देंगी तो फिर वोनमैनों का क्या हाल होगा, वो बेचारे पसीने में जाएंगे क्योंकि वो इसी बात में खुश हैं कि इस वक्त हमें काम थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, लेकिन जब बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे, क्योंकि जितने भी औ गिफ्ट हैं वो तो उसी तरह ही रहेंगे तो वो कहाँ से पैसा लेंगे। तो राजा साहब ये तकलीफात अगर ये आज भी इसके ऊपर बहस नहीं करते, आज भी ये इकट्ठे नहीं होते और झूठ का झूठ बोलने में ये माहिर हैं, और अगर ये झूठ बोलते रहे एक दूसरे के साथ तो फिर ये कभी भी सामने नहीं आ सकते। जी राजा साहब,
1: राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम शेयर किया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब।
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदार आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम हमारी कोशिश होती है आपको इंफॉर्मेशन दें, ताज़ा तरीन मालूमात दें, हफ्ते में जो कुछ होता है कम्युनिटी के जो लोकल प्रोग्राम्स होते हैं उस पर भी बातचीत करते हैं, कानून कायदे की भी बात करते हैं और इंफॉर्मेशन की भी बात करते हैं। और इंफॉर्मेशन हमारे जो है वो तजिया नगार जो है वो अदनान अमीन अली जो अपना तजिया करते हैं, आपके साथ खबरें लेकर आते हैं। तो अदनान, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमान।
1: अदनान, मैंने छोटी सी तमीद बांध दी है तो आप क्या कहेंगे कि मौसम भी जो है वो गर्म है, उसके बाद प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, मौसम भी गर्म है और गर्म आम भी साथ साथ चल रहे हैं।
2: हाँ साहब, मौसम फिर से गर्म हो गया आज।

0: बाद भी फिर है, फिर उसके बाद 14 अगस्त के प्रोग्राम आ रहे हैं। तो इसी तरह समझ लें कि अगले हफ्ते, अगले मंथ तक एक किस्म के प्रोग्राम है।
1: अगले मंथ तक प्रोग्राम है, तो ये जो चीज़ें आती हैं, स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो कोशिश होनी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं वो सस्ती होनी चाहिए। स्टॉल ज़ाहिर है वो अपने कारोबार के लिए लगाते हैं, या रौनक के लिए लगाते हैं, या टिकटॉक के लिए लगाते हैं, इसमें तो पब्लिक को सहूलियात मिलनी चाहिए।
0: दरअसल जो होते हैं ना स्टॉल वाले, उनको तो स्टॉल तो मिलती है और वो तो अपनी कीमत से है, मगर ये भी देखना चाहिए जो स्टॉल लगाने के पीछे होते हैं उन्हें अपना खर्चा पूरा करना होता है। तो सही है, तो एक किस्म का क्या कहते हैं टेकन एंड गिविंग है, कोशिश की जाती है कि लोगों को खुश रखा जाए। और ऐसे ही है, कुछ लोग खुश हैं कुछ लोग नाराज हैं, वैसे ही चल रहे।
1: कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाराज हैं, ये बात समझ नहीं आई सियासी तौर पे।
0: देखिए सब, एक देखा जाए यहाँ पे एक डिबेट चल रही थी, कुछ कुछ कह रहे हैं कि इतने ज्यादा नहीं होने चाहिए, कुछ कह रहे हैं कम होने चाहिए। तो ये एक किस्म का क्या कहते हैं चीजें चलती रहती हैं, और ये एक क्या कहते हैं जिंदगी का एक हिस्सा है। तो ये तो एक एक एक बंदे को अपनी अपनी मर्जी होती है और अपनी अपनी राय होती है, तो तुम एक दूसरे की राय बदल तो नहीं सकते। तो बस सब पूछ रहे हैं अपनी जगह पे।
1: तो अदनान, हमें हमारे थिंक टैंक जो हैं वो तुकीर हसन बुखारी शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शाह साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
2: राजा उपुर साहब, आपको भी, इमरान को, आपकी टीम को, आपके लिस्टर नाजरीन सबको सलाम अलैकुम। जी राजा साहब,
1: जी, अगर पीछे से मेरे ख्याल है किसी अदनान, माइक खुला हुआ है तो आवाज़ जो ईगो होके आ जाती है, तो अगर पिछला माइक बंद कर दें।
0: मेरा तो बंद
2: जी
0: है
2: राजा
1: जी। जी, अब आवाज़ नहीं आ रही है। जी शाह साहब, मैं अदनान से बात कर रहा था। आपको पता है कि छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों को स्कूलों में, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, बच्चे वहाँ जो है वो जा नहीं सकते, वो बेचारे करें क्या। तो फिर वो ये भी जो मैंगो फेस्टिवल हो रहे हैं, ये भी तो उनकी छुट्टियां हैं, ये फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, छुट्टियां इसी तरह गुजार रहे हैं।
2: ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि मैंगो फेस्टिवल को पे जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी डेनमार्क के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत छोटे छोटे जजीरे हैं। फ्यून में चले जाएं, उसके लिंक जो जजीरे हैं, आप यूलैंड में चले जाएं, आप बहुत ज्यादा जगह पे जाके अपने बच्चों को, जो यहाँ की पैदाइशी बच्चे हैं, उनको डेनमार्क का ज्योग्राफिकल एरियाज और इनकी हिस्ट्री बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये बच्चे जब ये देखेंगे तो इनको समझ आएगी कि कल को हम जब जाएंगे तो किस तरीके से हम सियासत में आगे आएंगे, हमने कौन सी अपनी स्टडी चूज करनी है, क्या हमने सियासतदान बनना है या हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये उस हिसाब से देखें। अभी मैं इससे पहले, अदनान से पहले, वकार को सुन रहा था, मुबशर को सुन रहा था। वकार ने बड़ी अच्छी चीजें बात पेश की। मेरे ख्याल में अदनान और बुखारी साहब का जो पीछे प्रोग्राम हुआ था बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन वकार ने बड़ी अच्छी बात की कि जो मैंने स्टडी किया मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, मैं उस काम को ज्यादा तेजी दूंगा। तो इसीलिए जो बच्चे सियासत में आना चाहते हैं वो लिंक टू सियासत रहे, उनको इतनी ज्यादा हायर स्टडी पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो जो है हायर स्कूल में पढ़ रहे हैं या अपना वो अपना चले जाते हैं हो खो जिमनेजियम वगैरह में से फारग हो जाते हैं और वो सियासत को अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो वो आए, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम बंदा सियासत को फुली देगा तो वही सियासतदान जो है अपना
1: शाह
2: नाम
1: साहब, मैं
2: पैदा
1: थोड़ा
2: कर
1: सा
2: सकेगा।
1: आपसे डिफर करूंगा। तो सियासत में जो है आप काफ लीग को ज्वाइन कर लें, मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लें, पीटीआई को ज्वाइन कर लें, इस तरह बाकी दूसरी जमातों को, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो तरक्की के राज तो सारे यहाँ छुपे हुए हैं।
2: नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे, लेकिन जो असल में वो आप इसलिए शामिल होते हैं कि आप अपने जो आपके महाशरा है, जिन लोगों से आप वोट लेते हैं, जिन लोगों के साथ आपका जीना उठना है, आप उनके उनसे उनके तकलीफात को भी महसूस करें। और जिस माशरे में हम रह रहे हैं, जिस डैनिश माशरे को हमने अपना मुल्क बनाया हुआ है, इसके भी

0: फौज है उनको हमें पता लगे। अभी अदनान भी वही बात करता है जो मैं करता हूँ कि आपको यहाँ के लॉज का पता होना चाहिए। मैंने पहले भी आज कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक रिटन बुक है, उसको कोई तब्दीली उसमें नहीं आ सकती जब तक के पूरी पार्लियामेंट जो है वो मुतफिक ना हो और पार्लियामेंट इसके ऊपर वो वोट ले। लेकिन अगर ये जो लॉ फोर्सेस आ रही है मुख्तलिफ पार्टियों की, ये लोगों ने जो जिन पार्टियों को वोट दिए हैं वही काम कर रही है। अब रेडिकल वेंसरा को यहाँ पे हमने, मैंने भी उसको जितवाने में उसका हाथ आगे था, लेकिन हुआ गया कि वो जाके फिर उसी घोंसले में बैठ गई है और सब वहीं पे बैठ गए, उनके अंडे सबके मिक्स हो गए हैं। वो जो हुकूमत पीडीएम की बन गई है वो पिछली पीडीएम की हुकूमत पे एक दूसरे को सपोर्ट पार्टी थी, इसमें भी वही सपोर्ट पार्टी है। ये कभी भी इस तरीके से हमारे नौजवान जो है वो सियासत को नहीं समझ सकेंगे। हाँ, हम समझ सकेंगे अपनी सियासत को, अपनी लेग पुलिंग को, एक दूसरे की टांगे खींचना। और इस पे अदनान क्योंकि ये बिल्कुल यंग आदमी है, ये इसके ऊपर खूब रोशनी डाल सकता है कि ये खुद इस चीज का विक्टिम रहा है कि लोगों ने इसको खुद निशाना बनाया। तो लोगों को ये नहीं चाहिए, लोगों को इनसे सवाल जवाब करने चाहिए कि भाई हमें ये बताओ क्या हाल है तुम्हारा, इधर कानून क्या, कम्यून में क्या क्या चीजें होती है, कौन सी फैसिलिटीज हम ले सकते हैं, कौन सी फैसिलिटीज हम नहीं ले सकते, उसके लिए कौन से अदारे हैं, आम में जाना पड़ेगा, रीजन में जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। यहाँ हर जगह फैसिलिटीज है, लेकिन क्योंकि जब से हम अपने अंदर से रेसिज्म और गब्बियत बाहर नहीं निकालेंगे, हम कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे सिर्फ मैंगो खाएंगे तो वहां पे मैंगो खाकर। और मैंने ये भी देखा कि लोगों ने वहां डस्टबिन तक जाने की, मैंने देखा लोगों को लास्ट टाइम कि वो ये अपना कुल्फी खा रहे थे लेकिन कुल्फी के लिए वो डस्टबिन तक नहीं जा रहे थे कि वहां जो डस्टबिन लगे हुए हैं हम उसके चीले जो है वो उसके अंदर फेंक दे। तो ये चीजें जो है ये हमने देख रहे हैं कि हमारा दीन क्या कह रहा है और यहाँ का कल्चर क्या कह रहा है। जी राज साहब।
1: जी अदनान, आपने शाह साहब की बात सुनी, आपका तजिया चाहेंगे।
2: देखिये राजा साहब, बात ये होता है कि उनका तजिया तो सही है, और आपको सियासत में जाने तो आपको सियासत का क्या कहते हैं रुख देखना पड़ता है और सियासत को समझने की जरूरत होती है। अब देखिए, इस शहर में मैं बैठा हूँ और हम रहते हैं मिसलोत में, हमारा जो मेयर है टेक्निकली उसका बैकग्राउंड खाली नवीन क्लास है, और यहाँ से आप देख लें कि उसने कहाँ से स्ट्रगल करके आज कहाँ पर पहुंच गया। तो ये एक अवसर, ये क्या कहते हैं, एक होता है आपका जज्बा, आपका क्या कहते हैं नॉलेज, आप सीखना चाहें आप क्या करना चाहें, तो ये है। दूसरी बात टांगे खेचना, ये भी एक अनफॉर्चुनेटली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी हो रहा फॉरन कम्युनिटी हो उसमें है, तो ये चीजें तो है, मगर बस इस पे ये है कि इस पे बंदे को हार नहीं मांगनी चाहिए और अपने काम पे फोकस होना चाहिए और अपनी अपनी क्या कहते हैं अपनी बेहस से रहना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी के अंदर देखिए कि कौन सा बंदा कौन सा काम कर सकता है, तो फिर वहां से उसको चूज करें, क्योंकि आप एक बंदा भेज देंगे जिसको पता ही नहीं होगा तो वो चांसलर क्या करेगा। तो उसका ये आप देखें कि बंदे का विजन क्या है, बंदा करना क्या चाहता है, बंदे ने काम कौन सा सीखा हुआ है। सबसे पहले चांसलर से पहले जरूरी होता है कि आप कुछ बोर्ड वगैरह होते हैं जहाँ से आप ट्रेनिंग लेके आ सकते हैं और आपको वो मिल जाए तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। तो ये चीजें आपको बड़े गौर से करनी चाहिए। और तीसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि मैंने भी कल अनफॉर्चुनेटली मैं एक चीज कहूंगा कि इंसान को जब हम इस मुल्क में रहते हैं तो हमें इन इन इस इन सिस्टम के हवाले से चलना चाहिए है। अनफॉर्चुनेटली मैं, मुझे पता है इससे मैं बड़ा टारगेट होऊंगा, मगर मैं खुद कल विटनेस था कि हम मैं ये मैंगो फेस्टिवल में मैं हैरान हूँ कि ये कैसे चल गया कि पुलिस नहीं आई इस फेस्टिवल के अंदर, क्योंकि जिस तरह से लोगों ने वहां पर पार्किंग की शुरू कर दी थी ना एक टाइम पे, मैं बड़ा हैरान था कि अभी तक पुलिस नहीं पहुंची। मगर अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस कहाँ नहीं पहुंची, क्योंकि पुलिस पहुंच जाती तो बड़ा मसला पड़ना था। तो बंदे को हर चीज का सोच समझ के चलना चाहिए। हम डेनमार्क में हैं, हम एक अब मैं हो गए करीबन 60-65 साल 70 साल यहाँ पे, तो हमें अब आयन कानून की तरह से चलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि हम कहाँ जाए।
1: अदान, आप जैसे कह रहे थे कि लोगों ने गाड़ियां जो है वो गलत पार की हैं, इंतजामिया की बात मानी नहीं है, खुद कानून की खिलाफ वर्जी करते रहे हैं।
2: नहीं, मैंने ये कहा है कि देखिए आप ये देखना चाहिए कि आप हर एक पार्किंग है, आपको पता है कि दो साइड पार्किंग है, गाड़ियां आगे पीछे हो गई, आप उस पार्किंग पे खड़ा देंगे तो पीछे तो लाइन लग जानी है। और आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि जिस पार्किंग पे बस चल रही हो ना, बस वालों के पास एक टाइम नहीं होता, और बस वालों ने क्या कहते हैं एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि वो क्यों लेट हो रहे हैं। वो ज्यादा लेट होने लग पड़ेंगे तो वो तो टेम्पररी पुलिस को कहेंगे कम इसलिए लेट हो रहे हैं। तो फिर आप लोगों को ये सोचना चाहिए, जब आपसे इंतजामिया एक दफा कह दिया, दो दफा कह दिया, तीन दफा कह दिया, तो आप समझ जाए बात को। ये मतलब तो नहीं कि आपको पांच पांच छह दफा बंदा के तो आपको फिर समझ आनी, फिर तो बंदे का सॉरी जो मैं ये कहने लगा कि बंदे का दिल करते कि बंदा कुछ और कर दे, मतलब वही बात आती है ना कि फिर अकल कहाँ पे आप लोगों की। आप लोग अब क्या कहते हैं, इतने साल हो गए आप लोगों को, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, अब तो थोड़ा बहुत कानूनों को समझे, आयन कानून को देखने के क्या है और इससे सीखने की कोशिश करें।
1: शाह साहब, आपने अदनान की बात सुनी, क्या हमने 50 सालों में यही कुछ सीखा है?
0: जो कुछ सीखा है वो भी भूल गए। यहाँ पे बिल्कुल अदनान की बात सही है, कल मैंने आपको पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बताया कि कल वहां पे बसों को गुजरने की जगह नहीं थी, लोग सड़कों के दरमियान में पैदल चल रहे थे। तो इस तरीके से जो पार्किंग है, देखें आपको कम से कम ये देखना पड़ चाहिए कि इस मुल्क ने हमें फैसिलिटी दी है, हमें आजादी दी है, तो कम से कम हम यहाँ से जो गुजर रहे हैं लोग, खुदा न खास्ता एम्बुलेंस गुजर रही है, कोई फल गुजर रही है, कोई चीज गुजर रही है बस वगैरह, उसके रास्ते में हम ना आए। यहाँ पे वो ये समझते हैं कि हमने जो ये लीजिंग पे गाड़ियां ली हुई है इतनी इतनी बड़ी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शो है, हम लोग बहुत बड़े कोंगली फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि बेशक मेरी बातों को लोगों को बुरा लगे, मेरे खुद वीजे पे लिखा हुआ है आवाज फिलहाल से, मैं जब यहाँ डेनमार्क में आया हूँ मजदूर की हसीियत से मुझे वीजा मिला, उसके बाद यह राधा बात है पढ़ लिख के आदमी कुछ बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वीजे के ऊपर तो आपके लिखा हुआ है कि आप आपको आवाज फिलहाल से दिया जाता है, काम करिए इजाजत दी जाती है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा इस कम्युनिटी के अंदर, और मैं ये यंगस्टर्स को वाजिया ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने लिए बहुत बड़े कुआं खंडक खोल रहे हैं और जो खुद चुकी है, और इसके अंदर आप पानी छोड़ने की बात है, आपको ये यकीन नहीं होगा ये कितनी गहरी है। यहाँ पे अदनान इस चीज पे मुझे सवाल भी कर सकता है, बात भी कर सकता है, और अगर ये एग्री नहीं करता, यहाँ इन्होंने जो नए लॉ फोर्स ने 2023 और 24 में बनाए हैं वो इतने संगीन, इतने गनोने हैं कि उसकी जात में हम कोई भी आ जाए तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आप ये देखें कि ये जो अभी खियोस्कों का वाकया हुआ है, ये सिर्फ फ्यून और शीलैंड पे नहीं हुआ, ये हर जगह पे हो रहा है, और इन्होंने ये काफी अरसा तक इन्होंने ये चीजें जारी रखनी है। जब इन्होंने इजाजत दी हुई है कि अगर आपके पास बाउल अकेल के अंदर आप फेल हो जाए तो वहां पे खोज के अगर जगह है सोने की और वहां पे आप खुदा ना खासा आग लग जाए, कोई अच्छी चीज हो जाए, तो वहां पे एग्जिट डोर यानी कि एक्स्ट्रा दरवाजा है कि आप पीछे से निकल सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके मसाइल इसलिए बड़े हैं कि जो है जो ईस्टर्न गेट में वाकया हुआ था क्रोस के अंदर, इससे मसाइल जो है काफी सख्त हो गया, कानून सख्त हो गए हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो रात को अपने जो मिल आबाद जो उनके लिए पास काम कर रहे हैं तो उसको वहां पे फल कराए, उसकी इजाजत नामा ले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैर कानूनी काम करने पे अदनान तुम इस पर क्या कहते हो?
2: साहब देखिए सब सॉरी साहब, इस पर तो भी दो राय नहीं है, किसी को गलत काम नहीं करना चाहिए और गलत काम से गलत नतीजा ही होता है। और आपकी बात सही है कि यहाँ पे जो जो जो 3-2-3 सालों से कानून आ रहे हैं वो सबसे सख्ती आ रहे हैं। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कल मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप देखें कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई ना कोई रीजन तो है ना कि इस सोसाइटी ने ये कल्चर बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं मुझे पता है लोग मेरी बात से नाराज होंगे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को ये भी समझना चाहिए कि ये जो कानून इस मुल्क में बने हुए हैं यही चीज हम चाहते हैं कि अपने मुल्कों में हो जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि ये इस्लामी कानून है कि सुनते तो कहते हैं। जब आप लोगों को वो चीजें यहाँ पे मिल रही है तो आप वो चीजें यहाँ पे फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं जनरेशन है, जहाँ हमारा कोई लिंक है, हमारी फैमिली है, हमारी बैकग्राउंड है, जहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी वाइफ जिन सेकंड जनरेशन में जहाँ पे मैंने शादी पास करनी की हुई है, सब कुछ हुई है, हम वहां जब जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि ये चीज वहां पे आए जो हम यहाँ पे है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ही खुद उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे और उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम अपने मुल्क में कैसे लेके जाएंगे।
1: अदनान अभी शाह साहब आपसे भी सवाल है कि अभी जो सोशल डेमोक्रेट और पीपल्स पार्टी का आपस में पीपल्स पार्टी डेनमार्क की पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो ज़बरदस्त टक्कर ले रहे हैं ये खतरे से खाली नहीं है, ये एक जो है वो नील्स जेस्परसन का ख्याल है, आप क्या कहेंगे दोनों?
0: जी मैं तो ये कहूंगा कि ये एक सियासी प्रोपोगंडा है, ये दोनों पार्टियों के मंशूर बिल्कुल एक हैं, मिलते जुलते हैं। और ये क्योंकि जो सोशल डेमोक्रेट है ये अपने जो लेबर लेबर लॉज हैं, जो इनके लेबर मंशूर हैं, उससे ये कम्प्लीटली कुछ पिछले 15-20 साल से ये हट के काम कर रही हैं। और ये जो इनका जो मंशूर है ये टॉप लेवल का है, सिर्फ के भाई पावर हमें चाहिए और हम पावर में रहना चाहते हैं, हमारा जो बेसिक मंशूर था वो खड्डे में जाए उसकी हमें परवाह नहीं है, जो हम लेबर पार्टी होती थी अब हम जो है वो बस वोट हासिल करने के लिए है। तो यही चीज है डैन फोल्के पार्टी, डैन फोल्के पार्टी भी तो सोशल डेमोक्रेट में से उससे इख्तलाफ करके आगे आई थी, लेकिन फिर सोशल डेमोक्रेट के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर ये लोग दूसरी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं तो हम अपनी पार्टी को ही टॉप पे कब्जा करके तो इसको तब्दील कर ले। तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों पार्टी जो है इनके टॉप लीडर जो है इनमें इन इनकी राय एक है, लेकिन जो बोन है जो नीचे जो लोग हैं उनमें अख्तलाफ पाया जाता है, वो चाहते हैं कि डेनमार्क के जो उलेनिंग लॉज हैं दूसरे उनको माइल्ड किया जाए।
1: ये अदनान आप क्या कहते हैं?
2: पॉलिसी मैं तो यही कहूंगा कि ये दोनों पार्टी की जो इसको कर देना ऐसे लग रहा है जैसे एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही एक स्टेटमेंट आती है और इस वक्त तो पता नहीं इस वक्त तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या किए, क्योंकि
1: मतलब है कि नफरत के वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं।
2: सब देखिए बात ये है कि इसके बैकग्राउंड का ये है कि 2015 थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 2015 में जब ये इलेक्शंस में हारी थी ना इलेक्शन, तो पच्ची ने बहुत ज्यादा सीटें नहीं की और तकरीबन मेरे ख्याल से 33 सीटें ले गए थे। तो ये सेकंड बिगेस्ट पार्टी थी उस वक्त, और उस वक्त फिर इन्होंने स्ट्रेटजी अपनी बदली थी कि अब इनको कैसे ये वोट वापस लिए जाए, और उस वक्त से लेके आज तक इनकी पॉलिसी जो है ना वो सख्त से सख्ती हुई है, क्योंकि 10-15 करीबन इनके वोट ले जाता था, उसके दौरान से 10 वर्ष का मुखाड़ा भी आ गया और बोनस पच्ची भी आ गई, मगर उनकी स्ट्रेटजी यही थी। अब ये दोबारा से वो कोशिश कर रही है कि जो जिनने 2016 में ना 2016-2017 में जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस पे ये कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या बनता है लॉन्ग सेक्टर पे ये तो हमें अभी नहीं पता, क्योंकि अभी तो लोग वेकेशन पे है समर पेरियड पर, के बाद ही देखा जाएगा कि क्या है। और दूसरा ये है कि ये जो जो जो जो, जो स्टेटमेंट्स आ रही है ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स है, मगर इसके अंदर एक ही चीज हुई मैं कहूँगा जो मैंने पहले भी कही थी और जो जो, जो बात करते हैं लोग जो हमें टारगेट करते हैं कि हम इस बात को अपनी पार्टी में डिस्कशन कर सकते हैं, मगर इसका एक ही हाल है कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको वन वॉइस बनना पड़ेगा, फिर ही इसका कोई नतीजा हो सकता है कि हम इस चीज को बदल सकें। हम इतनी छोटी खड़ी कर लेते हैं फेस्टिवल्स पे और इन जगहों पे, तो हम वैसे भी पब्लिक इकट्ठी कर सकते हैं। मसला बस ये है कि हम पब्लिक इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस हिम्मत की जरूरत होती है, पार्ट की जरूरत होती है, लोगों को इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत होती है और बड़े सारे लोगों को क्या कहते हैं। मैं आपको बात बताऊं, कल मैंने ये मेरा हाथ होता है इस चीजों में, मैं पहली दफा मेरे लोगों को बड़ा चले, बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं कि तुम पब्लिक वहां से इकट्ठी कर सकते हो। मैंने कहा मैं तो पब्लिक वहां से इकट्ठी करता हूँ, वहां से इकट्ठी करता हूँ, वहां से इकट्ठी कर सकता हूँ, मगर मसला ये है मेरे लिए, मसाइल ये है, ये फाइट मैं कल ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फिर हर बंदे को जवाब देना है, हर बंदे को देना है। आप मेरा फेसबुक पेज देख ले, मेरे ख्याल से जितना मैंने लोगों को जवाब दे दिया, जितने मुझे क्या कहते हैं लोगों ने गलत जवाब दे दिए, स्ट्रेस दे दिए, वॉट एवर दे दिए, सब मसला दे ले, क्योंकि मुझे कोई खतरा नहीं है। पुलिस के पास है, वो पड़े चले जाते हैं, डायरेक्टली पुलिस को हैंडल कर लेती है। मगर मसला ये है कि हम जितने देर तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, वी विल नॉट बी ऑन वन पेज, वही मसला होता है कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए कि 5 सितंबर को इतना बड़ा डेनमार्क के अंदर एक डेमोन्स्ट्रेशन आ रहा है सब चीजों के खिलाफ, कि डेनमार्क की डेमोक्रेसी, इस्लाम, सब ये देखे ना, कि हम समझते थे कि वो लोग, कल मुझे एक बंदा कहता है वो 1200 थे, मैंने कहा एक बंदे का पुत्र वो 1200 हो रहा 1300 हो, इंग्लैंड में वो कितने थे और आज देख इंग्लैंड में कितने हो। मैंने कहा चीज छोटी होती है एकदम लूज हो जाती है, उसको स्टॉप ना किया जाए तो बड़ी बड़ी बड़ी होती जाती। मैंने कहा इसलिए हमारा काम बनता है, कभी भी हमारे पास टाइम है हम बैठे और इन चीजों को देखें और एक प्लेटफॉर्म बनाए तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं।
1: शाह साहब क्या समझते हैं अदनान जो कह रहे हैं, मुकाबले से ये कोई पॉजिटिव साइन जाएगा या कि नफरत बहुत ज्यादा फैलेगी?
0: देखिए जी, नफरत फैलाने में तो हम लोग कामयाब हो गए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग सब हैं, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी को बताता नहीं कि तुम्हारे ये फॉल्ट है, तुमने ये गलती की है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है, जो अदनान ने कहा है कि 5 सितंबर को जो होने जा रहा है, ये एक यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ हुकूमत को चलाती हैं, फॉर्म 47 हमारे लोगों के लिए समझने के लिए बात ही होगा कि 45 को 47 में तब्दील कैसे किया जाता, तो इस मुल्क के अंदर भी ऐसे होता है और हमने देखा है और हर दफा मुशाहदा किया है इस बात का कि सियासत जो है ये सिर्फ बातों से नहीं होती बल्कि पैसे से भी सपोर्ट होती है और बड़ी चीजों से सपोर्ट होती है। तो यहाँ के जो हालात हैं इस वक्त, ये जो ग्रीनलैंड का मसला है, इनको ये गल में पड़ चुका है इस गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट उनको हटाने के लिए ये यहाँ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग। एक बंदा आके इंग्लैंड से आके यहाँ पे, जिसका ईयू से भी तलक नहीं, वो यहाँ पे राशिज्म फैला रहा है। मैं सिंपल एक आपको मशवरा दूंगा कि मैं जैसे शायद लोग पसंद करें ना, लेकिन मैं एक बात करूंगा जो हकीकत है, अगर ताहिरुल कादरी जो है वो डेनमार्क में नहीं घुस सकता, उसके ऊपर पाबंदी है कि वो यहाँ पे टेररिज्म की बात या कोई ऐसी बात करता है, करने आता है, ये इनका एलिगेशन है डेनमार्क गवर्नमेंट का, तो एज ए सियासी तजिया रगार मैं भी ये कहूंगा कि इन लोगों पर भी बैन होना चाहिए कि आप हमारा एक फ्रेंडली मुल्क है, हम अभी डेनमार्क को दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क साबित किया गया है, तो ये कैसा खुशहाल मुल्क है कि जिसकी जो सबसे बड़ी अकलियत है वो ही दबाव में है, वो ही प्रेशर में है, उसी को गालियां पड़ रही हैं, तो क्या इसकी वजूहत क्या है कि एक हम लोग गबीयत बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरा हमारे में बहुत ज्यादा चौधराहट है, हम बहुत बड़े राशिस्ट खुद लोग हैं। मैंने ये देखा है कि अब ये हमारे जो लोग इलेक्टेड हो चुके हैं, इवन हमारे इधर अपना एल्बर्टसन के अंदर, आप उनको सलाम करेंगे तो सलाम का जवाब मिलेगा, वो शक्ल देकर दूसरे पर मुंह कर लेते हैं, और जब नहीं होते तो फिर वो आप उनके अंकल भी होते हैं, आप उनके सब कुछ होते हैं। तो ये जो रैशिज्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को उस वक्त पता लगेगा कि जो मैंने लोगों से वोट लिए, उनकी हमायत हासिल की, उसके बाद मैंने क्या किया, तो इसका हिसाब जो है ये हुकुल अलबाद में आता है, और हुकुल अलबाद में अल्लाह ताला ने बंदों को बख्शना नहीं, मैं क्यों ना हूं। तो सबसे बड़ी ये बात है कि कि इन लोगों को डेनमार्क में ये पता लग चुका है कि यहाँ की हर कल्चर सोसाइटी, यहाँ की हर मस्जिद, यहाँ की हर तंजीम जो है वो एक दूसरे से अलहदा है और ये कभी भी इस्लाम के नाम पे इकट्ठे नहीं हो सकते। लिहाजा इनको जिस तरफ दिल चाहे हांक लो, जिस तरफ दिल चाहे इनको ठुडे मार लो। लेकिन एक चीज राजा साहब याद रखिएगा कि जो हमारे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो हमारे बच्चे टॉप लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कभी भी खतरा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके लिए इनको रखना जो है ये इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनको अगले 10-15-20 साल में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो हम आम लोग हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, छोटी छोटी क्योस्के चलाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, हमें अगर वो गलती पाई जाती है तो ये हमें इतना तंग करेंगे कि हम यहाँ से चले जाएं। आपने देखा होगा, दुनान ने भी देखा होगा कि पिछले हफ्ते एक डैनिश जो है वो फलके पेंशन पे गया, तो उसने कहा कि मुझे फलके पेंशन में एक टैक्स कार्ड को क्या मुझे 6,000-6,500 करोड़ मुझे मिल रहा है, तो मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजारूंगा। मैंने तो इतनी उम्र काम किया और मैं कभी भी काम के बगैर, जब डैनिश ये कह रहा है तो क्या हमारे किसी सियासतदान ने ये सोचा है, या कम्यून लेवल में जाके या किसी गैदरिंग में ये कहा हो? पावरफुल आदमी उस वक्त होता है जिसके पीछे 100-200 बंदा होता है, वो इस चीज से वो पावरफुल बनता है और फिर वो बंदों के सामने खड़ा होकर कहता है सियासतदान को कि देखो ये मेरे बैक है और तुम जो हम बात कर रहे हैं इसमें वजन होना चाहिए, फिर आपको वोट मिलते हैं, फिर आप उनको अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उनसे रास्ता खत्म कर देते हैं, तो जो आपको लेके आया या जिस कमेटी में आप बैठे हैं उनको पता लग जाता है कि अब ये जो है ये पिंजरे में बंद हो गया, इसके पीछे जो बाउलेंस थी वो चली गई है, तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, आपको आप सियासत में माइनस होना शुरू हो जाता है।
1: बात हो रही है आगे, अदनान ने बड़ी अच्छी बात की, बात हम कानून कायदे के कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, अब हम अपनी गाड़ी पार्क सही नहीं कर सकते। मैंगो फेस्टिवल था जो अदनान बता रहे हैं, अदनान से भी जो है वो कमेटी वाले या दूसरे लोग जो है गिला कर रहे हैं, गाड़ियां हम गलत पार्क करते हैं। शाह साहब, क्या हम अपनी गाड़ियां दिखाने जाते हैं, अपना लिबास दिखाना चाहते हैं, या हमें एडवर्टाइज तो मैंगो फेस्टिवल की मैंगो की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी, या टिकटॉक की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी? ये तो पैसा कमाते हैं टिकटॉक वाले।
0: मेरा ख्याल में कि इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, इनको ये चाहिए था कि बैंक में अकाउंट बंद ना करते, लोगों को बिजनेस के लिए खोलने की इजाजत देते, लेकिन ये जो लीजिंग पे छोटे छोटे वर्कर्स को, छोटे छोटे बिजनेसमैनों को काम करने के लिए इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी महंगी गाड़ियां इन्होंने लीज कर दी है, उनके ऊपर उनसे कहना चाहिए था कि हाँ आप अपनी पूस्टेंट इनकम, आप अपने पूरे घर की इनकम, अपनी इनकम दिखाएं, आपके पास क्या बचता है, जैसे वो हम पेंशनरों से पूछते हैं कि भाई आपने अगर ये दवाई लेनी है तो इसकी फैसिलिटीज लेनी है तो आप पूरा खर्चा बताएं महीने का। फिर यहाँ भी ये देखते हैं कि ये छोटी गाड़ी में बैठने को पसंद करते। मैं इनके मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसलिए इसका मुखालिफ हूँ कि अगर आपने बड़ी गाड़ी ले ली है तो उसको पार्क करना, अगर आपको नहीं मिला तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर आप पार्क कर ले। आप बस में आ रहे हैं, आपकी इज्जत कम नहीं होगी? जो आपका उसी गांव का रहने वाला बंदा वो उतनी ही बातें आपके खिलाफ करेगा, कहेगा हमें इसको पुराने, मुझे नहीं बख्शते, मैं गुजरात का किसी वक्त खाने, मुझे नहीं लोग बख्शते, यहाँ पे नहीं बख्शते, गाड़ियां देने से बाहर नहीं आते। तो ये इन बड़ी गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी गाड़ियां ले, अपनी इज्जत बनाए, लोग आपको इज्जत दे, माशाल्लाह आप इस मुल्क में बड़े हुए हैं, हम लोग तो फिर पाकिस्तान से आए थे, तो आप इस मुल्क के शहरी हैं, तो हमारी ये दुआएं हैं कि आप सबसे पहले। एक दूसरी बात मैं राजा साहब यहाँ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इत्मीनान भी इस पे करें, हमारी कम्युनिटी को खूसी तौर पर मुसलमान कम्युनिटी को सबसे बड़ी नुकसान इस बात पे हुआ है कि जो हमारी यहाँ पे डिवोर्स हो रही है इस वक्त सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट जो है, मैं हैरान हो गया हूँ अगले दिन अखबार में पढ़ के कि मुसलमानों की सबसे ज्यादा शरह जो है वो डिवोर्स की है, और बाद लोगों ने 2-2-3-3 दफा डिवोर्स लिया यहाँ इस मुल्क के अंदर, और ये बहुत ही इंतहाई खतरनाक है, और इसके ऊपर भी कोई ये कानून बना सकते हैं। दलान इसके ऊपर बात करें, ये बताएं कि इसके नॉलेज में क्या है।
1: शाह साहब ये बातें तो कानून की तो कानून दान ही कर सकते हैं। तो अदनान आपने ये सारी चीज़ों को देखा कि हम सियासी जमातों में इकट्ठे नहीं होते, तकसीम हो जाते हैं, जहाँ जिन जिन ममालक से आए उनमें तकसीम हो जाते हैं। सियासतदान तो हर वक्त फिट रहता है, जो वोट देने वाले होते हैं, जो तावन करने वाले होते हैं, एक बंदा राइट पे हो जाता है, एक लेफ्ट पे हो जाता है। मैं अदनान को पसंद नहीं करता, मैं शाह साहब को पसंद करता हूँ, क्योंकि अदनान से मेरी मुखालफत है, मैं शाह साहब को वोट दूंगा। जो शाह साहब को पसंद नहीं करता वो कहता है मैं शाह साहब को नहीं पसंद करता, मैं अदनान को वोट दूंगा। जब हम नज़रियाती वोट ही नहीं देते, तकसीम होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, सिर्फ जो है हमारी कौम जो है वो डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग की हद तक महदूद है। जी अदनान,
2: देखिए राजा साहब, इंसान को उसकी काम से वोट देना चाहिए और उसकी बैकग्राउंड से देना चाहिए, नाम से किसी को वोट नहीं देना चाहिए। एक तो ये चीज है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि इंसान को ये देखना चाहिए कि इंसान कौन सा काम कर रहा है अच्छा और कौन सा काम अच्छा नहीं कर रहा। और शाह साहब की बात सही है कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, रिवॉर्ड्स काफी हैं और इस पे वोट करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह ताला इस पे काम भी किया जाएगा कि क्या वजह है, और ये इंशाल्लाह ताला इस पे कोई ना कोई राय भी आएगी। मगर अभी मैंने इस पे गौर इतना नहीं दिया, मगर इंशाल्लाह ताला इस पे जब मैं गौर दूंगा और देखूंगा इस चीज को, तो फिर डेफिनेटली इसके बारे में कोई ना कोई कोशिश तो करूंगा अपनी तरफ से कि इस चीज का बेहतरी आए।
1: तो अदनान, बड़ी खुशी की बात है जो हमारे सिटी काउंसलर्स हैं या जिन जिन कमूनों में बैठे हुए हैं उनको बड़ी अच्छी पोस्टें भी मिल गई हैं, वो सारा कुछ मिल गया है, बच्चों को भी मिल गया है। खुशखबरी की बात है, मैं अब खुद तो नहीं जाना चाहता, वो खुद ही बंदों को अपनी खुशखबरी जो है खुद सुनानी चाहिए। तो शाह साहब, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं, बहुत सारी खुशखबरियाँ भी आ रही हैं। जिस तरह आप दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं, वो मैं चाहता हूँ जिनको खुशखबरी मिली है वही ब्रेकिंग न्यूज़ दें।
0: ये राजा साहब, बात ये है कि हमने तो ये देखना है कि ब्रेकिंग न्यूज वो होती है कि इन्होंने क्या किया। देखिए, आप सियासत में आए, आप हारे आप जीते, ये मैदान में होता है। लेकिन अगर आप हार कर भी अपनी जीत को बरकरार रखते हैं और आप सियासत में एक्टिव होते हैं और सियासतदान साबित करते हैं कि भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे रेडियो पे मीडिया पे हर सूरत आना है, मैंने अपने ख्याल जो है अगले चार साल के लिए जो मैंने इलेक्शन लड़ना है उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, तो लोगों में वो ज्यादा पावरफुल और मजबूत और कादावर बनकर आएंगे। लेकिन अगर आप सडनली इलेक्शन से चार दिन पहले ये अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं अपने खानदान की पावर से मैं फलानी बिलादरी से हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ, और फिर लोगों के तले करके मिलते करके आप वोट लेते हैं, आप आगे जाते हैं, तो ये नुकसानदेह है। फिर आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं जी कि हमें अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए हमें दूसरा काम। देखिए, आप इलेक्ट हो ही ना, आपको सियासत का शौक है, आप लिखे, आप सियासत में आए, जरूर आए, आप जाके फलके दिन के उधर में बैठ जाए, आप कम्यूनों के अंदर जाके वहां पीछे बैठ के उनकी कमेटियों का सुने के इजलास क्या करते हैं, आप अपनी सियासत में वहां बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मेडल से जाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि भाई हम पाकिस्तान में भी सुरखू हो जाए कि हमसे बड़ा सियासतदान डेनमार्क में कौन ही, और हालांकि पाकिस्तानी सियासतदान जो है वो डेनिश सियासतदानों से उनमें जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के धनुष जो हैं उनके अंदर बेशक वो कितने बड़े राशिस्ट हो, उनके अंदर फिर भी नेशनलिज्म है। वो ये नहीं कहते कि जाओ तुम पीछा गलत बोल रहा है रेडियो पे, इसको पकड़ के मुल्क से आउट कर दो, नहीं, वो कहते हैं कि ठीक है, हाँ जब ये स्टेट के खिलाफ जाएगा तो पीछा स्टेट के खिलाफ बात करेगा तो फिर हम इसको कानून की जात में लाएंगे। लेकिन अगर ये सियासत और सियासत को सियासी चीज करके तजिया कर रहा है तो वो कभी भी मुझे हाथ नहीं लगाएंगे। और हमने इस रेडियो पे आपके प्लेटफॉर्म पे एक दफा नहीं लाखों बार हमने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि हुकूमत जो है ये सियासतदानों की होती है, ये कोई अपना स्टेट नहीं होती। तो हम कभी भी डेनमार्क की स्टेट को अल्लाह माफ करे, हम कभी भी इस तरह का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये अब हमारा वतन है, ये हमारे बच्चों का वतन है और हमने यहाँ रहना है और इसी वजह से हमारी इज्जत है। अगर हम डेनमार्क में ना रहते होते तो तो पाकिस्तान में
1: शाह साहब मैं ज़िमनन सवाल कर रहा हूँ, शाह साहब आपसे ज़िमनन सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ जो लोग डेनिश पासपोर्ट रखते हैं और पाकिस्तान की स्टेट को तनकीद का निशाना बनाते हैं।
0: जी वो जो स्टेट को तनकीद का निशाना बनाते हैं तो वो ये समझ लेंगे कल को जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो स्टेट जो एयरपोर्ट पर उनका असर करेगी वो कहीं भी नहीं होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आपके इस सवाल के जवाब में कि मेरे पिछले हफ्ते पाकिस्तान में एक पुलिस के महकमे से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा, बड़े जिम्मेदार ऑफिसर ने मुझे ये कहा कि आप ये बड़ी चीज याद रखें कि ये जो आप व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पे आप मैसेजेस खोलते हैं जो स्टेट के खिलाफ होते हैं तो वो उसमें ये गिना जाएगा कि आप उनके हमदर्द हैं और आप उसको फिर दूसरे बंदे को बेच रहे हैं कि लो तुम भी पढ़ लो ये पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्रोपेगंडा होता है। तो इसमें आप लोग शामिल हो जाते हैं तो कोशिश ये करें कि आप ये मैसेज अपने लोगों को दें कि खुदारा ऐसी ऐसी जो मेल आपको आती है उसको डिलीट कर दें, उसको खोले ही ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ है उसको फौरन डिलीट कर दें और बल्कि उस बंदे को अपने ग्रुप में शामिल ही ना होने दें ताकि वो अच्छी हरकतें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा अफगानी और हिंदुस्तानी जो है भारती वो इस वक्त हमारे नंबर यूज करके हमारे नाम यूज करके तो वो जो है वो हमारे ग्रुपों में शामिल हो रहे हैं और ये चीजें जो है वो आगे आ रही है। श्री राजस्थान
1: अदनान क्लोज करते हैं, अदनान को हाल बताएं ये जो सियासत है ये जमहूरी मुल्क है या जमहूरी तरीके से ही राइट्स मिलेंगे, जब तक इन पार्टियों के अंदर नहीं जाएंगे इनके मेंबर्स नहीं बनेंगे कम्यून में अपनी तादाद को बढ़ाएंगे नहीं पार्टियों में तादाद बढ़ाएंगे नहीं तो कोई भी कानून नाम तब्दील नहीं कर, यही बात है पार्लियामेंट में, यही पार्लियामेंट में जाकर काम करना होता है। मेरी अच्छी बातें करने से, शाह साहब की अच्छी बातें करने से, आपकी अच्छी बातें करने से तो बात लोग सुन लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लोगों को जब लोग कहते हैं शाह साहब उनको यहाँ की डनमार की सियासत करनी चाहिए, इन पार्टियों में जाना चाहिए, अगर इन पार्टियों में जाते नहीं है बंद कमरों में सियासत की जो है बुचाड़ करते हैं शाह साहब, फिर तब्दीली नहीं आएगी।
2: यार साहब बंदे को पार्टियों में जाना चाहिए और किसी स्टेट के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए और स्टेट को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए बंदों की राय, और मेरी यही राय है कि हम इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज में और लोग ज्वाइन करें पार्टियों को, और मेरे लिए सबके लिए दुआ है कि ये लोग का अपना जो लोगों का फैसला होगा वो लोगों का होगा, मेरी तो यही है जिससे बंदे को पार्टी में रहना चाहिए।
1: शाह साहब आखिर में आप क्या कहेंगे और आप अदनान का शुक्रिया भी अदा करें, प्रोग्राम को क्लोज भी करें।
0: ये बिल्कुल मैं आपको बताता, जो स्टेट होती है फौज का अदारा होती है, दफाई अदारे होते हैं, फाइनेंस के अदारे होते हैं, पुलिस के अदारे होते हैं, जो अमन अमान के अदारे होते हैं, जो परमानेंट काम करते हैं स्टेट के अंदर वो होती है स्टेट, और इस पार्लियामेंट भी आपकी जो है वो स्टेट है, लेकिन जो सियासत है वो हुकूमत होती है। आप सियासतदान के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ बात कर सकते हैं लेकिन आप किसी भी मुल्क के इन अदारों के खिलाफ बात करेंगे तो वो स्टेट के खिलाफ बात जाती है और उसको ये बहुत खतरनाक बात है, इसकी सजा जो है पाकिस्तान में और बहुत दूसरे ममालिक में इवन डेनमार्क में डेथ पेनल्टी है कि आप स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं, तो इससे लोगों को परहेज करना चाहिए, यह ना समझना चाहिए कि सारी उम्र हमने यहाँ कर रहना, किसी ना किसी वजह से हमने वापस अपने अपने मुल्कों में जाना है। तो इदनान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने अच्छी मालूमात दी और जैसे तुमने वादा किया कि अगले किसी भी प्रोग्राम में तुम फुल इंफॉर्मेशन लेके आओगे कि हमारे जो यहाँ डिवोर्स रेट है इसकी वजूहत क्या है और इनके पीछे जो अवामल है वो क्या क्या है, तो इंशाल्लाह ताला इस पे मैं भी अगर साथ हुआ तो मदद करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लिसनर का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें बर्दाश्त किया, अब गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा है तो कोई हम भी इंजॉय कर लें। ठीक है राजा साहब, अल्लाह हाफिज।
3: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं।

0: 1990 तक हम लोग जो थे एक मोहब्बत, एक कुंबा बनकर, हम एक कबीला बनकर इस मुल्क के अंदर रह रहे थे। आज वो कबीला जो है, आज वो कुंबा जो है, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर गन ताने हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर दौलत के अंबार लगा रहे हैं, फोटो सेशन कर रहे हैं। आप ये देखें कि शादी ब्याह होते हैं तो उसके अंदर भी अच्छे दोस्तों को, बुरे वक्त के दोस्तों को साथ में, जो बुरे वक्त में आपके काम आ रहे हैं उनको भूलकर आप ऐसे लोगों के साथ शामिल हैं जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखे जी हमने अपनी बच्ची या बच्चे की शादी की, ये क्या हो रहा है। लेकिन आप ये नहीं देखते आप किस चीज को इनविटेशन दे रहे हैं, आप किस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, इनको रोकने के लिए, इस क्राइम को रोकने के लिए, इन चीजों को रोकने के लिए हमारे यंगस्टर्स को छुट्टियों के बजाय, जो हमारे सियासतदान है उनको छुट्टियों के बजाय यहाँ के जो कानून है उसके ऊपर अमल दरामद कराना बहुत ही जरूरी है। आप देखें ये इंडियंस हमारे बाद में आए हैं, जब हम लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त 100 के करीब यहाँ पे सरदार और इंडियन नेशनल यहाँ पे इस मुल्क के अंदर थे, लेकिन हमारी तादाद ज्यादा थी। अब उनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई है, उसकी वजूहत क्या है कि वो इस मुल्क के आइन की रिस्पेक्ट करते हैं, वो इस मुल्क के आइन को पढ़ रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम दोगला पासी कर रहे हैं। हमने वो जो पाकिस्तान में और यहाँ पे अपनी इज्जत को, अपने सर के ताज को ऊंचा करने के लिए हम जो भी वायलेशन, मैं खुद उसमें शामिल हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों को मैं लता रहा हूँ, हम वो वायलेशन कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो राजा साहब इससे जो इंतशार है वो दिन ब
1: शाह
0: दिन
1: साहब
0: फैल
1: आप
0: रहा है।
1: वजह फरमा रहे हैं, जो इंतशार है वो ज़्यादा फैलता जा रहा है। तो ज़ाहिर है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी होती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा होता है। तो हमें आगा नदीम साहब ने भी ज्वाइन किया है, तो आगा साहब से भी पूछने की कोशिश करेंगे। चौधरी शौकत साहब, जो बिज़नेस कम्युनिटी से इनका गहरा तल्लक है और इस पर वो अक्सर बात भी करते रहते हैं, सियासत से भी वो उनका ओढ़ना बिछोना भी है साथ साथ, उनसे भी बात करेंगे। आगा साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सियासत को आपने देखा, अपने फौज को देखा, यहाँ के हालात को देखा, यूरोप को देखा, दुनिया को देखा। हम लोग मुतालबात बहुत करते हैं, जो प्रैक्टिकली जमहूरी हमारे काम होते हैं वो हम खुद नहीं करते, हम जो है वो गुलामी की तरफ जाते हैं। जी आगा साहब, लगता है आगा साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। चलो शौकत साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
2: जी, आगा साहब भी
1: हेलो
2: बोल पड़े हैं।
1: आगा साहब,
2: जी
1: आवाज़
2: जी
1: आ रही
2: जी
1: है? मेरा सवाल आपको समझ आ
2: जी
1: गया है?
2: अब एक्चुअली मैं चुके, जब बात की कुछ वक्त में फोन में प्रॉब्लम थी, तो अभी आप फरमाइए।
1: आगा साहब, आपने सियासत में बड़ी कुर्बानियाँ दी और दुनिया को भी आपने देखा और अपनी जॉब को भी देखा, नौकरी को भी देखा, यहाँ के हालात को बहुत करीब से देखा। तो आगा साहब यहाँ देखा कि जितने भी गैर मुल्की सियासतदान हैं, मुतालबात तो बहुत करते हैं लेकिन काम वो करते हैं जो गुलामी वाले हैं।
2: बारा जी, वो एक मुहावरा है ना, जो चीज इंसान की फितर में शामिल हो जाए ना, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं आदत तब्दील हो जाती है, नेचर नहीं चेंज होती। तो अब जब जब जन्म गुट्टी में चीज गुलामी की आ जाए ना, तो उसको रफा करना जो ना, वो कुछ नामुमकिन सा होता है। गरचे बंदा बड़ी कोशिश भी कर लेना, तब भी उसमें जर्म्स ऐसे कायम रहते हैं। तो लिहाजा जो लोग इन चीजों से आदी हो चुके हैं, वो तो कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जी
1: आगा साहब, आपने देखा होगा कि यहाँ जमहूरी मुल्कों में, खासकर मैं डेनमार्क की बात करूंगा, यहाँ तो
2: जी जी
1: जमहूरियत से ही सारे काम होते हैं, जो मर्जी कर ले। कानून कायदा जो है वो जमहूरियत से ही बनता है, अगर आपका इत्तफाक है तो हर चीज़ में आप तब्दीली ला सकते हैं।
2: ठीक है जी ना। देखिए राजा साहब, जहां तक बात है ना कानून की पासदारी, ये यहाँ की, अब हम यहाँ डेनमार्क में आए हुए हैं, डेनमार्क की यहाँ की जो भी कानून है, जो भी हम चीज देख रहे हैं, बहरहाल हमें तो उन चीजों की इतनी समझ नहीं आई जितनी कि आज के नौजवानों को है, क्योंकि वो यही पले बड़े, यही उन्होंने तालीम हासिल की, यहाँ के कानूनों से ज्यादा वाकफियत रखते हैं। हम अभी भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके कि हम इनके तमाम कानूनों को पढ़ सकें, देख सके। लिहाजा अब ये हमारे नौजवानों की ये जिम्मेदारी है कि वो इन चीजों को लेके आगे चले, क्योंकि यहाँ जो भी अमल होता है उसमें डेमोक्रेटिकली लॉ के मुताबिक चलते हैं। यहाँ कोई फेवरिज्म की बात मेरा नहीं जेन मानता कि कोई यानी

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: जज्बात से नहीं खेलना
1: पैसों से
0: चाहिए,
1: ले लेते हैं
0: नहीं खेलना।
1: जी,
0: बहुत शुक्रिया चौधरी
1: नहीं
0: साहब।
1: खेलना
0: शाकर साहब
1: चाहिए
0: आप क्या कहेंगे?
1: जी। बहुत शुक्रिया आपकी इस महफिल का, आप क्योंकि आप इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो हम सब ने जैसे कि मुश्तरका तौर पर जानी मछली, हम सब का एक ही ख्याल है कि इसे दिल आजारी हुई है, बड़ी बुरी तरीके से दिल आजारी हुई है और असमझे पाकिस्तान को बाहर से के इदारे के, क्योंकि हम हमारे सर सर का ताज है, वो बहुत बड़ा इदारा है और पाकिस्तान की सालमियत उनके कंधों के ऊपर है, उसका उसके लिए वो करदार अदा कर रहे हैं, जिम्मेदारियां दिन दिन रात देते हैं, 24 आवर देते हैं। यहाँ तक कि राजा साहब जो रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद भी वो ऑन कॉल रेडी रहते हैं, रेडी टू गो। तो ऐसे लोगों की जो दिल आजारी हुई है, यहाँ अभी जो आपने खत पढ़ के सुनाया, उस खत के अंदर एक एक लफ्ज बयान कर रहा है कि अबाओ दास से लेके पुरानों से लेके सास और जो है ससुर जो है वो भी, वालिद जो है वो भी, खामन जो है वो भी, भाई भी, और मेरा मौजूदा बेटा भी इस वक्त जो इस वक्त करदार अदा कर रहे हैं आर्म फोर्सेस के अंदर, हम सब की मिलती जुलती कहानी है। अगर आप एक दूसरे से पूछना शुरू करें तो हम सब की ये कहानियां हमारे घरों के अंदर अबाओ दास शहीद भी हो चुके हैं, आज इस वक्त में हमारे घरों के अंदर जो परफॉर्म करके वापस आते हैं, गाजी बन के वापस आते हैं, जख्मी आते हैं, डिसेबल हो जाते हैं, वो सारे हमारे खानदान का हिस्सा है। तो ये सारी दिलदारी जो जो मुश्तरका तौर पर उन्होंने कर दी, ये बहुत बड़ा जुल्म उन्होंने कर दिया। मैं यहाँ तक चाहूंगा कि अगर हमारी आवाज कहीं तक पहुंच जाए, अफवाज पाकिस्तान को भी हेडक्वार्टर GHQ के अंदर एक मीटिंग कॉल करनी ही चाहिए, वहां फजल रहमान साहब को भी बुला लिया जाए, बाकी तमाम जो सियासतदान बड़े जो जो स्टेक होल्डर बड़े जो हेड ऑफ द पार्टीज हैं उनको बुला के बिठा के वहां पूछा जाए कि भाई ये रवैया जो है आखिर उभरा क्यों, आया कहाँ से, और इसका फायदा ये होगा कि फजल रहमान साहब की तरबियत हो जाएगी, उनसे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, बाकी जो वहां जाएंगे उनको भी ये पैगाम मिलेगा कि हमें फौज पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में आके इस चीज का जवाब देना पड़ रहा है, हमें आइंदा इस चीज की बड़ी एहतियात करनी है,
0: एहतियात करनी चाहिए। या शाह साहब आप क्या फरमाएंगे?
2: जी रसद, चूंकि मुझे एक जनाजे के लिए जाना,
0: मुझे पता है शाह साहब एहसास है मुझे चीज का।
2: जी जी, तो मैं मुख्तसर ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग सब्ज हिलाली परचम में लिपट कर जो वापस आते हैं, उनके जूते के ऊपर जो मिट्टी लगी होती है ना, हम लोगों में से कोई भी उसके काबिल भी नहीं, उसके मुकाबले का भी नहीं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे वतन को अपनी हिफाजत में रखे और जो लोग उसकी हिफाजत करते हैं अल्लाह पाक उनको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन
3: आमीन
0: आमीन आमीन। आगा साहब आखिर में आप क्या फरमाएंगे?
4: मैं बस ये बात अर्ज करना चाह रहा हूँ राजा साहब के तमाम दोस्तों साथियों ने अपने ख्याल का इजहार किया और मौलाना के इन लफ्जों की बाकायदा मजम्मत की, मैं भी उसमें शामिल हूँ, लेकिन मुझे वैसी एक सोच आती है जैसे कि ये कहा जाता है कि संदूर टू की भी तैयारी है, तो क्या ये किसी के इशारे पे तो नहीं ऐसी कोई बात की गई? ये
2: सही है, सही है।
4: प्लीज इस बात को जेहन में रखिएगा क्योंकि हमारा जो असली दुश्मन इंडिया है वो बार बार संदूर दो का, क्योंकि उनकी जो हजीमत हुई है पहला संदूर वन करके, वो दोबारा उसकी तैयारी में है, तो क्या कहीं हमारे अजली दुश्मनों को हमारे घर में ही सही कुछ लोग ऐसे तो नहीं मिल गए जो कि संदूर टू के लिए यानी कि सबको तैयार कर रहे हैं? तो प्लीज निगाह रखिएगा, सोचिएगा। मेरी सोच ऐसी आ रही है जो मौलाना ने इस मुकाम पे इस हवाले में जो बात की है वो इंतहाई काबिल नफरत काबिल मजम्मत बात है, बस मैं यही कहूंगा।
0: बहुत शुक्रिया जी। मुजीबुर रहमान कुरैशी साहब,
5: देखें जी आप तमाम भाइयों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और सबसे ज्यादा तकलीफ यही है, हम सबको इसकी दिल आजारी हुई है, हमारे शहीदों की फैमिलीज को दिल आजारी हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मौलाना साहब के इस बयान का ISPR जो है वो इस वक्त नोटिस लें, नोटिस लें और नोटिस लेके और इसको पूछा जाए कि मौलाना साहब आपने ये बयान क्यों दिया, आपने ये बयान आपकी किसी वजह से दिया है या आपसे कोई ऐसी बात हो गई है, ताकि उनकी वजाहत आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ISPR को इस पे एक्शन लेना चाहिए।
0: आप सब जी शाह साहब आखिर में आप मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करें, आखिरी अल्फाज भी कहें।
6: जी मैं सब मेहमानों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि एक एक सेकंड के लिए आप ये बताएं कि कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन की हैसियत से हम राजा वकूर अफसर को ये इख्तियार देते हैं, खुसूसी तौर पर मैं तो कहूँगा कि ये हमारे सबके नाम लेके हमारी पार्टी हो गए یہ کنڈم کریں

0: चीज को, और आपने जितना भी इनका मीडिया है या इनका जितने भी चैनल्स हैं, और इवन पाकिस्तान एम्बेसी डेनमार्क को भी और फॉरेन मिनिस्ट्री को भी, ये जो चीज है ये हमारी तरफ से जो भी ये लिखेंगे वो उनकी कापियां भी आप लोगों को दी जाए, और वहां पे ये लाजमन हो कि हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं और शुदा की दिल से इज्जत और एहतराम करते हैं। क्या कहते हैं आप सब?
1: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क की तरफ से इनको इजाजत।
2: शाह साहब आपने बिल्कुल वजह फरमाया, तमाम दोस्त साथी जितने भी यहाँ पे जो बोल रहे हैं या जो सुन रहे हैं, जितने भी नाजरीन है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि ये बात जो इन्होंने कही है हम उसकी मुज़म्मत करते हैं, और ये बकायदा राजा साहब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बकायदा ऐसे पेपर की शक्ल में ला के अम्बेसी में भी फॉरवर्ड करें।
0: जी चौधरी शौकत साहब आप क्या कहते हैं?
3: बिल्कुल बिल्कुल शाह साहब मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, जो है ना बिल्कुल राजा साहब को हक है, और जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल हम सब इत्तेफाक करते हैं इस बात।
0: जी शाकर साहब
4: जी बिल्कुल 100%, और दिल बहुत खुश हुआ आपने बहुत जबरदस्त एक तजवीज पेश की, ये तारीख का हिस्सा भी बन जाएगी, मैं भी इसकी बिल्कुल आपके साथ।
5: बहुत शुक्रिया शाकर साहब, शाह साहब, तुकीर शाह साहब, मुजीब साहब, आगा साहब, रहमतुल्ला बेग साहब, चौधरी शकुत साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, चूंकि आप सब ने कहीं इस वक्त जाना भी है, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज
0: जिंदाबाद।
5: समय नाजरीन ये थे हमारे मेहमान जिनकी आपने बातें सुनी। समय नाजरीन हर आदमी को अपनी राय हक है देने का, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, एक ही एक बहुत बड़ा इशू था, चूँकि ये लोकल हम रहते हैं, लेकिन चूँकि अपने वतन से मोहब्बत होती है, शुहदा से मोहब्बत होती है, हर घर में शुहदा की बातें होती हैं, हर घर में कोई किसी ना किसी फैमिली में कोई शहीद होता है, तो मैं समझता हूँ सियासतदानों को बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अगर गुस्सा होता है किसी बात पे, इख्तलाफात है, तो वो आपके पास क्यों पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट में बात करें, सेनेट में जाकर बात करें, और जलसे जुलूसों में बात करना और एक क्राउड को देखकर जो है वो अपने आवाज़ बाख्ता हो जाना, ये कोई एक अच्छी मेच्योरनेस नहीं है। मौलाना साहब ने बहुत बड़ी अपने तौर पे, हो सकता है वो बड़े प्राउड हैं, वो माफ़ी भी ना मांगेंगे, वो मसाले भी देंगे कि ख्वाजा आसफ ने ये बात नहीं कही थी, इमरान खान ने नहीं कही फ़ौज के बारे में बात, नवाज शरीफ फ़ौज के बारे में नहीं बात करता था, वो मसाले देने के लिए जिस तरह वकील जाते हैं ना अदालतों में, कातिल की भी हमायत में वो बोल पड़ते हैं, दलाइल देना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो सही बात है वो सही बात है। देखिए ना, जिस बीबी ने अपने, वो उनका तल्लक साहब का पीटीआई से था, उसकी एमपीए भी रह चुकी, उनका जो खत है उन्होंने सब कुछ बता दिया, और मैं अपनी बात इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं इस वक्त प्रोग्राम को जो है वो होस्ट कर रहा हूँ। तो समय नाज़रीन अगले प्रोग्राम में अब बहुत सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर करनी है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
6: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है। 19/7/2026 का प्रोग्राम है। डेनमार्क में इस वक्त 12:08 हुआ चाहते हैं और पाकिस्तान में इस वक्त 2:08 हुआ चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक मीडिया का एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत जो कारोबार के लिहाज से भी अपना काम करते हैं, लेकिन वो ब्यूरो चीफ भी हैं और अपनी अखबार, अपने टीवी के लिए जो खबरें अखबार उसके लिए ये बड़ा काम करते हैं, और गुजरात में एक ही हैं जो खुलकर बोलते भी हैं, लिखते भी हैं और आप लोगों के मसाइल को एज ए मीडिया उजागर भी करते हैं। बाकी किसी से रजामंद होना, मानना या ना मानना और बात है, लेकिन एक साफी होने की हैसियत से अपना काम जो है हर आदमी को करना चाहिए और माइंड भी नहीं करना चाहिए। अमर कुरैशी साहब, हम आपको कोपेनहेगन की फजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी जी, वालेकुम साहब, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सर, थैंक यू।
1: अमर साहब, आपकी खबरें खबरों में पढ़ते रहते हैं, खबरों के साथ खबरें चलती रहती हैं, लेकिन आपके शहर में एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें ढोल बाजे घोड़े और मार्की में प्रोग्राम हुआ और बड़ी कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की, आप क्या कहेंगे?
2: जी राय साहब, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे प्रोग्राम में ऑनलाइन लिया। सर मैं सबसे पहले एक कहूंगा, कल एक प्रोग्राम हुआ नून लीग का के इलेक्शन के हवाले से राजा सदीक साहब का, तो इसमें मैं यह कहूंगा कि कल जो यहाँ प्रोग्राम हुआ उसमें बड़े बड़े लीडर तो आए हैं, जो गुजर खान से जिनका एक नाम है, जिनका एक पहचान है, जो नून लीग से काफी अरसे से MNA की टिकट पे इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और यहाँ के जिले नाजिम भी रहे हैं और नून लीग से जनाब MNA मुंतखब होकर पार्लियामेंट सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इस हवाले से मैं कहूँगा वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसके हवाले से दरार पड़ गई है, जिसकी वजह से जनाब लीग को बहुत ज्यादा खदशा है कि नून लीग को यहाँ का आज का प्रोग्राम जो है शहीद सराफ साहब के घर में रखा गया है उसमें राजा जवेद खिलाफ करेंगे, वो एक अलग प्रोग्राम होगा, कल के प्रोग्राम में वो नजर नहीं आए, जिसकी वजह से अक्सर लोगों का कहना है कि ये जो है अक्सर बाहर से जो मलक इब्रार साहब है, मलक इफ्तार साहब है और निबासी साहब और जो भी है पिंडी से बहुत बड़ा काफिला ले अक्सर जलसे में शामिल हो सके, तो जबकि अगर राजा जवेद इखलास साहब यहाँ होते और ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे होते तो फिर मेरे अंदाजे से कि ये बहुत बड़ा इस तारीखी जलसा होता और जिसमें नून लीग जैसा पहले भी यहाँ कामयाब रही एक होने की वजह से, मगर अब बहुत ज्यादा नुकसान है नून लीग को कि दड़ाबंदी का शिकार हो गई है ये, तो आज का जो आज भी जो है प्रोग्राम एक शहीद सराफ साहब के घर रखा गया है जवेद इखलास साहब ने, वो 5:00 है, उसमें भी इन्होंने कहा है कि हो सकता है आज मरियम औरंगजेब साहब मौजूद हो इस जलसे में, पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ना कोई शोर शराबा ना कुछ ना कुछ, तो बाकी जो है इसके मैं नून लीग को इस वजह से हवाले से शहर में काफी चमकुआ के बहुत ज्यादा नुकसान भारी नुकसान हो गया है, क्योंकि ये आपस की रंजिश आपस की उसकी वजह से हमेशा जिस भी पार्टी में आपस एक इलाके में पार्टी में किसी में जब आपस में रंजिशें होती हैं, धड़ेबंदियां होती है, तो वो उसका नुकसान पार्टी को होता है। सर
1: कुरैशी साहब, भट्टी साहब के और राजा साहब के तालुकात बड़े अच्छे हैं, मलक इब्रार साहब आ जाते हैं पिंडी से, हालांकि गुजर खान के लोगों से ताल्लुक है, पिंडी ठीक है पार्टी के लिहाज से सबको आना चाहिए, राजा सदीक साहब हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, उनके जो ज्यादा तालुकात हैं वो राजा जावेद इखलास साहब के साथ, उससे पहले भी उन्होंने अपने घर में प्रोग्राम किया, लेकिन भट्टी साहब का उनको ना बुलाना, राजी ना करना, और जिस तरह आपने निशानदेही की एज ए मीडिया कि आपस में ये लड़ते रहते हैं पर्सनैलिटी क्लैश में, तो फायदा जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब लेंगे, लेकिन वो भी डुडयाल वालों की तारीफ करते हैं, गुजर खान वालों की तारीफ कम ही लोग करते हैं।
2: सर ऐसे ही है, देखिए आज से पहले 2002 के इलेक्शन से पहले नून लीग का गढ़ कहलाया जाता था ये गुजर खान, इसमें देख लें आप कभी भी जो है मुकामी इलाके राजा परवेज अशरफ साहब थे कभी भी वो मुंतखब नहीं हो सके, इस के जनाब अली जबकि एक इलेक्शन हुआ था जिसमें चौधरी रियाज साहब दोनों सीटों से नून लीग से जीत गए थे, तो राजा नादर परवेज साहब को फैसलाबाद से लाके गुजर खान से लड़ाया गया तो वो भी जीत गए थे, तो नून लीग का गढ़ कहलाया जाता था, मगर उसके बाद जब से ये रंजिशें हुई हैं उसके हवाले से जो है ना जब से नून लीग को यहाँ काफी नुकसान हो रहा है, मैंने आज से 11 साल पहले की खबर लगाई थी कि आपस में धड़बंदियां जो पार्टी को नुकसान की, वो आज भी इसी तरह जनाब अली वो मौजूद है कि आपस में रंजिश है, आपस में पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, एक दूसरे के खिलाफ वो, तो इससे पार्टी को नुकसान होता है राय साहब। आप देखें आप आज से जनाब अली अब इलेक्शन आ रहा है जम्मू कश्मीर का, तो इसमें देखिये बाहर से बड़े लीडरान आ जाते हैं, अब मुकामी लीडरान मौजूद ना हो तो पार्टी पे बड़ा असर पड़ता है, ये कारकुनों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो इस तरह जवेद इखलास साहब भी एक उनका सियासत में एक नाम है, एक उनकी पहचान है, उनके अपना एक हल्का बाब है, पर कल काफी देखा गया कि उनके जो करीबी थे वो कल जलसे में वहां मौजूद नहीं थे। तो जिसकी वजह से आज उन्होंने एक जलसा रखा हुआ है शाह सराफ की रहायशगाह पर। देखो अब इसमें क्या होता है या कितने लोग इकट्ठे होते हैं या क्या ये अपनी पावर शो कर पाएंगे राय जवेद अखलास साहब या अपना एक जनाब वो अलका जो इनका है वो वहां पे मौजूद होगा ये फिर आज शाम को देख के बताया जा सकता है।
1: कुरैशी साहब नून लीग का मीडिया सेल नजर नहीं आया सामने, जो हो सकता है आपने देखा हो लेकिन उस तरह नमाया नजर नहीं आया, साफी भी नमाया जो है वो नजर नहीं आए, जो बड़े बड़े नाम हैं आपको भी हमने नहीं देखा। डेफिनेट आप मौजूद होंगे लेकिन कवर करने वालों ने अपना अपना तरीकाकार होता है। तो कुरैशी साहब नून लीग में जावेद इखलास साहब का बड़ा नाम है, भट्टी साहब वहां मौजूद थे, राजा जावेद इखलास साहब का बड़ा पोस्टर बैनर लगाया हुआ था लेकिन भट्टी साहब उस पूरे प्रोग्राम में खुश नजर नहीं आ रहे थे।
2: सर भट्टी साहब का हल्का पीपी नो है सर, उनका इलाका लगता है मंदरा वगैरह जातली वगैरह यहाँ के, वो अक्सर उनका मीडिया से जो उनका अपना तल्लक वल्का वो अपने इलाके के साथ है। ये जो इलाका है इसमें जो है ज्यादा नून लीग का जो है जावेद इखलास साहब का वो लीड करते हैं और वो जब भी कोई प्रोग्राम होता है पटवार प्रेस क्लब होता है या मुकामी साफी उनसे मुकायदा रबते में रहते हैं। तो कल वैसे किसी ने इस तरह हमसे रबता नहीं किया कि आज जलसा या प्रोग्राम में आओ, एक मैसेज जरूर चला था पर मैसेज का ही होता है कि वो एंड टाइम पे चला है, वो कोई देख पाया है कोई नहीं देख पाया कोई, वो इस वजह से काफी ज्यादा जो है ना वहां पर जो है ना साफियों की तादाद बहुत कम थी और कवरेज के लिहाज से भी जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना वहां पे वो दिखाई दिया क्योंकि हम आज के अखबार भी में भी कोई इतनी हालांकि सीनियर मिनिस्टर थी वो इतनी लीड वगैरह या इतनी खबरें वगैरह भी नहीं लग पाई है उस हवाले से जिस तरह एक मीडिया का हक होता है या जिस तरह एक मीडिया को वहाँ पे कवरेज होती है वो देनी चाहिए थी।
1: कुरैश साहब आखिरी सवाल है, काफी मसरूफ है आप कि मरियम औरंगजेब साहब तशरीफ लाई, बहुत करीब है वजीर आला पंजाब के मरियम शाह शरीफ के, इसी तरह मलिक इब्रार साहब आए वो भी बड़े करीब हैं, इसी तरह जावेद अपना अब्बासी साहब जो अनीफ अब्बासी साहब तशरीफ लाए या दूसरे लीडरान जो है तशरीफ लाए, भट्टी साहब भी पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, तो कुरैशी साहब इनके मुंह से पुठवार यूनिवर्सिटी का और जिला बनने का नाम क्यों नहीं निकलता, इनकी जबानें बिल्कुल कंग क्यों हो जाती हैं, बंद हो जाती है, गूंगे हो जाते हैं ये?
2: जी राजा ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, ये आज से नहीं सर ये शुरू से ये गुजर खान का, देखिए गुजर खान में ना अभी तक हमारे इलाके के प्राइम मिनिस्टर तक रहे हैं, इससे बड़ी क्या ओहदा होगा हमारे लिए, ठीक है वो देख ले अभी तक गुजर खान में हमारे ना कोई अच्छा हॉस्पिटल बन सका ना कोई यूनिवर्सिटी बन सकी ना कोई ऐसा कोई हुआ कोई तबी सहूलियात के हवाले से भी, अभी भी आज का ये है कि गुजर खान में कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा एक्सीडेंट कोई होता है उसे फौरन ये कह देते हैं रेफर पिंडी कर देते हैं जो काफी ज्यादा नुकसान होता है, रास्ते में कई मरीज जो है वो दम तोड़ जाते हैं। तो इस तरह के राय साहब ये हमारे लिए बड़ा लम्बा फिक्री है कि हमारे से मुंतखब होते हैं पर इस पर तवज्जो को नहीं देता। आज गुजर खान में हर महकमा वापटा का देख लें आप, बल्दिया का देख लें आप, हॉस्पिटल का देख लें आप, कोई भी देख लें कोई अपने जिसका एक ड्यूटी होती है ऐसे वो कोई भी सर अंजाम नहीं दे रहा है कोई भी नहीं कह, इसकी ना ये है कि आपस में रंजिशें आपस में, हालांकि देखें अगर राजा परवेज अशरफ मुंतखब हुए MNA वो गुजर खान के लिए हुए हैं, वो उनका एक अपना बहुत बड़ा कद है अपने बहुत बड़ी पहचान है, वो अगर चाहे तो वो सूबाई मिनिस्टर को भी कह के वो वफाक पे भी कह के गुजर खान के लिए बहुत से काम कर सकते हैं। वो राजा शौकत अजीज भट्टी साहब ये तीसरी चौथी दफा MPA बन रहे हैं, इनका भी एक बड़ा पहचान है अपने नाम है, अगर राजा शौकत भट्टी साहब भी पंजाब असेंबली में वो आवाजें भी पहले भी उठाते हैं अभी भी उठाई उन्होंने पिछले दिनों बाद, पर वो अमली काम कोई नहीं होता है सर, हॉस्पिटल के लिए उसी तरह कोई तबी सहूलियात नहीं है ना कोई मेडिकल कॉलेज है ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कुछ है, जिसकी वजह से गुजर खान को के अवाम भी बहुत ज्यादा इससे मायूस जो है ना वो बहुत ज्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं।
1: कुरैशी साहब चलते चलते जावेद अपना जावेद कौसर साहब भी कोई बरी उल्जिमा नहीं है, वो मासूमियत से जवाब बयान देते रहते हैं हालांकि वो अपोजिशन में पार्लियामेंट पंजाब असेंबली में बैठे हुए हैं, लीडरान के आपने नाम लिए राजा परवेज अशरफ साहब भट्टी साहब राजा जावेद इखलास साहब और इसी तरह बड़े नाम है जो है बाकी नाम भी है जो तहसील में या गुजर खान में या जिला में उनका नाम है लेकिन जब जिले की बात होती है तो ये सारे भाई भाई है, वैसे सारे इनके आपस में इख्तलाफात है।
2: जी सर सियासत में जाओ तो उसमें तो सबके इख्तलाफात हो रहे हैं, वैसे तो सब ये देखें किसी भी पार्टी में किसी शादी फंक्शन में किसी उसमें देखिए आप एक दूसरे के साथ हंसते हैं बातें अच्छी तो फ्रेंकली करते हैं आपस में इनके अच्छे तालुकात हैं अच्छे मुरासे में इनके आपस के घरेलू भी मुरासम होते हैं इसमें उन्हीं सियासत के उसमें आते हैं तो फिर तो जाहिर है सियासत सियासत होती है सर। तो
1: खुश होते हैं देखिए हमने किस तरह इनको बेवकूफ बनाया हुआ है, लोग फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं गलों में हार डाल रहे हैं तो ये कहीं वलीमे और बाराते लूटने वाले तो नहीं सियासतदान
2: सर? बस आप राय साहब ये मैं आपको आप मेरे से सीनियर है आपको माशाल्लाह इस चीज का ज्यादा इल्म होगा तो आप माशाल्लाह वो बाकी ये है कि बदुआ करें गुजर खान के लिए कि अल्लाह कोई अच्छा यहाँ पे कोई मुंतखब हो कोई अच्छा गुजर खान
1: कुरैशी साहब चलते चलते ये जो आप
2: परेशान हाल है
1: अभी जो काम हो रहा है जो नीचे बन रहे हैं बाईपास बन रहे हैं तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं नाजरीन को सामाइन को।
2: सर ये कोई सियासी नहीं है ये हमारे गुजर खान के एक है सुबोध ब्रिगेडियर इजाज कमर साहब उनका तल्लक मिसेस से है, वो एनएचए में इस टाइम इस वो सर अंजाम दे रहे हैं अपनी ड्यूटी, तो ये उनका उनका जो है ना ये मंसूबा है सर, ये उनको बकौल उनके उन्होंने कहा था कि मैं गुजर खान के लिए वो काम करूंगा जो किसी ने किया, और ये बहुत बड़ा मंसूबा है सर, ये वक्ती तो अवाम को परेशानी है इस मंसूबे से, बहुत ज्यादा ज्यादा लोग डिस्टर्ब हैं लोग ज्यादा, मगर ये कुछ दिन का डिस्टर्बिंग है कुछ दिन का वो होगा, मगर आने वाले वक्त में ये बहुत बड़ा मनसूबा, जो आए दिन रोड हादसा होते थे जीटी रोड पर, मोटरसाइकिल बाइक वगैरह कोई रॉन्ग पार्किंग करता था, कोई रॉन्ग क्रॉसिंग करता था, कोई इससे बहुत ज्यादा नुकसान, पर ये गुजर खान की तारीख में ये बहुत बड़ा मनसूबा है सर, जो ब्रिगेडियर जाज कमर साहब ने जो है ना ये मंजूर कराया, और वो इसको जो है ना लीड कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये गुजर खान के लिए बहुत बड़ा मनसूबा है, और इससे गुजर खान को अवाम बहुत मुस्तफीद हो,
1: मीडिया को इस पर नजर रखनी चाहिए। तो ये क्या चर्च वाकई जो सड़क किनारे था उसको गिरा दिया गया है इजाजत से?
2: जी बिल्कुल सर, बना उसको गिरा दिया गया है, क्योंकि वो था वहां पे इंटरपास होगा, वो इसका क्या नाम दो इंटरपास होंगे, जो एक बड़की मोड़ से लेके टेक्निकल कॉलेज तक होगा, दूसरा बल्दिया गुजर खान से लेके गुलियाने मोड़ तक होगा, तो इस मद में वो आया था, तो उन्होंने जो है ना वो तोड़ दिया, बल्दिया की काफी जगहें थी, काफी यहाँ पे पार्क बने हुए थे, काफी वॉक एरिया था, वो सब जो है तोड़ दिया गया है, तो इस वाले से जो है ना एक बड़ा अच्छा, ये बहुत अच्छा मंसूबा है गुजर खान के लिए।
1: कुरैशी साहब, चलते चलते आप अपने लोगों को क्या पैगाम देंगे? आपको बहुत सारे लोग दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर सुन रहे हैं।
2: सर बस मैं एक यही पैगाम दूंगा कि बस हर इंसान वो दुआ करे कि बस अपने लिए कि अल्लाह अच्छे हुक्मरान दे, अच्छे अच्छे वो करे जो अवाम के दर्द तकलीफ को सहे, को देखे ना आज जब अगर आज बिजली महंगी हो रही है, जो मुंतखब हो जाते हैं मैंने एमपी, उनको क्या लगे सर बिजली महंगी है बिजली सस्ती है, उनको तो फ्री हर चीज सरकार दे रही है, जो एक अमीर है उसको भी कोई गर्ज नहीं है कि टमाटर भी अगर आज 250 रुपए किलो बिक रहे हैं तो बेशक उसे कोई परवाह नहीं है, टमाटर 50 रुपए किलो भी उसे कोई परवाह नहीं, गरीब अवाम का आज ये हाल है कि गरीब अवाम बिल्कुल बेयारो मददगार, और आज बिजली के बिल गैस के बिल उसकी वजह से आज हर बंदा जो है परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, और गुजर खान के लिए मैं खास तौर पे अपने अवाम के लिए ये जरूर उनकी आवाज है कि ना गुजर खान में गैस का है, ना पानी का है, ना बिजली का है, ना कुछ भी है, कोई भी यहाँ पे कोई जो है ना कोई इंसान जो है ना उससे सहूलत उसे मुकम्मल जो है वो नहीं दस्तयाब हो रही है, हर अवाम हर दुकानदार हर बच्चा हर गली उसमें परेशान है, गुजर खान की यहाँ लोड शेडिंग का ये साहब है, गैस की लोड शेडिंग दिन में 2-2 घंटे आती है, वो भी 4-4, 5-5 घंटे बाद, बिजली का वो है कि बिजली खराब हो गई तो ठीक करने वाला कोई नहीं है, बिजली के और पर पानी का ये है कि इस टाइम गर्मी है, पानी के लिए लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं सर।
1: अमर कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती मालूमात हमारे समाज नाज़रीन के साथ शेयर की, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
2: जी थैंक यू राज साहब, थैंक यू सर, थैंक यू।
1: सामान्य नाजरीन, ये थे अमर कुरैशी साहब जो के ब्यूरो चीफ भी हैं और हेड कर रहे हैं खबरें को, टीवी पे भी ये काम करते हैं, तो हमने जो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे साथ उन्होंने शेयर की हमने आपके साथ शेयर की।
3: सामान्य कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: प्रॉब्लम है, ये बताया कि कल वहां पे बसों को गुजरने की जगह नहीं थी, लोग सड़कों के दरमियान में पैदल चल रहे थे। तो इस तरीके से जो पार्किंग है, देखें आपको कम से कम ये देखना पड़ चाहिए कि इस मुल्क ने हमें फैसिलिटी दी है, हमें आजादी दी है, तो कम से कम हम यहाँ से जो गुजर रहे हैं लोग, खुदा ना खासा एम्बुलेंस गुजर रही है, कोई फल गुजर रही है, कोई चीज गुजर रही है बस वगैरह, उसके रास्ते में हम ना आए। यहाँ पे वो ये समझते हैं कि हमने जो ये लीजिंग पे गाड़ियां ली हुई है इतनी इतनी बड़ी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शो है, हम लोग बहुत बड़े कोंगली फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि बेशक मेरी बातों को लोगों को बुरा लगे, मेरे खुद वीजे पे लिखा हुआ है आबा स्टिल्स, मैं जब यहाँ डेनमार्क में आया हूँ मजदूर की हैसियत से मुझे वीजा मिला, उसके बाद यह अलग बात है पढ़ लिख के आदमी कुछ बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन वीजे के ऊपर तो आपके लिखा हुआ है ना कि आपको आबा स्टिल्स दिया जाता है, काम करिए इजाजत दी जाती है। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा इस कम्युनिटी के अंदर, और मैं ये यंगस्टर्स को वाजिया ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने लिए बहुत बड़ी कुआं खंडक खोल रहे हैं और जो खुद चुकी है, और इसके अंदर आप पानी छोड़ने की बात है, आपको ये यकीन नहीं होगा ये कितनी गहरी है। यहाँ पे अदनान इस चीज पे मुझे सवाल भी कर सकता है, बात भी कर सकता है, और अगर ये एग्री नहीं करता, यहाँ इन्होंने जो नए लॉ फोर्स ने 2023 और 24 में बनाए हैं वो इतने संगीन, इतने घिनौने हैं कि उसकी जद में हम कोई भी आ जाए तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आप ये देखें कि ये जो अभी खियोस्को का वाकया हुआ है, ये सिर्फ फ्यून और शीलैंड पे नहीं हुआ, ये हर जगह पे हो रहा है, और इन्होंने ये काफी अरसा तक इन्होंने ये चीजें जारी रखनी है। जब इन्होंने इजाजत दी हुई है कि अगर आपके पास बाउल अकेल के अंदर आप फेल हो जाए, तो वहां पे जोश के अगर आप जगह है सोने की और वहां पे आप खुदा ना खासा आग लग जाए, कोई अच्छी चीज हो जाए, तो वहां पे एग्जिट डोर यानी कि एक्स्ट्रा दरवाजा है कि आप पीछे से निकल सकते हैं, तो उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके मसाइल इसलिए बड़े हैं कि जो है जो ईस्टर्न गेट में वाकया हुआ था क्रोस के अंदर, इससे मसाइल जो है वो काफी सख्त हो गया, कानून सख्त हो गए हैं, और अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो रात को अपने जो मिल आबाड़ा हुई जो उनके लिए पास काम कर रहे हैं, तो उसको वहां पे फल कराए, उसकी इजाजत नामा ले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गैर कानूनी काम करने पे अदनान तुम इस पर क्या कहते हो?
1: साहब देखिए सर, सॉरी साहब, इसका तो भी दो राय नहीं है। किसी को गलत काम नहीं करना चाहिए और गलत काम से गलत नतीजा ही होता है। और आपकी बात सही है कि यहाँ पे जो जो जो 3 2 3 सालों से कानून आ रहे हैं वो सबसे सख्ती आ रहे हैं। और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कल मैं लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप देखें कि हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, कोई ना कोई रीजन तो है ना कि इस सोसाइटी ने ये कल्चर बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं मुझे पता है लोग मेरी बात से नाराज होंगे, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को ये भी समझना चाहिए कि ये जो कानून इस मुल्क में बने हुए हैं यही चीज हम चाहते हैं कि अपने मुल्कों में हो, जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि ये इस्लामी कानून है। जब आप लोगों को वो चीजें यहाँ पे मिल रही हैं तो आप वो चीजें यहाँ पे फॉलो ही नहीं करेंगे तो फिर आप क्या सस्पेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं जनरेशन है, जहाँ हमारा लिंक है, हमारी फैमिली है, हमारी बैकग्राउंड है, जहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं, हमारी वाइफ जिन सेकंड जनरेशन जहाँ पे मैंने शादी पास करनी की हुई है, सब कुछ की हुई है, हम वहां जब जाते हैं तो हम यही चाहते हैं कि ये चीज वहां पे आए जो हम यहाँ पे है। क्योंकि जब हम यहाँ पे ही खुद उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे और उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हम अपने मुल्क में कैसे लेके जाएंगे।
2: अदनान, अभी शाह साहब आपसे भी सवाल है कि अभी जो सोशल डेमोक्रेट और पीपल्स पार्टी का आपस में, पीपल्स पार्टी डेनमार्क की पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो जबरदस्त टक्कर ले रहे हैं, ये खतरे से खाली नहीं है, ये एक जो है वो नील्स जेस्परसन का ख्याल है, आप क्या कहेंगे दोनों?
0: जी मैं तो ये कहूंगा कि ये एक सियासी प्रोपगंडा है कि ये दोनों पार्टियों के मंशूर बिल्कुल एक हैं, मिलते जुलते हैं, और ये क्योंकि जो सोशल डेमोक्रेट है ये अपने जो

0: लेबर लॉज हैं जो इनके लेबर मंशूर हैं, उससे ये कंप्लीटली कुछ पिछले 15-20 साल से ये हट के काम कर रही हैं। और ये जो इनका जो मंशूर है ये टॉप लेवल का है, सिर्फ के भाई पावर हमें चाहिए और हम पावर में रहना चाहते हैं, हमारा जो बेसिक मंशूर था वो खड्डे में जाए उसकी हमें परवाह नहीं है। जो हम लेबर पार्टी होती थी अब हम जो है वो बस वोट हासिल करने के लिए है। तो यही चीज है डैन फोल्के पार्टी, डैन फोल्के पार्टी भी तो सोशल डेमोक्रेट में से उससे इख्तलाफ करके आगे आई थी, लेकिन फिर सोशल डेमोक्रेट के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना अगर ये लोग दूसरी ऐसी राष्ट्रीय पार्टी बनाते हैं तो हम अपनी पार्टी को ही टॉप पे कब्जा करके तो इसको तब्दील कर ले। तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों पार्टी जो है इनके टॉप लीडर जो है इनमें इन इनकी राय एक है, लेकिन जो बोन है जो नीचे जो लोग हैं उनमें इख्तलाफ पाया जाता है, वो चाहते हैं कि डेनमार्क के जो उलेनिंग लॉज हैं दूसरे उनको माइल्ड किया जाए।
1: जी अदनान आप क्या कहते हैं?
2: पॉलिसी मैं तो यही कहूंगा कि ये दोनों पार्टी की जो इसको कर देना ऐसे लग रहा है जैसे एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही एक एक स्टेटमेंट आती है और इस वक्त तो पता नहीं इस वक्त तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि बंदा क्या किए, क्योंकि
1: मतलब है कि नफरत के वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं।
2: सर सब देखिए बात ये है कि इसके बैकग्राउंड का ये है कि 2015 थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि 2015 में जब ये जिले चौबीस में खड़ी थी ना इलेक्शन, तो पच्ची ने बहुत ज्यादा सीटें नहीं की और तकरीबन मेरे ख्याल से 33 सीटें ले गए थे। तो ये सेकंड बिगेस्ट पार्टी थी उस वक्त, और उस वक्त फिर इन्होंने स्ट्रेटजी अपनी बदली थी कि अब इनको कैसे ये वोट वापस लिए जाए, और उस वक्त से लेके आज तक इनकी पॉलिसी जो है ना वो सख्त से सख्ती हुई है, क्योंकि टेंस हॉल को पच्ची करीबन इनके वोट ले जाता था, उसके दौरान फिर टेनमर्क का मुखवाड़ा भी आ गया और पच्ची भी आ गई, मगर उनकी स्ट्रेटजी यही थी। अब ये दोबारा से वो कोशिश कर रही है कि जो जिनने 2016 में ना 2016-2017 में जो स्ट्रेटजी बनाई थी उस पे ये कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या बनता है लॉन्ग सेक्टर पे ये तो हमें अभी नहीं पता, क्योंकि अभी तो लोग वेकेशन पे है समर फेरियो पर, के बाद ही देखा जाएगा कि क्या है। और दूसरा ये है कि ये जो जो जो जो, जो स्टेटमेंट आ रही है ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, मगर इसके अंदर एक ही चीज हुई मैं कहूंगा जो मैंने पहले भी कही थी और जो जो, जो बात करते हैं लोग जो हमें टारगेट करते हैं कि हम इस बात को अपनी पार्टी में डिस्कशन कर सकते हैं, मगर इसका एक ही हाल है कि सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, सबको वन वॉइस बनना पड़ेगा, फिर ही इसका कोई नतीजा हो सकता है कि हम इस चीज को बदल सकें। हम इसमें पब्लिक खड़ी कर लेते हैं फेस्टिवल पे और इन जगहों पे, तो हम वैसे भी पब्लिक इकट्ठी कर सकते हैं, मसला बस ये है कि हम पब्लिक इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं होता, बस हिम्मत की जरूरत होती है, पार्ट की जरूरत होती है, लोगों को इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत होती है, और बड़े सारे लोगों को क्या कहते हैं। मैं आपको बात बताऊं, कल मैंने ये मेरा हाथ होता है इस चीजों में, मैं पहली दफा मेरे कौन प्लान लोगों को पता चले, बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं कि तुम पब्लिक वहां से इकट्ठी कर सकते हो, मैंने कहा मैं तो पब्लिक वहां से इकट्ठी करता हूँ, वहां से इकट्ठी करता हूँ, वहां से इकट्ठी कर सकता हूँ, मगर मसला ये है मेरे लिए, मसाइल ये है, ये फाइट मैं कल ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फिर हर बंदे को जवाब देना है, हर बंदे को देना है। आप मेरा फेसबुक पेज देख ले, मेरे ख्याल से जितना मैंने लोगों को जवाब दे दिया है, जितने मुझे क्या कहते हैं लोगों ने गलत जवाब दे दिए, स्ट्रेस दे दिए, वॉट एवर दे दिए, सब उसको ला दे ले, क्योंकि मुझे कोई खतरा नहीं है, पुलिस के पास है वो पड़ेगा चले जाते हैं डायरेक्टली, पुलिस को हैंडल कर लेती है, मगर मसला ये है कि हम जितने देर तक सब इकट्ठे नहीं होंगे वी विल नॉट बी ऑन वन पेज, वही मसला होता है कि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए कि 5 सितंबर को इतना बड़ा डेनमार्क के अंदर एक डेमोस्ट्रेशन आ रहा है सब चीजों के खिलाफ कि डेनमार्क की डेमोक्रेसी इस्लाम सब, ये देखे ना कि हम समझते थे कि वो लोग, कल मुझे एक बंदा कहता है वो 1200 थे, मैंने कहा एक बंदे का पुत्र वो 1200 हो रहा 1300 हो, इंग्लैंड में वो कितने थे और आज देख इंग्लैंड में कितने हो, मैंने कहा एक चीज छोटी होती है एकदम लूज हो जाती है, उसको स्टॉप ना किया जाए तो बड़ी बड़ी बड़ी होती जाती, मैंने कहा इसलिए हमारा काम बनता है कभी भी हमारे पास टाइम है हम बैठे और इन चीजों को देखे और एक प्लेटफॉर्म बनाए तो हम इसका मुकाबला कर सकते हैं।
1: शाह साहब क्या समझते हैं अदनान जो कह रहे हैं मुकाबले से ये कोई पॉजिटिव साइन जाएगा या कि नफरत बहुत ज्यादा फैलेगी?
0: देखिए जी, नफरत फैलाने में तो हम लोग कामयाब हो गए, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हम लोग सब हैं, क्योंकि हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी को बताता नहीं कि तुम्हारे ये फॉल्ट है, तुमने ये गलती की है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला है, जो अदनान ने कहा कि 5 सितंबर को जो होने जा रहा है, ये एक यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ हुकूमत को चलाती हैं, फॉर्म 47 हमारे लोगों के लिए समझने के लिए बात ही होगा कि 45 को 47 में तब्दील कैसे किया जाता, तो इस मुल्क के अंदर भी ऐसे होता है और हमने देखा है और हर दफा मुशाहदा किया है इस बात का कि सियासत जो है ये सिर्फ बातों से नहीं होती बल्कि पैसे से भी सपोर्ट होती है और बड़ी चीजों से सपोर्ट होती है। तो यहाँ के जो हालात हैं इस वक्त, ये जो ग्रीनलैंड का मसला है, इनको ये गल में पड़ चुका है इस गवर्नमेंट को, और ये गवर्नमेंट उनको हटाने के लिए ये यहाँ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, एवरीथिंग। एक बंदा आके इंग्लैंड से आके यहाँ पे, जिसका ईयू से भी तलक नहीं, वो यहाँ पे राशिज्म फैला रहा है। मैं सिंपल एक आपको मशवरा दूंगा कि मेरे जैसे शायद लोग पसंद करें ना, लेकिन मैं एक बात करूंगा जो हकीकत है। अगर ताहिरुल कादरी जो है वो डेनमार्क में नहीं घुस सकता, उसके ऊपर पाबंदी है कि वो यहाँ पे टेररिज्म की बात या कोई ऐसी बात करता है, करने आता है, ये इनका एलिगेशन है डेनमार्क गवर्नमेंट का, तो एज ए सियासी तजिया रगार मैं भी ये कहूंगा कि इन लोगों पर भी बैन होना चाहिए कि आप हमारा एक फ्रेंडली मुल्क है, हम अभी डेनमार्क को दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क साबित किया गया है, तो ये कैसा खुशहाल मुल्क है कि जिसकी जो सबसे बड़ी अकलियत है वो ही दबाव में है, वो ही प्रेशर में है, उसी को गालियां पड़ रही हैं, तो क्या इसकी वजूहत क्या है कि एक हम लोग गबियत बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरा हमारे में बहुत ज्यादा चौधराहट है, हम बहुत बड़े राशिस्ट खुद लोग हैं। मैंने ये देखा है कि अब ये हमारे जो लोग इलेक्टेड हो चुके हैं, इवन हमारे इधर एल्बर्टन के अंदर आप उनको सलाम करेंगे तो सलाम का जवाब मिलेगा, वो शक्ल देखकर दूसरे पर मुंह कर लेते हैं, और जब नहीं होते तो फिर वो आप उनके अंकल भी होते हैं, आप उनके सब कुछ होते हैं। तो ये जो रैशिज्म है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान को उस वक्त पता लगेगा कि जो मैंने लोगों से वोट लिए, उनकी हमायत हासिल की, उसके बाद मैंने क्या किया, तो इसका हिसाब जो है ये हुकूकुल अलबाद में आता है, और हुकूकुल अलबाद में अल्लाह ताला ने बंदों को बख्शना नहीं, बफा मैं क्यों ना हूं। तो सबसे बड़ी ये बात है कि इन लोगों को डेनमार्क में ये पता लग चुका है कि यहाँ की हर कल्चर सोसाइटी, यहाँ की हर मस्जिद, यहाँ की हर तंजीम जो है वो एक दूसरे से अलहदा है, और ये कभी भी इस्लाम के नाम पे इकट्ठे नहीं हो सकते, लिहाजा इनको जिस तरफ दिल चाहे हांक लो, जिस तरफ दिल चाहे इनको ठुडे मार लो। लेकिन एक चीज राजा साहब याद रखिएगा कि जो हमारे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जो हमारे बच्चे टॉप लेवल पे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कभी भी खतरा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके लिए इनको रखना जो है ये इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये उनको अगले 10-15-20 साल में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो हम आम लोग हैं, जो टैक्सी चलाते हैं, छोटी छोटी क्योस्के चलाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, हमें अगर वो गलती पाई जाती है तो ये हमें इतना तंग करेंगे कि हम यहाँ से चले जाएं। आपने देखा होगा, दलान ने भी देखा होगा कि पिछले हफ्ते एक डैनिश जो है वो फल्के पेंशन पे गया, तो उसने कहा कि मुझे फल्के पेंशन में एक टैक्स कार्ड को के मुझे 6,000-6,500 मुझे मिल रहा है, तो मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजारूंगा, तो मैंने तो इतनी उम्र काम किया और मैं कभी भी काम के बगैर। जब डैनिश ये कह रहा है तो क्या हमारे किसी सियासतदान ने ये सोचा है, या कम्यून लेवल में जाके या किसी गैदरिंग में ये कहा हो? पावरफुल आदमी उस वक्त होता है जिसके पीछे 100-200 बंदा होता है, वो इस चीज से वो पावरफुल बनता है, और फिर वो बंदों के सामने खड़ा होकर कहता है सियासतदान को कि देखो ये मेरे बैक है, और तुम जो हम बात कर रहे हैं इसमें वजन होना चाहिए। फिर आपको वोट मिलते हैं, फिर आप उनको अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, उनसे रास्ता खत्म कर देते हैं, तो जो जो आपको लेके आया या जिस कमेटी में आप बैठे हैं उनको पता लग जाता है कि अब ये जो है ये पिंजरे में बंद हो गया, इसके पीछे जो बाउलेंस थी वो चली गई है, तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाता है, आपको आप सियासत में माइनस होना शुरू हो जाता है।
1: बात हो रही है आगे, अदनान ने बड़ी अच्छी बात की, बात हम कानून कायदे के कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, फलां ये कर रहे हैं, अब हम अपनी गाड़ी पार्क सही नहीं कर सकते। मैंगो फेस्टिवल था जो अदनान बता रहे हैं, अदनान से भी जो है वो कमेटी वाले या दूसरे लोग जो है गिला कर रहे हैं, गाड़ियां हम गलत पार्क करते हैं। शाह साहब, क्या हम अपनी गाड़ियां दिखाने जाते हैं, अपना लिबास दिखाना चाहते हैं, या हमें एडवर्टाइज तो मैंगो फेस्टिवल की मैंगो की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी, या टिक टाक की एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए थी? ये तो पैसा कमाते हैं टिक टाक वाले।
0: मेरा ख्याल में कि इस गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी ज्यादती की है, इनको ये चाहिए था कि बैंक में अकाउंट बंद ना करते, लोगों को बिजनेस के लिए खोलने की इजाजत देते, लेकिन ये जो लीजिंग पे छोटे छोटे वर्कर्स को, छोटे छोटे बिजनेसमैनों को काम करने के लिए इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी महंगी गाड़ियां इन्होंने लीज कर दी है, उनके ऊपर उनसे कहना चाहिए था कि हाँ आप अपनी स्टैंड इनकम, आप अपने पूरे घर की इनकम, आपकी इनकम दिखाएं, आपके पास क्या बचता है। जैसे वो हम पेंशनरों से पूछते हैं कि भाई आपने अगर ये दवाई लेनी है तो इसकी फैसिलिटीज देनी है, तो आप पूरा खर्चा बताएं महीने का। फिर यहाँ आप ये देखते हैं कि ये छोटी गाड़ी में बैठने को पसंद करते। मैं इनके मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं इसलिए इसका मुखालिफ हूँ कि अगर आपने बड़ी गाड़ी ले ली है तो उसको पार्क करना, अगर आपको नहीं मिला तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर आप पार्क कर ले। आप बस में आ रहे हैं, आपकी इज्जत कम नहीं होगी? जो आपका उसी गांव का रहने वाला बंदा वो उतनी बातें आपके खिलाफ करेगा, कहेगा हमें इसको पुराने, मुझे नहीं बख्शते, मैं गुजरात शहर का किसी वक्त खाने, मुझे नहीं लोग बख्शते, यहाँ पे नहीं बख्शते, गालियां देने से बाज नहीं आते। तो ये इन बड़ी गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोटी गाड़ियां ले, अपनी इज्जत बनाए, लोग आपको इज्जत दे, माशाल्लाह आप इस मुल्क में बड़े हुए हैं, हम लोग तो फिर पाकिस्तान से आए थे, तो आप इस मुल्क के शहरी हैं, तो हमारी ये दुआएं हैं कि आप सबसे पहले। एक दूसरी बात मैं राजा साहब यहाँ करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इदनान भी इस पे करे, हमारी कम्युनिटी को खसूसी तौर पर मुसलमान कम्युनिटी को सबसे बड़ी नुकसान इस बात पे हुआ है कि जो हमारी यहाँ पे डिवोर्स हो रही है इस वक्त, सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट जो है, मैं हैरान हो गया हूँ अगले दिन अखबार में पढ़ के कि मुसलमानों की सबसे ज्यादा शरह जो है वो डिवोर्स की है, और बाद लोगों ने दो दो तीन तीन दफा डिवोर्स लिया है यहाँ इस मुल्क के अंदर, और ये बहुत ही इंतहाई खतरनाक है, और इसके ऊपर भी कोई कानून बना सकते हैं। दनान इसके ऊपर बात करें, ये बताए कि इसके नॉलेज में क्या है।
1: शाह साहब, ये बातें तो कानून की तो कानून दान ही कर सकते हैं। तो अदनान, आपने ये सारी चीज़ों को देखा कि हम सियासी जमातों में इकट्ठे नहीं होते, तकसीम हो जाते हैं, जहाँ जिन जिन ममालक से आए उनमें तकसीम हो जाते हैं। सियासतदान तो हर वक्त फिट रहता है, जो वोट देने वाले होते हैं, जो तामन करने वाले होते हैं, एक बंदा राइट पे हो जाता है, एक लेफ्ट पे हो जाता है। मैं अदनान को पसंद नहीं करता, मैं शाह साहब को पसंद करता हूँ, क्योंकि अदनान से मेरी मुखालफत है, मैं शाह साहब को वोट दूंगा। जो शाह साहब को पसंद नहीं करता वो कहता है मैं शाह साहब को नहीं पसंद करता, मैं अदनान को वोट दूंगा। जब हम नज़रियाती वोट ही नहीं देते, तकसीम होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चले जाते हैं, सिर्फ जो है हमारी कौम जो है वो डिमांडिंग डिमांडिंग डिमांडिंग की हद तक महदूद है। जी अदनान,
3: देखिये राजा साहब, इंसान को उसकी काम से वोट देना चाहिए और उसकी बैकग्राउंड से देना चाहिए, नाम से किसी को वोट नहीं देना चाहिए, एक तो ये चीज है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि इंसान को ये देखना चाहिए कि इंसान कौन सा काम कर रहा है अच्छा और कौन सा काम अच्छा नहीं कर रहा। और शाह साहब की बात सही है कि जैसे सब प्रॉब्लम काफी है और इस पे वोट करने की जरूरत है, और इंशाल्लाह ताला इस पे काम भी किया जाएगा कि क्या वजह है, और ये इंशाल्लाह ताला इस पे कोई ना कोई राय भी आएगी। मगर अभी मैंने इस पे गौर इतना नहीं दिया, मगर इंशाल्लाह ताला इस पे जब मैं गौर दूंगा और देखूंगा इस चीज को, तो फिर डेफिनेटली इसके बारे में कोई ना कोई कोशिश तो करूंगा अपनी तरफ से कि इस चीज का बेहतरी आए।
1: तो अदनान, बड़ी खुशी की बात है, जो हमारे सिटी काउंसलर्स हैं या जिन जिन कमूनों में बैठे हुए हैं उनको बड़ी अच्छी पोस्टें भी मिल गई हैं, वो सारा कुछ मिल गया है, बच्चों को भी मिल गया। खुशखबरी की बात है, میں اب خود تو نہیں جانا چاہتا, وہ خود ہی بندوں کو اپنی خوشخبری جو ہے خود سنانی چاہیے. تو شاہ صاحب بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں, بہت ساری خوشخبریاں بھی آ رہی ہیں, جس طرح آپ دونوں بریکنگ نیوز بھی دیتے ہیں, وہ میں چاہتا ہوں جن کو خوشخبری ملی ہے وہی بریکنگ نیوز دیں.
0: یہ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بریکنگ نیوز وہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا. دیکھیں آپ سیاست میں آئے, آپ ہارے آپ جیتے, یہ میدان میں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ہار کر بھی اپنی جیت کو برقرار رکھتے ہیں اور آپ سیاست میں ایکٹیو ہوتے ہیں اور سیاستدان ثابت کرتے ہیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں, مجھے ریڈیو پہ میڈیا پہ ہر صورت آنا ہے, میں نے اپنے خیالات جو ہے اگلے چار سال کے لیے جو میں نے الیکشن لڑنا ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں, تو لوگوں میں وہ زیادہ پاورفل اور مضبوط اور قداور بن کر آئیں گے. لیکن اگر آپ سڈنلی الیکشن سے چار دن پہلے یہ اناؤنسمنٹ کر دیا کہ میں اپنے خاندان کی پاور سے میں فلانی بلادری سے ہوں میں کھڑا ہو گیا ہوں, اور پھر لوگوں کے تلے کر کے منتے کر کے آپ ووٹ لیتے ہیں, آپ آگے جاتے ہیں, تو یہ نقصان دہ ہے. پھر آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ ہمیں اپنے بچوں کو پالنے پوسنے کے لیے ہمیں دوسرا کام. دیکھیں آپ الیکٹ ہو ہی نہ, آپ کو سیاست کا شوق ہے, آپ لکھیں, آپ سیاست میں آئیں, ضرور آئیں, آپ جا کے فلک دن کے اول میں بیٹھ جائیں, آپ کمیونوں کے اندر جا کے وہاں پیچھے بیٹھ کے ان کی کمیٹیوں کا سنے گی اجلاس کیا کرتے ہیں, آپ اپنی سیاست میں وہاں بول سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف میڈل سے جانا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستان میں بھی سرخ ہو جائے کہ ہم سے بڑا سیاستدان ڈنمارک میں کونی, اور حالانکہ پاکستانی سیاستدان جو ہے وہ ڈینش سیاستدانوں سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں کے ڈینش جو ہیں ان کے اندر بشک وہ کتنے بڑے راشسٹ ہوں ان کے اندر پھر بھی نیشنلزم ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ جاؤ تم پیچھا غلط بول رہا ہے ریڈیو پہ اس کو پکڑ کے ملک سے آؤٹ کر دو, نہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں جب یہ اسٹیٹ کے خلاف جائے گا تو پیچھا اسٹیٹ کے خلاف بات کرے گا تو پھر ہم اس کو قانون کی ذات میں لائیں گے. لیکن اگر یہ سیاست اور سیاست کو سیاسی چیز کر کے تجزیہ کر رہا ہے تو وہ کبھی بھی مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے. اور ہم نے اس ریڈیو پہ آپ کے پلیٹ فارم پہ ایک دفعہ نہیں لاکھوں بار ہم نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا, کیونکہ حکومت جو ہے یہ سیاستدانوں کی ہوتی ہے, یہ کوئی اپنا اسٹیٹ نہیں ہوتی. تو ہم کبھی بھی ڈنمارک کی اسٹیٹ کو اللہ معاف کرے ہم کبھی بھی اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اب ہمارا وطن ہے, یہ ہمارے بچوں کا وطن ہے اور ہمیں یہاں رہنا ہے اور اسی وجہ سے ہماری عزت ہے. اگر ہم ڈنمارک میں نہ رہتے ہوتے تو پاکستان میں
1: شاہ صاحب میں ضمن سوال کر رہا ہوں کہ یہاں جو لوگ ڈینش پاسپورٹ رکھتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں.
0: جی وہ جو اسٹیٹ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ کل کو جب وہ پاکستان جائیں گے تو اسٹیٹ جو ایئرپورٹ پہ ان کا اشر کرے گی وہ کہیں بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ میرے پچھلے ہفتے پاکستان میں ایک پولیس کے محکمے سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا, بڑے ذمہ دار آفیسر نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ بڑی چیز یاد رکھیں کہ یہ جو آپ واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پہ آپ میسیجز کھولتے ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف ہوتے ہیں تو وہ اس میں یہ گنا جائے گا کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں, اور آپ اس کو پھر دوسرے بندے کو بیچ رہے ہیں کہ لو تم بھی پڑھ لو یہ پاکستان کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو اس میں آپ لوگ شامل ہو جاتے ہیں, تو کوشش یہ کریں کہ آپ یہ میسج اپنے لوگوں کو دیں کہ خدا را ایسی جو میل آپ کو آتی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں, اس کو کھولے ہی نہ, جو پاکستان کے خلاف ہے اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دیں, اور بلکہ اس بندے کو اپنے گروپ پہ شامل ہی نہ ہونے دے تاکہ وہ اچھی حرکتیں, کیونکہ اس وقت بہت زیادہ افغانی اور ہندوستانی جو ہیں بھارتی وہ اس وقت ہمارے نمبر یوز کر کے ہمارے نام یوز کر کے تو وہ جو ہیں وہ ہمارے گروپوں میں شامل ہو رہے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں. راجہ صاحب
1: عدنان کلوز کرتے ہیں، عدنان کو حال بتائیں، یہ جو سیاست ہے یہ جمہوری ملک ہے، یہاں جمہوری طریقے سے ہی رائٹس ملیں گے، جب تک ان پارٹیوں کے اندر نہیں جائیں گے، ان کے ممبرز نہیں بنیں گے، کمیون میں اپنی تعداد کو بڑھائیں گے نہیں، پارٹیوں میں تعداد بڑھائیں گے نہیں، تو کوئی بھی قانون نام تبدیل نہیں کر، یہی بات ہے پارلیمنٹ میں، یہی پارلیمنٹ میں جا کر کام کرنا ہوتا ہے، میری اچھی باتیں کرنے سے، شاہ صاحب کی اچھی باتیں کرنے سے، آپ کی اچھی باتیں کرنے سے تو بات لوگ سن لیں گے، لیکن پریکٹیکل لوگوں کو جب لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب، ان کو یہاں کی ڈنمار کی سیاست کرنی چاہیے، ان پارٹیوں میں جانا چاہیے، اگر ان پارٹیوں میں جاتے نہیں ہیں، بند کمروں میں سیاست کی جو ہے بوچاڑ کرتے ہیں شاہ صاحب، پھر تبدیلی نہیں آئے گی۔
3: یار صاحب، بندے کو پارٹیوں میں جانا چاہیے اور کسی اسٹیٹ کے خلاف بھی بولنا چاہیے اور اسٹیٹ کو بھی ریسپیکٹ کرنا چاہیے بندوں کی رائے، اور میری یہی رائے ہے کہ ہم ان شاء اللہ تعالی کمنگ ڈیز میں اور لوگ جوائن کریں پارٹیوں کو، اور میرے لیے سب کے لیے دعا ہے کہ یہ لوگ کا اپنا جو لوگوں کا فیصلہ ہوگا وہ لوگوں کا ہوگا، میری تو یہی ایجسٹیشن کہ بندے کو پارٹی میں رہنا چاہیے۔
1: شاہ صاحب آخر میں آپ کیا کہیں گے، اور آپ عدنان کا شکریہ بھی ادا کریں، پروگرام کو کلوز بھی کریں۔
0: یہ بالکل، میں آپ کو بتاتا جو اسٹیٹ ہوتی ہے، فوج کا ادارہ ہوتی ہے، دفاعی ادارے ہوتے ہیں، فائنانس کے ادارے ہوتے ہیں، پولیس کے ادارے ہوتے ہیں، جو امن و امان کے ادارے ہوتے ہیں، جو پرماننٹ کام کرتے ہیں اسٹیٹ کے اندر، وہ ہوتی ہے اسٹیٹ، اور اس طرح پارلیمنٹ بھی آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹ ہے، لیکن جو سیاست ہے وہ حکومت ہوتی ہے۔ آپ سیاست دان کے خلاف، حکومت کے خلاف بات کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی ملک کے ان اداروں کے خلاف بات کریں گے تو وہ اسٹیٹ کے خلاف بات جاتی ہے، اور اس کو یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کی سزا جو ہے پاکستان میں اور بہت دوسرے ممالک میں، ایون ڈنمارک میں ڈیتھ پینلٹی ہے کہ آپ اسٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں، تو اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ساری عمر ہم نے یہاں بیٹھے رہنا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ہم نے واپس اپنے اپنے ملکوں میں جانا ہے۔ تو عدنان تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے اچھی معلومات دی، اور جیسے تم نے وعدہ کیا کہ اگلے کسی بھی پروگرام میں تم فل انفارمیشن لے کے آؤ گے کہ ہمارے جو یہاں ڈیوورس ریٹ ہے اس کی وجوہات کیا ہے، اور ان کے پیچھے جو عوامل ہیں وہ کیا کیا ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ میں بھی اگر ساتھ ہوا تو مدد کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو راجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، لسنر کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں برداشت کیا، اب گرمی کیونکہ بہت زیادہ ہے تو کوئی ہم بھی انجوائے کر لیں، ٹھیک ہے راجہ صاحب، اللہ حافظ۔
4: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

0: में बैठा था और मैं अब यहाँ कोई नेट की प्रॉब्लम रहती है, मेरे पास अपना नेट नहीं है, तो थोड़ी सी ना दुश्वारी हो रही। सॉरी, मैं एक साइट पर जा रहा हूँ। राज साहब, आपने बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अहम मसला है जिस पर हमें बहुत गौर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें जो हैं हम बहुत दफा भूले हुए हैं, अपने दीन को उस तरह हमने प्रैक्टिकली नहीं किया जिस तरह हमें करना चाहिए था। अपने अपने पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पाकिस्तान का कल्चर जो है, सोच जो है, जिसके लिए ये मुल्क हमने, हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया था, उसको हम बहुत दफा भूल जाते हैं या कुछ चीजें इग्नोर कर जाते हैं। तो ईमानदारी तो एक हमारे दीन का एक अहम, यानी कि मुसलमान तो एक होना ही, एक सच्चा मुसलमान चाहिए। मुसलमान की तो सोच ही एक सच पर बुनियाद रखती है और अपने ईमान पर बुनियाद रखती है। तो मैं अब, क्योंकि आपकी बात पूरी पहले सुन नहीं सका, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। आस्ता आस्ता जो है चीज सुनने के साथ साथ फिर मैं अपना भी व्यू इसमें शामिल करूंगा।
1: जी, शुक्रिया मियाँ साहब। शाह साहब, आपने बात सुनी। शाह साहब, सियासत की बात होती है, यहाँ के जितने भी मामलात हैं, डेनमार्क में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे हमारे शहरी हैं। कोई तरक्की करता है या आगे निकल जाता है, खामियां होती हैं, अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन क्या बात है, वाहिद लोग हम लोग हैं जो अपनी गलतियों के पीछे दूसरी कम्युनिटी को शामिल करते हैं कि वो तरक्की कर गई है, वो तरक्की कर गई है। गलतियां करते हैं तो हम कभी दूसरे मुल्क को कह देते हैं, कभी तीसरे मुल्क को कह देते हैं। हम अपने गिरबान में शाह साहब क्यों नहीं जानते?
2: ये बिल्कुल, मियाँ मनीर साहब की भी बात सुनी और चौधरी शौकत की भी बात सुनी और आगा साहब की भी बात सुनी है। असल में मसला ये है कि अगर हम 70s और 80s और 90s को देखें, जहाँ विलुवे, मियाँ मनीर साहब, सॉरी टू से कि मैंने विलुवे कहा, ये उस वक्त इस नाम से बहुत मशहूर थे। ये यंग आदमी थे, बिल्कुल यंग। ये हमारी डेनमार्क की पाकिस्तानी सियासत में सबसे यंगस्टर जो आदमी था वो मियां मनीर था। लेकिन हर जगह पे पहुंचना, अपना वर्कशॉप बंद करना या अपने काम से आना या अपने
1: और
2: टैक्सी
1: अपना
2: बंद करना
1: नुकसान
2: और वहां
1: करना,
2: पे
1: अपना
2: पहुंचना,
1: नुकसान करना।
2: जो भी है, ये हर जगह पे ये पहुंचता था। हर जगह पे इसकी मौजूदगी होती थी और यहाँ के लोकल मसाइल पे खुलकर बात होती थी। अभी भी 2 साल पहले तक इनके वर्कशॉप के अंदर, 2 साल पहले, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये फोरमैन थे अपना को प्रावन टाक साके, तो उसके अंदर भी इनके काफी गैदरिंग होती थी और बड़े कम्युनिटी के बड़े बड़े लोग और आम लोग भी आके वहां पे उस में अपनी बात सामने रखते थे। अब ये हो गया है कि हमारे मसाइल रुक गए हैं। हमने यहाँ पे सिर्फ
1: अब
2: ये
1: इन्होंने
2: बात छोड़
1: किया
2: दी है
1: इन्होंने
2: कि
1: क्या गलतियां की हैं हमारे नौजवान सियासतदान?
2: हमसे नहीं, इन्होंने इन्होंने गलती नहीं की, हम लोगों ने गलती की है कि हमने अपनी सारी चीजें जो है अपने सर का ताज उतार कर यंगस्टर पे रख दिया है कि यंगस्टर्स जो है ये जबान समझते हैं, लेकिन जबान तो वो बोलते हैं, ये तो उनकी मादरी जबान है क्योंकि वो पैदा यहाँ पे हुए हैं। लेकिन ये कहना कि वो आइन को समझते हैं, वो सियासत को समझते हैं, वो दूसरी चीजों को समझते हैं, मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जब हम लोग आए थे तो हम लोगों ने सबसे पहले इस मुल्क के कानून और आइन को बदलने नहीं दिया और इस मुल्क में अपना नाम पैदा किया। अब मसला ये हो गया है कि हम लोग जो हैं, हमारे यंगस्टर्स जो हैं, वो आयन की पासदारी नहीं करते और कानून को जो है वो फैसला करते हैं और कहते हैं जी कानून जो है ये बिल्कुल सही है, तो वो लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं देते। मसाल के तौर पर अगर मेरे बच्चे पढ़ लिखे हैं तो मेरे बच्चे आगे मुझे ये नहीं बताते कि अबू आज शाम को ये कानून बदल गया, आज कम्यून में ये हुआ ये, उनके पास टाइम नहीं है। आप लोगों को अग्री करना चाहिए, जब तक ये यंगस्टर्स जो हैं, ये पुराने लोगों को, जैसे मियां मनीर साहब हो गए, चौधरी शौकत हो गया, अपना आगा साहब हो गए, दूसरे, जब इनकी सोसाइटी में नहीं बैठेंगे, इनको पता नहीं लगेगा कि हमारे अंदर वायलेंस कैसे पैदा हुआ, हमारे अंदर ये जो मैं आ गई है इसको कैसे निकालना है, इस मुल्क के कानून के साथ कैसे चलना है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि यहाँ पे जो लोग मेडिसिन डॉक्टरों से जाके कहते हैं कि हम बीमार हैं, हमें बहुत ज्यादा बीमारी है, लेकिन वो मेडिसिन तो लिखवा लेते हैं लेकिन वो जाके

0: नहीं कि वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के आइन को समझकर बात करे। तो राजा साहब, ये जो गलतफहमियां पैदा हुई हैं, ये हमारी ही वजह से हुई हैं, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमसे बड़ा राजनीतिक कोई नहीं। जो आपने आप हमने यहाँ पे एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए हम राजी नहीं होते। हमारा एक दोस्त भाई जो 70 से हमारा दोस्त है, जब उसके बारे में पता लगता है कि वो दुनिया से चला गया, वो छोड़ के चला गया, या वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो हम सिर्फ मस्जिदों में इसलिए नहीं जाते कि यार वहां पे तो ये फलाना फिरके का फलाने फिरके का। ये राशिज्म हमें निकालना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए मुसलमान होना तो बात की बात, हम सबसे पहले इस्लाम हमारा दीन है और हम इस्लाम के पाबंद हैं, और अच्छे शहरी बनना और अच्छे तरीके से इस मुल्क के अंदर रहना और इस्लाम का नाम बुलंद करना, ये हमारा फर्ज है। हम ना लड़ाई झगड़े के लिए इस मुल्क में आए, ना फसाद पैदा करने के लिए आए, ना हम टेररिस्ट है। क्यों? कि हम इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम हमारा दीन है, जो इस्लाम हमें सिखलाता है वो हम करेंगे। अगर हम आपके कवानीन से तंग हो जाएंगे तो हम उस पर बात आपसे कर सकते हैं, और अगर आप उस पर राजी नहीं होते तो हम यहाँ से हिजरत कर जाएंगे। ये दीन हमारा सिखलाता है, हमें अग्रेसिव नहीं होना, हमें कोई ऐसी बातें नहीं करनी। तो ये राजा साहब, ये चीजें जब तक हमारे लीडरान इन चीजों को समझ नहीं सकते, और वो हमेशा पाकिस्तान की सियासत करते हैं और पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, वो हर अपने आप को बड़े चौधरी और बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शाह, बड़े बड़े शेख अपने आप को समझते हैं, तो जब तक ये कामें रहेंगी, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ये जो थर्ड और फोर्थ जनरेशन इस मुल्क में आ रही है, ये कल को हिस्ट्री में बुरे नामों से हमारा नाम लिखेगी और ये कहेगी कि इन लोगों ने सियासत को यहाँ और यहाँ के कानून को बुरा और बदनाम किया। जी राज साहब,
1: शाह साहब, मफादात की सियासत क्या होती है? आप बिलोंग टू आर्मी फैमिली करते हैं, आपके वालदे मोहतरम पाक आर्मी में रहे, तो अभी जो बयानात आ रहे, मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़ा नाम है, मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे हैं, दीनी लिहाज से बड़ा उनका नाम है, सियासी लिहाज से बड़ा नाम है, वो पार्लीमेंट में अब भी मौजूद हैं और कई दफ़ा मेंबर बन चुके हैं, कश्मीर कमेटी के रह चुके हैं, लेकिन ये जो लैंग्वेज हम आप सुनते जा रहे हैं लीडरान की या उलमा की, जो स्टेट के खिलाफ, शाह साहब, क्या आपके वालदे मोहतरम पैसे के लिए फौज में गए थे?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे खानदान में अगर वो गए थे तो वो कहते थे कि मैं अपने मुल्क की खातर जा रहा हूँ और मैंने अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, क्योंकि कायदे आजम का हुक्म था के पाकिस्तान बनने जा रहा है, तो जो यंगस्टर पढ़े लिखे हैं, मेरे वालिद साहब इंजीनियर थे, तो उन्होंने पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग, तो उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन मैंने खत्म कर लिया, तो ये हुक्म आया कि भाई आप लोग जिन्होंने कर लिया वो फौरन जो है आर्मी को या दूसरे सिविल अदारों को ज्वाइन करें। तो मेरे वालिद साहब ने और इनके बड़े भाई ने दोनों ने आर्मी ज्वाइन कर ली और दोनों सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती हुए और उन्होंने आर्मी
1: तो
0: में
1: सारे जो आर्मी से शोधा हैं, आर्मी की जिन्होंने नौकरी की, मौलाना साहब ने एक बड़ा बयान दिया, सियासतदान हैं, जमहूरियत पसंद की दावे करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो कुछ इमरान खान साहब मौलाना के सामने फरमाया करते थे, उनके बारे में फरमाया करते थे, अब तो वो दोनों एक पेज पे आ चुके हैं, लेकिन एक दूसरे के बारे में जो कहा करते थे उसके अपने अल्फाज भी तब्दील किए। तो शाह साहब, जो शोदा के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, सब शोदा की जो उन्होंने जो है वो मैं समझता हूँ फैमिलीज की तो ही उन्होंने की है, तो लोगों के दिल अफसरदा हैं, तो ऐसे बयानात शाह साहब दीनी लिहाज से कोई मसला पेश करें, कोई दीनी बात करें, और आपने उस स्टेट को, उस फौज को चैलेंज कर दिया, अगर आप फौज को माइनस कर दें तो पीछे क्या बचा? शाह जी,
0: जी ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब हम एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हम रहते हैं, तो वहां पे ये होता है कि भाई आप धड़ाबंदी कर लेते हैं और लोगों को इतनी ज्यादा नफरत। देखिए, जिन लोगों ने ये लोग जो हैं, आप MQM को देख लें, आप इन सारी पार्टियों को देख लें, ये सारी के सारी आप बलूचिस्तान में देख लें, पंजाब में देख लें, ये फौज के अदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, एक ही भी अदारे के खिलाफ जब आप बात करते हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक जाती किसी जज के खिलाफ या किसी पुलिस वाले के आप बात करते हैं, तो वो उसकी जातियात पे आप कीचड़ उछालते हैं, लेकिन जब आप अदारों को ब्लेम गेम करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप मुल्क गद्दार हो गए हैं, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, और इसकी हर मुल्क के

0: दुनिया भर के जितने भी मुल्क है, इवन डेनमार्क है, इसका एक ही है। डेनमार्क में सजाए मौत नहीं, लेकिन ये इनके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सारी उम्र जब तक आप जिंदा हैं आपने कैद है, तन्हाई ही काटनी है। तो हमारे मुल्कों में सजाए मौत है, सारी दुनिया में, अमेरिका में भी सजाए मौत है। तो ये चीजें जो है कि आप एहतियात करें कि ऐसे वायलेशन ना करें, ऐसी चीजें ना करें। अगर जाती तौर पे आपको कोई रंज है, अभी मैं एक बंदे का फेसबुक पे सुन रहा था, वो कह रहा था जी के जी अयूब खान के जमाने में 1962-1960 में क्या नाम है बलोचिस्तान का बुरा हाल था, पागल के पीछे। मैं खुद वहां पे उस वक्त था क्वेटा में, और मेरे वाले साहब उस वक्त इन्फेंट्री कोर्स कर रहे थे, और मैं वहां पे अपनी वालदा के साथ था, मेरा छोटा भाई भी वहां पे पैदा हुआ और क्वेटा के अंदर। तो मैं ये मैं तुम्हें बता दूं, क्वेटा वाज वन ऑफ द बेस्ट सिटी पाकिस्तान का उस वक्त। वहां पे इतना अमन था कि हम लोग बाहर पिकनिक के लिए चले जाते थे, बच्चे सड़कों पर खेलते थे, अमन अमान था, इतने अच्छे लोग वहां रहते थे। ये तो आप लोगों ने अफगानियों को भाई भाई कह के अफगानियों को पाकिस्तान में बुलाया, पख्तून भाई एक एक करके नारा आपने लगाया, पाकिस्तान का सत्यानाश आपने किया। जब वो यहाँ पे आ गए फिर आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना वो आपके अफगानी भाई हैं ना आपके पश्तून भाई हैं, आपने उनके साथ नफरत का। क्योंकि ये कौमें जो आई थी ये मेहनत काश थी, इन्होंने जॉब ले ली, इन्होंने आपसे ज्यादा अच्छा तजारत करनी शुरू कर दी, और उसके खिलाफ अब लोगों ने महाज खड़ा कर लिया है। यही सियासी पार्टी है, उनको सपोर्ट भी करती है, और फिर जब पार्लियामेंट में आ जाती है और फिर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर पैसा लेती है, अरबों खरबों डॉलर जो है ये सालाना बलूचिस्तान और सरहद के लिए लेते हैं और सिंध के लिए। क्या इन्होंने वहां पे किसी जगह पे तरक्की कराई है? नहीं, इनके बच्चे बाहर रहते हैं, ये सारा पैसा इन्होंने दुबई कतर और सारी दुनिया में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, दुनिया भर को इन्होंने अमीर कर दिया है। इंग्लैंड जैसे मुल्क को जो दूसरी जंग अजीम में तबाह बर्बाद होकर रह गया था, इन्होंने आबाद करके रख दिया, और आज ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान कुछ नहीं। मैं आज देख रहा था कि 40 पेंसिल्वेनिया अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने एक बकायदा एक शाया किया कि दुनिया की पावरफुल कंट्रीज कौन कौन सी है, इकोनॉमिकली हब और दूसरी और ताकत कैसी है उनके पास, उनकी फौज कैसी है। उसके अंदर सारे मुल्क हैं, ईरान भी है, बांग्लादेश भी है, सारे मुल्क हैं, लेकिन 40 मुल्कों के अंदर पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसने जिसके लोगों लोग अगर साइकिल खरीदते हैं या कोई ऐसी घर खरीदते हैं तो वो कैश खरीदते हैं। यहाँ पे यूरोप में कितने बंदों का अपना घर होगा, डेनमार्क में मैं कह सकता हूँ मैं जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो मेरा घर है, लेकिन एक्चुअली वो जो है वो बैंक से पैसे लिए हुए हैं, बैंक को वो आप उसको पैसे दे रहे हैं, वो सारी उम्र आपका नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारा मुल्क जो लोग हैं ये खुद हमारे साथ गद्दारियां करते हैं, ये खुद हमें इस हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज ने इंडिया जैसे बड़े मुल्क को नाकों चने चबा दिए और वहां पे उसको इतनी बड़ी शिकस्त दी है पिछले साल। अभी अभी क्या हो रहा है पाकिस्तान, और ये कौन है गद्दार वतन है जो मुल्क के खिलाफ मुल्क की फौज के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो राजा साहब इनके ऊपर अगर बोलना चाहे तो हम सारा दिन बोलते रहते हैं, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो जहन्नमी है वो जहन्नमी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है कि जिसके गले में सीमेंट और सरिया मैंने लगा दिया है वो कभी भी सीधा नहीं हो सकता। तो जो लोग हैं उनको चाहिए कि वतन है तो है, उसी वतन का पासपोर्ट लेके आए हैं तो उसी वतन के साथ मोहब्बत करें, और अगर उस मोहब्बत से इतनी आपको नफरत है तो फिर पाकिस्तानी खिलाना छोड़ दें और जाएं जहां आपने जाकर रहना। जी राजा साहब,
1: शाह साहब देखे ना, बात का आगे पाकिस्तान की बात आ गई, बात हमने शुरू की थी यहाँ खेल के मैदानों की बात की थी, सेहत की बात की थी, आपने बीमारियों के मुतलक बताया, अब जो क्रिकेट के मैच होते हैं इसमें उलमा भी जाते हैं, दूसरे लोकल लोग भी जाते हैं, तंजीमात के लोग भी जाते हैं। तो शाह साहब अगर कोई अच्छा टूर्नामेंट हुआ है, अच्छी लोगों ने कोशिश की है, इनामात तकसीम हुए हैं, तो शाह साहब उसके बाद ये 804 वाली वर्दियां पहना के मियां साहब को पीटीआई का शो करना, तो अम्बेसडर साहब भी वहाँ मेहमान खसूसी से, तो शाह साहब हमें सबको अपने अपने गिरबानों में तो झांकना चाहिए।
0: देखें जी, इस वक्त जो मर्जी कोई कहे, कोई पीटीआई का बने, कोई किसी का हो, इस वक्त सबसे बड़ी ये चीज है कि आप उस तंजीम को देखें, आप उस मुल्क को देखें जिस मुल्क से आपकी वफादारी है। आप अगर पाकिस्तान के खिलाफ, मैं कभी भी, मुझे अरसा दराज हो चुका है, मैं कभी भी पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात नहीं करता, लेकिन आज मैं मजबूरन इसलिए कर रहा हूं कि छुट्टियों के इन दिनों में अगर आप एक्स पे जाते हैं, आप किसी जगह पे भी जाते हैं, तो हर हर बंदा जो है वो पाकिस्तान स्टेट के खिलाफ बात कर रहा है। तो खुदा रहा, कुछ इस वक्त पाकिस्तान को आपकी जरूरत है और आपको पाकिस्तान की जरूरत है। कल को अगर ये हमें इन मुल्कों से मजबूर करके निकाल देते हैं तो आप कहाँ जाएंगे? आपने तो पाकिस्तान जाना है, तो कम से कम जो आपकी जदादे हैं वहां पे या जो चीजें हैं, या तो आप उसको छोड़ दें। वो भी आप नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप उसको छोड़ेंगे तो आप आपकी चौधराहट खत्म हो जाएगी, आप जीरो हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? तो लिहाजा मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्रिकेट भी खेलें, यहाँ पे स्क्वैश भी खेलें, हैंडबॉल खेलें, हर चीज खेलें, लेकिन इसके साथ लोगों को ये शऊर जरूर दें और ये देखें कि आपकी टीम में कोई ऐसा गद्दार तो नहीं बैठा हुआ जो मुल्क के मफाद में गलत बातें कर रहा है, उसका भी उसको उससे निकाले, उसको उठाएं वहां से। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, अब हम आने वाले दिन का हमें पता नहीं, आज जिंदा है सुबह नहीं है, लेकिन जो हमारे उलादे हैं, हमारी जो थर्ड फोर्थ जनरेशन यहाँ तैयार हो चुकी है, खुदा रहा उसके लिए तो कुछ सोचें। अगर आप आम खाएंगे, जामुन खाएंगे, अखरोट खाएंगे, जो मर्जी खाएं, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा दे, लेकिन यहाँ जिन बच्चों को आप ये आदत डालेंगे, अगर खुदा ना खास्ता उनके खिलाफ जो कानून बन रहे हैं, देखिए मुझे हैरानगी है कि राजा साहब आज और कल ह्यूमन राइट्स और दूसरी एजेंसियां जो हैं वो बोलनी शुरू कर दी है। पूरे 2 साल हो गए हैं कि इन्होंने ये कानून 2023 में बनाया था, लेकिन कोई यहाँ के हमारी लीडरशिप जो है उन्होंने नहीं बनाया। तो लिहाजा अभी ये चीजें हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने मुआशरे को सही करें और इन लोगों को देखें कि ये क्या कर रहे हैं।
1: शाह साहब, मैं चंद सुर्खियां पढ़कर आपको सुनाता हूँ, इससे सोच का अंदाजा होगा कि हमें किस तरफ ले जाया जा रहा है और हमें सोच समझ क्यों नहीं आती। शाह साहब, मैं मोटी मोटी सुर्खियां पढ़ता हूँ। ईरान पर अमरीकी हमले, जवाब में बहरीन और कुवैत में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाने का ईरानी दावा। फील्ड मार्शल की तुर्क सदर से आम मुलाकात। बैरिस्टर गौर का आजाद कश्मीरी इंतखाबात के बायकॉट पर नजरसानी का अंदिया। पाकिस्तान, रूस, चीन, ईरान के वज़रा खारजा अगले हफ्ते इकट्ठे होंगे। दिल का दौरा पड़ने से कबल अल्लाह रखा की बेटी को तलाक हो गई थी। रेंजर्स एहलकार शहीद। $100 million के मोबाइल की स्मगलिंग, पाकिस्तानी निसाद मुलजम, अमेरिका मुंतकिल। एहसन इकबाल ने नेटफ्लिक्स सार्फीन को खुशखबरी सुना दी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी ओकाइमा कमेटियों का बायकॉट खत्म करने का फैसला। यूरोपीय परवाजों को खलीज के हदूद में परवाज ना करने की हिदायत। 400 किलो चांदी चोरी केस, साबिक क्रिकेटर कस्टम समेत मजीद 5 मुलजमान गिरफ्तार। शाह साहब, आप मुझे अंदाजा लगाएं, सुर्खियां को बिल्कुल शुरू से शुरू करें। आप अपनी सोच, इन लोगों की सोच का आप अंदाजा लगा रहे कि हमारी सोच को, हमारे जहनों को किस तरफ ले जाया जा रहा है, चूँकि हमारा टोटल इंसार अब जो है वो टेलीफोन पर, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर जो है वो जा चुका है। चूँकि हमने खुद तहकीक बिल्कुल करनी नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, जो कुछ हमें पेश किया जाता है, जो कुछ सोशल मीडिया हमारे सामने रखता है, चारे की तरह डालता है, उसको हम चुकना शुरू कर सकते हैं। तो शाह साहब, हम डेनमार्क में रहते हैं, आप हमेशा जोर लगाते रहते हैं इस मुल्क की सियासी पार्टियों का हिस्सा बने, इस मुल्क की पार्टियों के मेंबर्स बने, इस मुल्क की पार्टियों में इलेक्शन ले, तो शाह साहब दिलचस्पियों का अंदाज़ा होता है ना। तो शाह साहब, फिर जो बातें आप कह रहे हैं कि ये कानून बन रहा है ह्यूमन राइट्स का, फलां चीज़ बात हो रही है, फलां कुछ हो रहा है, तो शाह साहब फिर किसका कसूर है?
0: देखिए जी, ये हमारा अपना कसूर है। मैं इसलिए इन लोगों को कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के हालात को देखें। आप ये देखें कि कल की बड़ी सुर्खी थी अखबारों में, खारिया का जो असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर या कौन, उसको डेनमार्क का वीजा नहीं लगा, और इसी तरीके से गुजरात का भी है, उसको भी नहीं लगा, लेकिन जो हवालदार या थानेदार थे उनको वीजे मिल गए डेनमार्क के। तो ये चीजें देखने वाली हैरान चीजें हैं कि सबसे ज्यादा खुदकशी की मौत जो है वो गुजरात शहर में हो रही है और उनकी खबर जो लगी है वो बहुत अफसोसनाक है। आप ये देखेंगे इस वक्त जो पावरफुल लोग हैं उनको उनकी बख्शिश नहीं हो रही, वहां पे जो वो सीसीडी का जो महकमा बना है वो बगैर किसी अदालत में पेश किसी जगह पेश हुए हुए वो किसी भी बहाने में आपको सरेआम गोली मार देते हैं और जान से मार देते हैं, पुलिस मुकाबला शो करके ना भी पुलिस मुकाबला वो आपको मार दे, उनको राइट है। तो आप कल को आप लोग जाते हैं पाकिस्तान में, मैं जाता हूँ, हमारी जो जदादे हैं वहां पे, हमारे जो घर हैं, कल को कोई बंदा कहता जी या तो बंदा मुझे बेच के चला गया हुआ है, करोड़ों की हमारी जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर वो कब्जा कर लेते हैं और अगर वो पुलिस को चंद लाख दे के तो ये पुलिस मुकाबला में हमें शो करके तो हमें हमारा वहां खात्मा कर देते हो तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमें कोई तहफ़ है? किसी को कोई तहफ़ नहीं। पहले आप उधर देखे जी ठीक है जी आप फलाने गांव के या फलाने हैं जी घर में कोई MNA MP है आपकी मदद को आ जाएगा, अब तो आप देख लेंगे जो वहां पे
1: आप शाजी चूंकि उस खत्ते को उस जगह को उस शहर को जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी फितरत को सियासतदानों की फितरत को आप जानते हैं, उनकी पॉलिसी को आप जानते हैं। आप देखें ना कल तक हम जो एक प्रोग्राम किया ताकि शेयर भी हम कर दें कि नासर भट्ट साहब है कोई है वो अपना कह रहे हैं नून लीग के, उनके बारे में कितनी बातें की जा रही थी, जो कल परसों हमने प्रोग्राम देखा, एक प्रोग्राम हुआ वहाँ जो कश्मीर के इलेक्शन के सिलसिला में हुआ और उनके डेरे का इफ्तिताह भी हुआ, तो वहाँ बहुत सारे लीडरान आए हुए थे, वहाँ तो नासर भट्ट साहब को एक हीरो बना के पेश किया गया। तो शाह साहब देखें ना हालात किस तरह तब्दील होते हैं, किस तरह बातें होती हैं, तो बात फिर शाह साहब घुमा के हम लाते हैं कि हम लोग यहाँ की सियासत क्यों नहीं करते।
0: जी बिल्कुल, नासर भट्ट यहाँ पे एज ए वो आए हुए थे इंग्लैंड में, वो काफी सारी दुनिया उनको जानती है, वो इंग्लैंड में उन्होंने पनाह ली, सियासी पनाह ली हुई थी, आज वही पाकिस्तान उनके लिए बिल्कुल सही हो चुका है और सेनेटर हैं वो पाकिस्तान के।
1: ऐसी कोई मैं दूसरे बात करूँ वो गुजरात वाले उनकी बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा देखिए गुजरात में तो आप जिसके पास टोयोटा लैंड क्रूजर बिशा कार के किराए पे हो, दो कपड़े जोड़े हो, वो माया लगी हुई हो, आप दो दिन सर्कल रोड पे चक्कर लगा लें, तीसरे दिन आपको या मशीन बन जाएंगे या आप कोई बड़े सरमायादार के नाम पे आपको मशहूर कर दिया जाएगा, अखबारी नुमाइंदे आ जाते हैं उनके साथ खाना खा लें और उनको खाना खिला दें, सिर्फ 50-60 हज़ार रुपया पाकिस्तानी खर्च करके आप उनको खाना खिला देते हैं तो वो एक हफ्ता अखबारों में आपको सुर्खियां लगाएंगे और आपको इतना बड़ा बिजनेसमैन बाहर के मुल्कों में शो कर देंगे। वहां बेशक हम लोग यहाँ पे बोरियां ही उठाता हूँ, मैं खुद हूँ ड्राइविंग करता हूँ, तो ये हमारी सुर्खियां लग जाती हैं। तो ये चीजें जो है राजा साहब ये मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आप बाइज्जत हो, आप बिशक दाल खा रहे हो उसके साथ भी साथ चटनी हो, आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, ये सबसे बड़ी नेमत है। देखें मुझे एक बंदे ने पूछा, उसने कहा शाह जी फलाना बन गया फलाना बन गया फलाना बन गया, मैंने कहा बात सुनो मैं दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी, उसने कहा जी क्या नजर ही नहीं आ रहा आपके पास, क्या आप तो टैक्सी चला रहे हैं, मैंने कहा जो मेरे माँ बाप ने मुझे कलमा सिखाया ना, ये कलमा ये जो अजान मेरे कानों में दी और जो जो कलमा मेरी माँ बाप ने मुझे सिखाया इससे मैं दुनिया का खरबापति बंदा बन गया हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे ये नहीं परवाह कोई मर्सिडीज में फिर रहा है, कोई टोयोटा लैंड क्रूजर में फिर रहा, कोई पैदल चल रहा है, कोई चिंचली में बैठा, मैं जहां भी बैठूंगा मैं अपने आप को वैसे ही तसव्वुर करूंगा जिससे का माहौल होगा। तो अगर हम लोग ये चीजें कंफर्म कर लें अपनी जात में कि हमने जब मिट्टी में जाना है, जब हमने इस 6 फुट की कब्र में हमने नीचे जमीन के अंदर जाना है, तो उसके अंदर हमारा क्या हाल होगा, किस तरीके से हम हम दो दिन में बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे अपने जिस्म को, रूह तो देखती है ना, जिस्म गल सड़ रहा था उसके सामने तो रूह देखती है कि मैं ये था, ये मैं तो गीब शाह था, मैं बड़ी बड़के मारता था डनमार्क के, मैं बड़ी बातें करता था, ये देखो मेरा अशर क्या है। तो इसलिए तौबा करो ताकि वहां तुम्हें इस ऐसी चीजों से सुकून पहले आ जाए, ताकि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि आप खुद भी ठीक हो जाए और अपनी औलाद को भी ठीक कर ले। और यहाँ सबसे बड़ा नुकसान जो हम یہاں پہ روزانہ اسلام کے بارے میں بات ہوتی ہے, اس کے ساتھ آپ باہر نکلیں, بات کریں ان کے ساتھ, دیکھیں کمیونیکیشن جو ہے نالج کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا. آپ قرآن پڑھ لیں لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود آپ کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ جب تک کہ آپ قرآن کے ایک ایک لفظ کو آپ اپنے ذہن شین نہ کر لیں, اپنے اس کی سمجھ نہ آپ کو آ جائے کہ اس میں میں کیا برائی کر رہا ہوں, اپنے اوپر اپلیمنٹ نہیں کریں گے, اپنے اوپر اس کو لے کے نہیں آئیں گے.
1: وہ تو چلے لحاظ سے ہو گیا نا, وہ تو مذہبی لحاظ سے بات ہوگی نا. شاہ صاحب ہم خود کہتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہوتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کے ممبر بھی ہوتے ہیں, تو ہم خود ریکارڈنگ کروا کر کہتے ہیں کہ ہم اس اسمبلی پر اس پارلیمنٹ پر لعنت بھیجتے ہیں, اس کے باوجود وہاں کے بینیفٹ بھی سارے لیتے ہیں, سارا کام کرتے ہیں. یہاں بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کے خلاف ہیں لیکن جتنے بینیفٹ ہیں وہ سارے ہم لیتے ہیں. شاہ صاحب ڈبل مرال تو ہم خود لوگ ہیں, ڈبل مرال لوگوں کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. شاہ صاحب
0: بالکل یہ چیزیں ہیں کہ ان لوگوں کا دیکھیں, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر جو خاندانی لوگ ہوتے تھے وہ اگر سیاست کرتے تھے تو وہ سیاست کے اندر اپنا برہم بھی رکھتے تھے, اپنے ڈیروں کو بھی چلاتے تھے, ہر ایک چیز کرتے تھے. اب جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو بدماشی کرتے ہیں, جن کا برا توبہ استغفار کرنے, جن کو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے کہ لاہور کے اندر سب سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں اور عورتیں جو ہیں اور فحاشی اتنی پھیل چکی ہے لاہور کے اندر, یہ ان کی سب سے بڑی خبر تھی. تو یہ دیکھیں اس میں گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا, اس میں ہمارا خود ہاتھ ہوتا ہے. کہ کیوں کہ اگر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ خود کشی کرنے کی بجائے وہ اپنا جسمانی دھندا کرنا شروع کر دیتی ہیں, برائی کرنا شروع کر دیتی ہیں, تو اس کے اوپر ہم جو لوگ ہیں اس معاشرے کے جو لوگ ہیں ہمیں اپنے دماغ کو کھولنا پڑے چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس فیریے جانے کے لیے, ہمارے پاس فلانی طرح عمرہ کرنے کے لیے, حج کرنے کے لیے ہم 20-25-30 لاکھ خرچ کر سکتے ہیں, تو ہم ایسی فیملیوں کو جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں اگر ہم وہ لگا دیں تو آج کے زمانے میں, میں آپ کو کہہ دوں, بتا دیتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا گھر بیٹھے ہوئے حج قبول فرمائے گا. کیونکہ یہ اسلام کی سب سے بڑی تعلیمات میں سے ایک تعلیمات ہے کہ آپ دوسروں کی مدد کریں. لیکن ہم نہیں, راجہ صاحب ہم میں گھوم پھر کر اسی گرمی میں اسی طرح رہنا. دیکھیں آج کی جو یہاں پہ 27-28 گرمی ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے.
1: شاہ صاحب ایک سوال ہے, شاہ صاحب ہماری بھوک ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارا کام کپڑوں سے شروع ہوتا ہے, گاڑیوں سے شروع ہوتا ہے, کھانے پہ ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد فوٹوؤں پہ جا کر پھر اس کے بعد اینڈ اس کا ہو جاتا ہے. تو شاہ صاحب کیا ہماری منزل یہی ہے؟
0: راجہ صاحب آپ نے پرانے وقتوں میں کبھی گاؤں میں کبھی گئے تھے یا گاؤں کے لوگوں کو دیکھا تھا جو تندور کی روٹی پہ اچار رکھ کر یا وہ اپنا تھوڑی سی چٹنی رکھ کے؟ تو شکر الحمدللہ
1: ہزاروں لوگ کھاتے تھے, ہزاروں لوگ کھاتے تھے.
0: تو ان کو کبھی آپ نے یہ سنا تھا کہتے ہوئے کہ جی میرا دل کرتا ہے میں مرغی کھا لوں, میرا دل کرتا ہے میں گوشت کھا لوں؟ آج ہم
1: آج کی وہ سب سے ماڈرن غذا ہے
0: جی, اور ہم لوگ حرام کھا کر, ایون آپ یہ دیکھیں کہ جن ریسٹورنٹوں میں کتے اور گدے کا گوشت اور حرام بک رہا ہے وہاں پہ بھی ہم جا کے کھاتے ہیں. پھر حرام کا پیسہ ہمارے لوگوں میں رشوت لینا, رشتے داری کرنی,
1: شاہ صاحب چھوٹا بڑا گوشت مکس کر کے بیچنا
0: جی, تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو پھیلانے والے ہم لوگ ہیں. اگر ہم لوگ یہاں سے جا کے وہاں شور نہ مارے, اپنے پیسوں کو اپنی جیب میں رکھیں اور اپنے گھر والوں کو بڑی بڑی کوٹھیاں نہ بنا کر دیں, ٹھیک ہے جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں اس کے اندر ان کو سہولت دو, اور اس کے بعد ان کو کوئی ایسی دکان ایسا کاروبار کر کے دے جس سے ان کو چار پیسے ملے, وہ کوئی چار لوگوں کو نوکر رکھیں یا کوئی چیز چلے.
1: شاہ صاحب آخر میں پروگرام کو کلوز بھی کریں. شاہ صاحب کوئی حال بھی ساتھ بتائیں, باتیں تو ہم نے بہت زیادہ کر لی ہیں, کوئی آپ کو لیڈر نظر آ رہے ہیں, کوئی کام کریں گے یا اسی طرح باتیں ہوتی رہیں گی؟
0: جی اگر یہ لیڈر صرف آم بھی کھائیں گے اور آموں کی پیٹیاں لے کے جائیں گے تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں, ہاں مجھے دو بندے جو ہیں وہ مجھے کام کرتے ہوئے اس گرمیوں میں بھی نظر آ رہے ہیں, اور خواہ لوگ خوش ہوں نہ ہوں मैं उनका नाम लेने से गुरेज नहीं करूंगा, एक आप रेडियो चला रहे हैं और लोगों को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ के हालात बता रहे हैं, और दूसरा जो है कोई बैठ के अगर वो बात कर रहा है और लिख रहा है तो वो सिकंदर मलिक आज भी लिख रहा है, बोल रहा है, वहाँ उसके अंदर अग्रेसिव वो काफी है, गुस्से वाला काफी है। और एक सियासतदान को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, गुस्सेदार नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो चीज आती है वो बोल जाता है और इसकी परवाह नहीं करता। तो ये आप दो ही चीजें मुझे नजर आ रही हैं जो इस वक्त यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में भी आप लोग एक्टिव हैं, तो बाकी तो सारे जो हैं वो ठंडे होकर सो गए हैं, सत्तू पी के। वो आपके गांव का जो है शेख रशीद वो कहता है जी सत्तू पी के सारे सो जाते हैं, तो सत्तू अलग है, दुनिया में सबसे बेहतरीन गर्मियों में सबसे बेहतरीन मशरूब जो पीने वाला शरबत है वो सत्तू का होता था, सत्तू और गुड़ का। तो आज हमारे लिए वो हमारे गलों में फंस जाता है, गले पी नहीं सकते हम लोग सत्तू को। तो राजा साहब मैं अपने भाइयों से माजरत करता हूँ कि जिनको मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन अपनी नस्ल को अपने आप को बचाएं। अब ये आज उन्होंने एक खबर दी है कि अब लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों के अंदर प्लास्टिक कार्ड इस्तेमाल करने की बजाय कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए इन्होंने कितनी जहीन कौम है ये, इन्होंने कैसी नजर रखी हुई है कि ये छुट्टियों पे गए हैं लेकिन वहां पे कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे ताकि पता ना लगे, लेकिन वहां पे कैश इस्तेमाल कर रहे हैं और कैश एटीएम में से कैश निकाल के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है ये नोटेबल है और इसकी प्रॉब्लम जो है आगे जाके आएंगी, क्योंकि इन्होंने कौम को कुछ ना कुछ तो दिखाना कि हमने क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्रीनलैंड का मसला है ये अमेरिका ने बिल्कुल जैसे वो ईरान के साथ जंग खत्म नहीं कर रहा और अरबों को और मुसलमानों को आपस में लड़ा रहा है, इसी तरीके से वो डेनमार्क और यूरोप के अंदर भी फसाद पैदा करेगा, क्योंकि अमेरिका इस वक्त पेनीलेस हुआ हुआ है, भूखा हुआ हुआ है, इंग्लैंड भी भूखा हुआ है, और ये जो मुल्क है इनके पास सरमाए की कमी है, ये कर्ज में फंसे हुए हैं और इनको क्या चाहिए पैसा, ये पैसा कैसे ले सकते हैं कि ये अपना असला बनाए, असला इस्तेमाल करें, दुनिया में जंग हो और इनसे लोग असला खरीदे और ये जो है उस असला और बारूद बेच के तो ये पैसे जो है अपने घर लेके आए। तो राजा साहब ये हकीकत है, अगर आज भी हम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ेंगे और अपने आपको सही नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे बातें हम रोजाना बातें भी करें तो ये कभी भी नहीं मानेंगे। तो आप देखिएगा कि इस समर में तो हम बात कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि ये छुट्टियों के बाद जब टैक्सियों की नई सेल्सकेप्स जो हैं वो जारी और सारी हो जाएंगी और फिर क्रिसमस पे और उसके बाद जो है ये जो बड़ी बड़ी सेल्सकेप हैं DSB यहाँ के रेलवे और दूसरी जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं जब वो ये सस्ती टैक्सियां जो हैं वो लेनी शुरू कर देंगी तो फिर वोनमैनों का क्या हाल होगा, वो बेचारे पसीने में जाएंगे क्योंकि वो इसी बात में खुश हैं कि इस वक्त हमें काम थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, लेकिन जब बिल्कुल ही काम खत्म हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, अपने अखराजात कैसे पूरे करेंगे, क्योंकि जितने भी और गिफ्ट हैं वो तो उसी तरह ही रहेंगे तो वो कहाँ से पैसा लेंगे। तो राजा साहब ये तकलीफात अगर ये आज भी इसके ऊपर बहस नहीं करते, आज भी ये इकट्ठे नहीं होते और झूठ का झूठ बोलने में ये माहिर है और अगर ये झूठ बोलते रहे एक दूसरे के साथ तो फिर ये कभी भी सामने नहीं आ सकते। जी राजा साहब,
1: राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम शेयर किया,
0: बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है, आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।